यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हम

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 7 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6 बज रहे हैं, समय हुआ है समाचार का।
2: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
3: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग पर दूसरा वार्षिक सम्मेलन 5 और 6 अक्टूबर को मॉरिशस में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन अफ्रीकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्का की औपचारिक लॉन्चिंग से पहले हुआ, जो आज लग रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा की एक टीम कल से मॉरिशस के दौरे पर हैं। अधिकारियों और इससे जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ कई कार्य सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आज इबेन में भी एक कार्य सत्र लग रहा है। इन बैठकों में मुख्य रूप से कंटेंट की निगरानी, खासकर खेल मोगुसिया में मौजूद कंटेंट्स, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, उम्र की पुष्टि और आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मॉरिशस कॉप 31 के लिए अपनी राष्ट्रीय स्थिति को अंतिम रूप दे रहा है। इसे शुक्रवार 9 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 31 9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंटाल्या शहर में आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान करेंगे। मॉरिशस में सीमेंट, लोहा और स्टील के आयात में बढ़ोतरी हुई है। 2025 में आई गिरावट के बाद 2026 की पहली छमाही में इन निर्माण सामग्रियों के आयात में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये रुझान निर्माण क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी आने का संकेत दे सकता है। और विदेश में फ्रांस में शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग कर रहे स्कूली छात्रों के समर्थन में कल देश भर में प्रदर्शन किए गए। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व दक्षिण पूर्व से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह और दोपहर बाद को बादल घिरे रहेंगे। पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह 5:46 पर सूरज निकला है और शाम 6:09 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
4: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: बुधवार 7 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6:03 हो रहे हैं। सुप्रभात आप सभी श्रोताओं को, सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। भोर की बेला इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। अभी से लेकर सवेरे के 9 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और आज का ये जो नया दिन है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जितने भी आपके कार्य हैं वो सभी अच्छे से संपन्न हो, आप सभी को सफलता मिले और आप हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के भोर की बेला इस कार्यक्रम को आरंभ हम करते हैं। आपको बता दें कुछ क्षणों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर, उसके बाद चंद भाव गीत आप सुन पाएंगे। रेडियो मॉरिशस।

पर और 6:30 बजे समय होगा पूरा समाचार का। और कहते हैं ना कि नए दिन का आरंभ एक अच्छी सोच एक अच्छे विचार के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छाई जो है ये हमारे जीवन को सकारात्मकता प्रदान करती है। और कहीं ना कहीं एक अच्छा विचार एक अच्छी सोच अच्छे कर्म की ओर हमें प्रेरित करती है। तो चलिए इसी के साथ समय हुआ है भोर की बेला। इस कार्यक्रम में हम सुने कार्यक्रम सनातन धारा श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी को सुनते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय श्राद्ध समीक्षा। भारतीय संस्कृति के विविध धार्मिक कृतियों में श्राद्ध कर्म ऐसा विषय है जो बहुत विवादास्पद है और जिसका बहुत खंडन मंडन होता है। कुछ लोग इस पर व्यंग भी कसते हैं। यह प्राकृतिक नहीं बल्कि पौराणिक है। वाचुबी आदि नास्तिक पहले ही प्रश्न उठा चुके हैं। उनका कथन है, मृता नाहिमसे जानतो नाम श्राद्धम चेतम कृत्यम कारणम प्रत्यस्तानाम हिम जंतुनानाम वृता पाथेव कल्पनम। इसका तात्पर्य यह है कि यदि श्राद्ध में दिए गए अन्न आदि के द्वारा मातृ पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो जो मनुष्य कोई लंबी यात्रा करते हैं उन्हें अपने साथ भोजन आदि के लिए कोई सामग्री ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर वाले उनके प्रति श्राद्ध कर दे तो वह उनके पास पहुंच जाएगा, किंतु उनका यह कथन शास्त्रीय विचारधारा से मेल नहीं खाता, बल्कि वैज्ञानिक और तात्विक दृष्टि से भी श्राद्ध प्रक्रिया की पुष्टि होती है। व्यवहार की दृष्टि से तो यह पितरों के प्रति श्रद्धा के प्रतीक है ही। हिंदू जाति के सर्व प्राचीन और सर्व पूज्य ग्रंथ वेद में भी श्राद्ध के कथन में अनेक मंत्र है। पिंड दान करने वाला पुत्र कहता है, यद्वो अग्निरजाह देवमंडल पितरभ्यो गम्येभ्यं जातं वेदाः तद एवं इत पुराणख्यातमपि सांगाम पितरं सर्वे मादयम्। हे पितृलोक, हे पति को, अग्नि के तुम्हारा एक शरीर जला करके तुमसे छीन लिया है और सूक्ष्म शरीर से

से तुम्हें पितृलोक में भेजा है। उस तुम्हारे छिने हुए शरीर को मैं पुनः पुष्टि कर देता हूँ। तुम साग बनकर स्वर्ग में आनंद करो। अथर्ववेद में उल्लेख है, त्वम अग्ने मिदडितुम जातवेदो वांग हव्यादि सुरभिणीं कृत्वा प्रसादं पितृभ्यः। अर्थात हे जातवेदा अग्निदेव, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे द्वारा प्रदान की हुई इन हवि को सुगंधित करके तृप्ति के निमित्त पितरों को प्रदान करें। इसी वेद में यह भी कहा गया है, ये लिखातम तेभ्यम परोतिम तेम योक्षित्वाह सर्वसनामयी आवात पित्रेन हविषेन अथवे। इसका अर्थ है कि जिन मातृ व्यक्तियों के शरीर भूमि में गाड़ दिए गए हैं, जिनके जल आदि के प्रवाहित कर दिए गए हैं, जिनके जला दिए गए हैं और जिनके वन में काट दिए गए हैं, हे अग्निदेव, इन चारों प्रकार के और दैहिक संस्कार संपन्न पितरों को हमारे प्रदान की गई हवि खाने के लिए इस श्राद्ध कर्म में पहुँचाइए। यह भी कहा जाता है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को क्यों भोजन कराया जाता है? क्या उनका पेट नेटक वासक है? इस संबंध में भी अथर्ववेद में कहा जाता है कि इस आदोतम पलिक्षितिम भोजन को ब्राह्मण में स्थापित किया जाता है, जो सूक्ष्म रूप से अति विस्तृत हो करके लोक लोकांतर को जीतता हुआ स्वर्ग तक पहुंचाया जाता है। इमदेतम तम विधेयम ब्राह्मणस्तु विस्तार्यम लोकवर्जितम वर्वेन, ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। यो अग्निम क्रियातम वशिष्ठेतम योहम गृहतमाप्यम पितरो यज्ञात देवता। अर्थात जो अग्नि मास को दाह संस्कार में फूटने वाला है और जो हमारे घर में प्रविष्ट हुआ है, इस अग्नि देव को मैं पितर यज्ञ अर्थात श्राद्ध के निमित्त शुद्ध करके स्थापित करता हूँ। कत्यायन स्मृति के अनुसार श्राद्ध का दूसरा नाम श्रद्धा से है। श्राद्धम वाहम पितर यज्ञम स्वास्थम। स्मृतियों तो श्रद्धा विधान में श्लोकों के भरी हुई है। वाल्मीकि की रामायण महाभारत आदि में श्राद्ध करने की चर्चा अनेक बार आई है। गीता में सर्व मान्य ग्रंथ है, उसमें प्रतिपादित विचारों का आधार विदेशी भी करते हैं। गीता में भी पिंडदान जल आदि का उल्लेख है। विविध जल अनाधिक से अभाव में पितरों का अर्घपात होता है। इस प्रकार से पतितं पितरोह हव्यानं लुप्त पिंडचेतं क्रियात, यह प्रश्न उठाया जाता है कि अंतिम संस्कार संबंधी श्राद्ध का जो और चित्त हो सकता है, परंतु मरने के बहुत दिन बाद तक प्रतिवर्ष पावर्ण श्राद्ध करने का भी आवश्यक नहीं होता। यह जो हर पितृपक्ष में जो हम श्राद्ध करते हैं, उसका नाम होता है पावर्ण श्राद्ध। मृत्यु के तिथि पर पिंडदान किया जाता है, परंतु तर्पण पूरा पितृपक्ष में तर्पण कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है श्राद्ध संबंधी में कि श्राद्ध का अधिकारी पुत्र को होता है। पुत्र के अभाव में पौत्र और उसके अभाव में पपौत्र अधिकारी होते हैं। जिनके पास एक से ज़्यादा पुत्र हो, तो सबसे पहले पुत्र का

अधिकार होता है। अगर पहला पुत्र श्राद्ध नहीं, पिंडदान नहीं करेगा तो अंतिम पुत्र का अधिकार बन जाता है। अगर पुत्र नहीं कर सकता तो पौत्र के हाथों द्वारा पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध जो है यह पवित्र स्थान में किया जाता है, गंगा के तट पर गया में पिंडदान किया जाता है। इसलिए श्राद्ध जो है नदी के तट पर किया जाए तो अति उत्तम फल प्रदान करता है। जितने लोग पिंडदान नहीं करते और जितने लोगों के पास समय नहीं है पिंडदान करने के लिए, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? संक्षेप में, अपने यहाँ दूध लेकर के, दूध, जल, गंगा जल, मद, घृत, तिल, काला तिल और सफ़ेद तिल लेकर के ज़रूर तर्पण करें। पितृपक्ष के समय अगर पिंडदान नहीं कर सकते तो तर्पण अवश्य करें। सबसे पहला देव तर्पण होता है। देव तर्पण इसलिए चार दिशा में तर्पण किया जाता है और चार दिशा में हमेशा देव तर्पण होता है। पहला ऋषि तर्पण, तब पितरों का तर्पण करके अन्न दान आदि करना चाहिए ताकि आपका कल्याण हो, आपका परिवार का कल्याण हो। सबके कल्याण हेतु पितृ पूजा बहुत जरूरी होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख वा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा।
1: श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सवेरे के 6:17 हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी ग्लेन पार्क के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। ग्लेन पार्क के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक लामारी रोड, बक्सू लेन, ईदू लेन, दीन मोहम्मद लेन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 7 अक्टूबर को सुबह के 8:30 से 4:30 आज यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।
0: भोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत।
1: जी हाँ, एक खूबसूरत शुरुआत तो हो ही चुकी है आज के इस दिन की, हमारे भोर की बेला इस कार्यक्रम की। और कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अपने आप में अच्छा ही होता है। और जिस भी काम को हम क्यों ना करें, जिस भी संकल्प को हम क्यों ना लें, या जिस भी विचार के को हम क्यों ना हमारे मन के भीतर जगाएं, अगर वो आरंभ सकारात्मक होता है तो उसका अंत भी अपने आप में सकारात्मक होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे भाव हमारे भीतर होते हैं वैसे ही भाव से हमारे मन में विचार आते हैं, उन्हीं विचारों से उसी प्रकार के कर्म होते हैं, और कल को ये कर्म हमारे जो है जीवन जीने की एक प्रक्रिया बन जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, कहते हैं ना। और इसलिए तो अच्छे कर्मों को, अच्छे विचारों को हमारे जीवन में सदा ही बड़ा महत्व दिया जाता है। और चलिए, सवेरा हो चुका है, इस गाने के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सवेरा हुआ अंधेरा मिटा, और हमारे मन के भीतर जितने भी प्रकार के अंधकार है इस नए दिन के साथ सभी अंधकार मिट जाए और एक आशा की किरण जाग जाए।

0: ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত।
1: और चलिए यहाँ पर देखते ही देखते सवेरे के 6:25 हो चुके हैं। कहते हैं तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। यकीनन आप लोगों का प्यार भरा साथ हमेशा हमें यूँ ही मिलता रहे। और हमारे जीवन में भी होता है ना, कुछ लोगों का साथ ऐसा होता है जिनसे बात करने से, जिनसे मिलने से मानो के हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियाँ अपने आप कम हो जाती हैं। जिनसे बात करने से जीवन के समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। जिनसे बात करने से मन में चल रही दुविधाएं अपने आप में दूर हो जाती है। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि हमारे भीतर भी वो सकारात्मकता को भर देते हैं। तो चलिए आपके जीवन में भी अगर ऐसे लोग हैं तो ये लोग आशीर्वाद से कम नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों का साथ हमेशा जीवन में बनाए रखना चाहिए। अभी के लिए इस गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 6:30 के पूरे समाचार की ओर। हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में। तो ऐसे ही आप रेडियो मॉरिशस पर हमारा साथ देते रहिए, जुड़े रहिए। आप सभी को एक बार फिर शुभ दिन हमारी ओर से। नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: सभी को हमारा नमस्कार। सुबह के ठीक 6:30 हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग पर दूसरा वार्षिक सम्मेलन 5 और 6 अक्टूबर को मॉरिशस में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन अफ्रीकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्रीका की औपचारिक लॉन्चिंग से पहले हुआ, जो आज लग रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा की एक टीम कल से मॉरिशस के दौरे पर है। अधिकारियों और इससे जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ कई कार्य सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आज एबेन में भी एक कार्य सत्र लग रहा है। मॉरिशस कॉपी 31 के लिए अपनी राष्ट्रीय स्थिति को अंतिम रूप दे रहा है। इसे शुक्रवार 9 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 31 9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंताल्या शहर में आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान करेंगे। मॉरिशस में सीमेंट, लोहा और स्टील के आयात में बढ़ोतरी हुई है। 2025 में आई गिरावट के बाद 2026 की पहली छमाही में इन निर्माण सामग्रियों के आयात में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये रुझान निर्माण क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी आने का संकेत हो सकता है। और विदेश में फ्रांस में शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग कर रहे स्कूली छात्रों के समर्थन में कल देश भर में प्रदर्शन किए गए। और अब पेश समाचार विस्तार से। सबसे पहले ये खबर। बैंक ऑफ मॉरिशस की ओर से कल दोपहर बाद एक अहम घोषणा की गई, जो भविष्य में रिटायर होने वाले लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। सरकार ने एक नई फिक्स्ड रेट निवेश योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसमें सालाना 6% रिटर्न मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार देगी। बैंक ऑफ मॉरिशस अगले सप्ताह रिटायरमेंट सेविंग्स बॉन्ड की शुरुआत कर रहा है। ये 15 साल की अवधि वाला बॉन्ड है, जिसमें 50 से 65 साल की उम्र के मॉरिशन नागरिक निवेश कर सकते हैं। इसके तहत न्यूनतम 1,00,000 रुपये और अधिकतम 20,00,000 रुपये तक निवेश किया जा सकता है। ब्याज का भुगतान हर 6 महीने में किया जाएगा, लेकिन एक अहम शर्त है, निवेश की गई रकम कम से कम 5 साल तक लॉक रहेगी। अगर 5 साल से पहले रकम निकालते हैं तो ब्याज दर घटकर 4.5% हो जाएगी, या फिर उस समय बाजार में लागू दर के अनुसार तय की जाएगी। इस बॉन्ड के लिए आवेदन 15 अक्टूबर से देश के 11 कमर्शियल बैंकों में किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया 23 दिसंबर तक जारी रहेगी। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग पर दूसरा वार्षिक सम्मेलन 5 और 6 अक्टूबर को मॉरिशस में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन अफ्रीकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्रीका के औपचारिक लॉन्चिंग से पहले किया गया, जो इस बुधवार को लग रहा है। अफ्रीकी संघ के समर्थन से स्थापित की गई ये रेटिंग एजेंसी महाद्वीप की वास्तविक परिस्थितियों और उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अधिक सटीक आकलन करने का प्रयास करेगी। कल सम्मेलन के दूसरे दिन चर्चा में रेटिंग उद्योग और नई तकनीकों के बीच संबंध पर खास ध्यान दिया गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आंकड़ों की गुणवत्ता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे, लेकिन तकनीक क्रेडिट खतरों के आकलन को किस हद तक बदल सकती हैं और इस प्रक्रिया में इंसानी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण बनी रहनी चाहिए, इस पर ज्यादा जानकारी आशी बच्चू और आशिता रखो के साथ।
2: सॉवरेन रेटिंग के क्षेत्र में बड़ी चुनौती ये है कि अलग अलग परिस्थितियों और वास्तविकताओं वाली अर्थव्यवस्थाओं का सही आकलन किया जाए। ताचाना लिसेंको, जिन्होंने S&P ग्लोबल रेटिंग्स में भी काम किया है और जो फिलहाल सॉवरेन रेटिंग पर शोध कर रही हैं, का मानना है कि नई तकनीकें इस आकलन को और तेज तथा प्रभावी बनाने में मदद कर सकती है।
3: AI
2: वर्तमान में देशों से जुड़े खतरों का मूल्यांकन करने में योगदान दे सकता है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निवेशक ज्यादा से ज्यादा इन नए तरीकों का

0: इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें मशीन लर्निंग और अल्टरनेटिव डेटा शामिल हैं, जिससे गलतियों और खतरों को कम किया जा सके। हालांकि उनका कहना है कि ये टेक्निकें विशेषज्ञों के अनुभव और उनके फैसले की जगह नहीं ले
1: सकती।
0: इन उपकरणों के माध्यम से मॉडल्स को बेहतर करने और खतरों को प्रभावित करने वाले कारकों की आवश्यकता को समझने में मदद मिलेगी, पर इस नए तरीके और आधुनिक मॉडल के मिश्रित मॉडल पर एक मानवीय विशेषज्ञता की आवश्यकता हमेशा होगी, क्योंकि अंत में एक व्यक्ति को निष्कर्षों का मूल्यांकन कर निर्णय लेना होगा। मानवीय विशेषज्ञता जरूरी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी मात्रा में आंकड़ों का तेजी से विश्लेषण भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए भरोसेमंद और पर्याप्त मात्रा में आंकड़े उपलब्ध होना जरूरी है। यही एक चुनौती डेटा प्रो लिमिटेड की CEO अम्बिबोला अदिसेयोजू ने भी सामने रखी।
2: The data presently, part of the problems African countries have.
0: अफ्रीकी देशों को जानकारियों के किस्म और उपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही पाश्चात्य देशों की ओर से भरोसे की कमी भी है। ये रेटिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात नहीं है, बल्कि अफ्रीकी बाजारों की वास्तविक स्थिति और उपलब्ध आंकड़ों को बेहतर तरीके से ध्यान में रखने की बात है। AI इस प्रक्रिया में आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसलिए चुनौती दोहरी है, अफ्रीका से जुड़े अधिक और भरोसेमंद आंकड़े जुटाना और साथ ही ऐसे तकनीकी साधन विकसित करना जो इन आंकड़ों का प्रभावी तरीके से विश्लेषण कर सकें। इन दोनों के बेहतर मेल से भविष्य में सॉवरेन रेटिंग को अधिक सटीक और तेजी से तैयार करना संभव हो सकता है।
3: मेटा इस समय ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर हो रही चर्चाओं के केंद्र में है। फेसबुक और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा की एक टीम कल से मॉरिशस के दौरे पर है। अधिकारियों और इससे जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ कई कार्य सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आज एबेन में भी एक कार्य सत्र लग रहा है। इन बैठकों में मुख्य रूप से कॉन्टेंट की निगरानी, खासकर ख्योल मोगसिया में मौजूद कॉन्टेंट, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, उम्र की पुष्टि और आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साइबर सुरक्षा कानून में प्रस्तावित संशोधनों और पुलिस की जांच में सहयोग के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा मेटा और मॉरिशस सरकार के बीच एक रूपरेखा समझौते पर भी विचार किया जा रहा है। आज इन्फॉर्मेटिक्स क्षेत्र देश के GDP में 5.6% का योगदान देता है, जबकि 2014 में ये हिस्सा 7.4% था। सरकार अब इस अंतर को कम करना चाहती है। इसके लिए सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। ICT मंत्री अविनाश रामतोहल ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया। उन्होंने हेल्थ कार्ड का उदाहरण दिया, जिसे ई हेल्थ सिस्टम के जरिए संभव बनाया जा सकता है। मंत्री ने ये भी बताया कि स्वास्थ्य बजट का 80% हिस्सा इलाज पर खर्च होता है, जबकि रोकथाम पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया जाता है। ऐसे में उपलब्ध आंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार साबित हो सकता है। अविनाश रामतोहल कल एबेन स्थित साइबर टावर 1 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए क्लाउड डेटा और AI पर आयोजित एक कार्यशाला में शामिल हुए थे। उनको सुनते हैं, उनसे बात की कोयल सीतल ने। अर्चिता रघु का विवरण।
0: स्थिति को कैसे पलट सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से? हम जीवन शैली, क्षेत्रों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि किन पैरामीटर्स को स्थापित करना चाहिए स्थिति को पलटने के लिए। डिजिटलाइजेशन का संबंध विशेषकर जनता को दी जाने वाली सेवाओं से है, तथा जानकारियों का इस्तेमाल जो डेटा ड्रिवन हो, और पूरे मॉरिशस को कैसे विश्व देख रहा है जिससे ज्यादा निवेश आकर्षित कर सके।
3: वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर दिन 55,000 क्यूबिक मीटर प्रयोग किए गए पानी समुद्र में छोड़ती है। ऊर्जा मंत्री पत्रिका से आवादन का प्रस्ताव है कि इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाए, ताकि जलाशयों से और अधिक पानी न लेना पड़े। उन्होंने पोर्टलिस स्थित अपने कार्यालय में प्रेस को बुलाकर मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए कई तत्काल उपायों की घोषणा की। पत्रिका से आवादन ने बताया कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उनको सुनते हैं अशिता।

0: आपको का विवरण
1: Il y a beaucoup de contraintes qui nous comprend mais nous dans une situation d'urgence et quand dans une situation
2: बहुत सारी चुनौतियां हैं लेकिन अभी स्थिति बेहद गंभीर और तत्काल कार्रवाई की है ऐसे में आपातकालीन कदम उठाने की आवश्यकता है वर्तमान में CWA की ओर से 35 वाटर टैंक लोरियां उपलब्ध हैं और 25 क्यूबिक मीटर की और बड़ी लोरियां ली जा रही हैं जिससे समय लेकर ज्यादा पानी भरेंगे और फिर छोटी लोरियों को भरेंगे और फिर इलाकों में पानी का वितरण करेंगे हम ये कदम उठा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाएगी स्थिति पर हमें गलतफहमी नहीं पालना चाहिए बल्कि स्थिति की वास्तविकता का सामना करना चाहिए
0: मॉरिशस COP31 के लिए अपनी राष्ट्रीय स्थिति को अंतिम रूप दे रहा है इसे शुक्रवार 9 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाएगा राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन यानी COP31 9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंताल्या शहर में आयोजित किया जाएगा मॉरिशस का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान करेंगी राजमिला सतामनी अशिता रघू
2: COP31 में हिस्सा लेने वाले मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल की तस्वीर अब स्पष्ट हो रही है इस प्रतिनिधिमंडल में सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि युवा वर्ग के साथ साथ रोड्रिक्स के चीफ कमिश्नर फ्रांको ग्रांको भी शामिल होंगे राष्ट्रीय रुख तैयार करने के लिए व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया महिलाओं युवाओं मछुआरों किसानों और तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों ने अपनी प्राथमिकताएं सामने रखी मुख्य मांगों में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अधिक समर्थन खाद्य और जल सुरक्षा तटों की सुरक्षा तथा जलवायु वित्त तक बेहतर पहुंच शामिल हैं। निजी क्षेत्र गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों की ओर से करीब 10 लिखित सुझाव भी प्राप्त हुए हैं मॉरिशस के युवा भी COP31 में अपने प्रस्ताव और प्राथमिकताएं पेश करेंगे
0: मॉरिशस में सीमेंट लोहा और स्टील के आयात में बढ़ोतरी हुई है 2025 में आई गिरावट के बाद 2026 की पहली छमाही में इन निर्माण सामग्रियों के आयात में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है ये रुझान निर्माण क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी आने का संकेत हो सकता है ज्यादा जानकारियां पेश हैं
2: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के आंकड़ों के अनुसार निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्रियों के आयात में फिर से बढ़ोतरी हुई है सीमेंट की बात करें तो 2026 की पहली छमाही में मॉरिशस ने 5,80,000 टन सीमेंट का आयात किया जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 50,000 टन अधिक है इन आयातों का कुल मूल्य 1.16 बिलियन रुपए रहा वही लोहा और स्टील के आयात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है इस साल की पहली छमाही में 68,000 टन लोहा और स्टील आयात किया गया जबकि 2025 की इसी अवधि में ये आंकड़ा 61,000 टन था ये बढ़ोतरी 2025 में निर्माण सामग्री के आयात में दर्ज गिरावट के बाद हुई है अधिक सीमेंट लोहा और स्टील का आयात निर्माण क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी का संकेत हो सकता है लेकिन इन आंकड़ों के बीच एक अहम सवाल बना हुआ है इसका निर्माण सामग्री की कीमतों और आखिरकार निर्माण परियोजनाओं की कुल लागत पर क्या असर पड़ेगा
0: खुशबा में बुनियादी ढांचों को बदलने और बेहतर बनाने की एक बड़ी परियोजना भूमि और आवास मंत्री ने कल पेश की इसके लिए करीब 100 मिलियन रुपए के निवेश की जरूरत होगी इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए बेहतर रहने की जगह और सुविधाएं तैयार करना है मंत्री शकील मोहम्मद ने बंदरगाह क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों से इस परियोजना के लिए आर्थिक योगदान देने की अपील की उनको सुनते हैं
3: Nous faisons gagner l'occasion, passant en revue la nécessité qui est indispensable une moyenne médiclinique dans Cité Rochebois.
2: हमने जायजा लिया है कि सिटी रोशबॉ में एक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिक्लिनिक की आवश्यकता है और फुटब्रिज के उस पार इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पूरा करने की जरूरत है इसके अलावा रोशबॉ में विकास की भी आवश्यकता है और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मेरे मंत्रालय भूमि और आवास मंत्रालय के योजना विभाग के अफसरों ने अपने व्यक्तिगत समय तथा स्वेच्छा से गोशबा को बदलने के लिए नई परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं इलाके के स्क्वाटर्स के बारे में भी बात की गई और इन्हें एक जगह देने के उद्देश्य पर भी बात हुई इस पर मोसेनियर जॉन से चर्चा करने का अवसर भी मिला हम गैर सरकारी संगठनों से साथ आने की मांग करते हैं एक टीम की तरह काम करेंगे क्योंकि हम सब इलाके की भलाई चाहते हैं
0: पहली बार मॉरिशस ने इंटरनेशनल

0: यूनियन ऑफ रेडियो अमाटर के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। ये सम्मेलन पिछले महीने 19 से 23 सितंबर तक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया। मॉरिशस अमाटर रेडियो सोसाइटी के अध्यक्ष अश्विन मंडारी ने मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने संगठन के काम के बारे में जानकारियां दी और कई देशों के रेडियो अमाटर से बातचीत की। इस सम्मेलन के जरिए नए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाने और क्षेत्र में रेडियो अमाटर के भविष्य को बेहतर ढंग से समझने का भी अवसर मिला। अश्विन मंडारी के अनुसार किसी आपदा की स्थिति में रेडियो अमाटर की अहम भूमिका होती है। जब इंटरनेट या मोबाइल फोन जैसे सामान्य संचार नेटवर्क काम नहीं करते तब वे संचार व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तूफान, भूकंप या किसी बड़ी तकनीकी खराबी की स्थिति में भी वे संचार व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। राजमिला सीतामणि ने अश्विन मंडारी से बात की, उनको सुनते हैं अशिता रघु का विवरण।
1: मॉरिशस के लिए कतर में एक सैटेलाइट है और इस सिस्टम के तहत एक विकल्प है कि हम इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। हम यहीं रहेंगे मॉरिशस, रेनियन और रोड्रिग्स के लिए, क्योंकि हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सौर पैनल और बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मॉरिशस और अन्य दो टापुओं के बीच संपर्क बरकरार रहेगा और यह इस सैटेलाइट के माध्यम से संभव है।
0: और विदेश में फ्रांस में शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग कर रहे स्कूली छात्रों के समर्थन में कल देश भर में प्रदर्शन किए गए। देश के विभिन्न शहरों में हजारों छात्रों ने सड़कों पर उतरकर इनकी मांगों का समर्थन किया। कई जगहों पर छात्रों के साथ झड़प होने पर पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। देश में जेंसी के आंदोलन के चलते राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों पर दबाव बढ़ गया है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह और दोपहर बाद को बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह 5:46 पर सूरज निकला है और शाम 6:09 पर सूरज ढल जाएगा।

और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग पर दूसरा वार्षिक सम्मेलन 5 और 6 अक्टूबर को मॉरिशस में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन अफ्रीकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्का की औपचारिक लॉन्चिंग से पहले हुआ जो आज लग रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा की एक टीम कल से मॉरिशस के दौरे पर है। अधिकारियों और इससे जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ कई कार्य सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। मॉरिशस कॉप 31 के लिए अपनी राष्ट्रीय स्थिति को अंतिम रूप दे रहा है। इसे शुक्रवार 9 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाएगा। राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 31 9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंताल्या शहर में आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान करेंगे। मॉरिशस में सीमेंट, लोहा और स्टील के आयात में बढ़ोतरी हुई है। 2025 में आई गिरावट के बाद 2026 की पहली छमाही में इन निर्माण सामग्रियों के आयात में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये रुझान निर्माण क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी आने का संकेत हो सकता है। और विदेश में फ्रांस में शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग कर रहे स्कूली छात्रों के समर्थन में कल देश भर में प्रदर्शन किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजन का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ देर में शोक समाचार सुन सकें।

0: News on NBC Play and NBC.mu.
1: हसन सकियलिन सेंट पैट्रिक रोजिल में 44 साल के 44-year-old के जनाब सफराज सुबगाची इंतकाल कर गए हैं। वे इंग्लैंड में रहते थे। नमाज जनाजा आज उनके वालिद सादिक सुबगाची के घर में किया जाएगा और 3 बजे वहीं से सहमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। सुशील लेन रिश्तिया में 43 साल के 43-year-old के श्री अश्विन संती, जो अश्विन पंडित से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह बाद 3 बजे उनकी मां प्रभा संती के घर सुशील लेन रिश्तिया से उठाकर रिश्तिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। मद्रासा लेन गोकुला में 62 साल की 62-year-old की मिसेज बीबी फौजिया बुढ़े, पैदाश नाम हुसैनाली और जो फौजिया से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके शौहर जनाब सामा बुढ़े के घर मद्रासा लेन गोकुला से उठाकर प्लेंडे पापाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। कौचे रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में 86 साल के 86-year-old के श्री कावलेसर बहादुर, जो ईश्वर से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर कौचे रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। हाईलैंड रोड फिनिक्स में 95 साल की 95-year-old की श्रीमती पिगामा साराबादू, पैदाश नाम आदि नारायुडू और जो मामा सामा से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर हाईलैंड रोड फिनिक्स से उठाकर अलीब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। ओल्ड डिस्पेंसरी रोड पिचिकाबान कॉन्डोमास्क पावे में 76 साल की 76-year-old की श्रीमती सिवंती डसोई, पैदाश नाम रघुबिन और जो मानती से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे नीरज दसोई के घर ओल्ड डिस्पेंसरी रोड पिचिकाबान कॉन्डोमास्क पावे से उठाकर बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मुसलमान रॉय अप मोचिदा में 68 साल के 68-year-old के श्री महेंद्र गोपुल, जो रामेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी पत्नी आशा जयवंती डुनमुन के घर मुसलमान रॉय अप मोचिदा से उठाकर मिजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। अलीब्रियन वाकवा में 64 साल की 64-year-old की श्रीमती विलासा वादी लक्ष्मी, पैदाइश नाम गोइंडन और जो बेबी से ज़्यादा जानी जाती थी और वेंचुरा दुकान की मालिक थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके घर अलीब्रियन वाकवा से उठाकर अलीब्रियन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। श्रीवाला लेन पिछिपा के मुताई ब्लॉश में 74 साल की 74-year-old की श्रीमती रूपावती जागर सिंह, पैदाश नाम नक्चेदी और जो राधा से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे विकास जागर सिंह के घर श्रीवाला लेन पिछिपा के मुताई ब्लॉश से उठाकर पिचिपा के मुताई ब्लॉश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड कैंस कौतों फाकवा में 77 साल के 77-year-old की श्री गोइंसामी सुंदरम, जो राजन से ज़्यादा जाने जाते थे और साडल कॉलेज में पूर्व अटेंडेंट थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुपहर बाद के 3 बजे उनकी पत्नी विमला सुंदरम के घर रॉयल रोड कैंस कौतों फाकवा से उठाकर फिनिक्स की श्मशान

on Bhumi Le Jai Jai Ki, cremation today at 3 p.m. Avenue Le Palmier, Kangaroo Flak Me, 105 Saal Ki, 105-year-old Ki Srimati, Kankama Chinya, Paidash Naam Bangari, और जो बाबाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रामदास और देवानंद चिन्या के घर एवेन्यू ले पाल्मिये कांगारो फ्लैक से उठाकर लावंचुअ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1:30 PM। ममजल जान गुडलैंड्स में 75 साल के 75-year-old की श्री कासिराज हलकोरी, जो ओमदेव से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी पत्नी शोभा हलकोरी के घर मंजिल रान गुडलैंड से उठाकर बागोज गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड नेविया मिल ट्रियोले में 21 साल की 21-year-old की मिस बीबी फातिमा शबनीज सुकुमिया, जो शबनी से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका दफन संस्कार कल रात 9 बजे प्लेंडी पपाई का कब्रिस्तान में किया गया। नंबर 10 नहाबू सलीम स्ट्रीट बोबासा में 82 साल की 82-year-old की मिसेस कोरेसा इमामाली, जो मैडम आबू से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका दफन संस्कार कल रात 7:30 बजे बेडेडाम कासिक का कब्रिस्तान में किया गया। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फुटबॉल जगत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। अभी से कुछ घंटे पहले अर्जेंटीना में अर्जेंटीना का सुपर हीरो सुपर स्टार लियोनेल मेसी ने अपनी टीम यानी इंटरनेशनल टीम अर्जेंटीना के साथ आखिरी मैच खेला। इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यूईएफए नेशंस लीग लीग ए ग्रुप फोर में स्पेन और इंग्लैंड दोनों जीत पाए। स्पेन को काफी पेन हुआ, काफी कठिनाई हुई क्रोएशिया को हराने में। फर्स्ट हाफ में पेरिसिच का गोल, 1-0 से क्रोएशिया आगे। सेकंड हाफ में आर्सेनल का खिलाड़ी मिकेल मेरिनो का को सब्स्टिट्यूट के रूप में भेजा गया। सफल कोचिंग, मेरिनो का डबल और स्पेन की लगातार चौथी जीत। इस प्रकार स्पेन क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ। इंग्लैंड की भी जीत हुई, 3-0 से द थ्री लायंस चेक रिपब्लिक को हरा पाए, यानी हर लायन के लिए एक के गोल पर। थ्री लायंस में बब्बर शेर है कप्तान हैरी केन, उसका डबल रहा, एक ओन गोल। हैरी केन ने पीटर शिल्टन के रिकॉर्ड की बराबरी की। इंग्लैंड के लिए 125वां मैच और 91 गोल। इंग्लैंड के लिए गोल सेंचुरी बहुत दूर नहीं है हैरी पुत्तर के लिए। इस ग्रुप में स्पेन 4 out of 4 यानी 4 मैचों में 4 सफलताएं, 12 अंक। इंग्लैंड के लिए 9 अंक, क्रोएशिया के पास 3 अंक। कल के खेले गए अन्य मैचों के नतीजे, स्कॉटलैंड 1 स्लोवेनिया 2 स्विट्जरलैंड 3 नॉर्थ मैसेडोनिया 0 अल्बेनिया 2 सान मारिनो 1 बेलारूस ने फिनलैंड को 1-0 से हराया। कजाकिस्तान 2 फराओ आइलैंड्स 2 मोल्डोवा 0 स्लोवेकिया 4 एस्टोनिया 0 आइसलैंड 0 और बुल्गेरिया ने एवे जाकर लुक्जमबर्ग को 2-0 से हराया। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचों में साउथ कोरिया 2 उज्बेकिस्तान 0 चाइना 0 ताजिकिस्तान 1 इंडिया 1 यूरुग्वे 6 फेडरेशन यूनियन ऑफ रशिया 3 नाइजीरिया 3 अल्जीरिया 2 निजेर 1 जॉर्डन 0 वेनेजुएला 0 और आज सुबह अर्जेंटीना 3 बेने 0 कोलंबिया 2 पेरू 0। सो इंटरनेशनल ब्रेक, लंबा ब्रेक समाप्त हुआ। कहने के लिए ब्रेक था पर काफी क्लब नाराज हैं क्योंकि बहुत खिलाड़ी इंजुरी लेकर

वापस आ रहे हैं। इस वीकेंड से ही यूरोप भर में क्लब फुटबॉल की वापसी होगी। शुरू में बता रहे थे, आज लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के साथ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। इमोशनल फेयरवेल रहा स्टाडियो मोन्यूमेंटल दे ब्यूनस आयर्स में। 21 साल का इंटरनेशनल कैरियर आखिरी मैच में वही किया जो हमेशा से करता आया है, एक गोल स्कोर किया और 2 असिस्ट। अर्जेंटीना का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोर, सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला, 208 मैच 126 गोल, 208 मैचेस 126 गोल्स, 70 असिस्ट, 34 वर्ल्ड कप मैच जो रिकॉर्ड है, और 21 वर्ल्ड कप गोल्स, 1 वर्ल्ड कप, 2 कोपा अमेरिका, 1 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 2 बार फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड। वैसे गाना है डोंट क्राई फॉर मी अर्जेंटीना, पर मेसी के लिए अर्जेंटीना रोएगा नहीं बल्कि हमेशा अपने दिल में बसा के रखेगा। प्रीमियर लीग की वापसी होगी इसी सैटरडे को, इसी शनिवार को। अर्ली किक ऑफ है आर्सेनल और लीड्स के बीच, फिर 6 बजे से एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी बोर्नमुथ, इप्सविच फुलहम, संडरलैंड ब्राइटन, मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर, ये सैटरडे लेट मैच होगा। और संडे क्रिस्टल पैलेस, नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी, एवर्टन और लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, ये सारे 7 बजे। टेनिस, नोवाक जोकोविच का 102 टाइटल यानी चाइना ओपन के फाइनल में इंजुरी के कारण एलेक्स देमिनो मैच पूरा नहीं कर पाया और 102nd टाइटल ये गया नोवाक जोकोविच के नाम। केवल जिमी कोनोज और रोजे फेडेरर जोकोविच से आगे हैं, कोनोज 109, फेडेरर 103। चाइना में जोकोविच ग्वानजुन मतलब चैंपियन, तो जापान में कार्लोस अल्काराज चैंपियन यू शा शा जापान ओपन के फाइनल में अल्काराज ने यिरी लेरेका को हराया। क्रिकेट, कैप्टन स्नॉक कप्तानी पारी श्रेयस अय्यर की ओर से और पहली T20 सेंचुरी, 102 नॉट आउट, और टीम इंडिया ने आसानी से वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। वेस्ट इंडीज के 171 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने आराम से मैच जीता। 5 मैचों के इस T20 सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। जहां तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सवाल है, आने वाले मैचों के लिए स्मृति मंदाना को टीम कप्तान बनाया गया है, कप्तानी अब स्मृति करेगी। मॉरिशस की अंडर 23 फुटबॉल टीम कान 2027 के प्रीलिमिनरी राउंड से एलिमिनेट हो गई। फर्स्ट लेग में 2-0 की हार, इस बार को 2 में जिम्बाब्वे ने 4-1 से हमारी अंडर 23 टीम को हराया। मॉरिशस का मात्र गोल जॉर्डन ले जोलिकर ने स्कोर किया। जिम्बाब्वे के लिए मुनेसा फुपा का हैट्रिक। बैडमिंटन में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की मिक्स टीम प्रतियोगिता में 2 मैच जीतने के बावजूद हमारे नौजवान आगे के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए। पहले मैच में हमारे जवानों ने जिम्बाब्वे को हराया, दूसरे मैच में तुर्की के खिलाफ हार हुई, तीसरे मैच में हमारी टीम की जीत हुई 2-1 से दक्षिण अफ्रीका पर क्वालिफिकेशन के लिए काफी नहीं रहा। और जिसे हमने शुरू में बताया, आज का दिन यादगार रहेगा। लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कहा, हैरी केन ने पीटर शिल्टन के रिकॉर्ड की बराबरी की, मेसी अनगिनत रिकॉर्ड बनाकर जा रहा है, हैरी केन का सफर जारी है। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

बुधवार 7 अक्टूबर सवेरे के 7:05 रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं सुबह का नजराना इस कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं, आपकी सेवा में आ चुके हैं। सुप्रभात आप सभी को हमारी ओर से।

0: और चलिए आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से आरंभ हुआ होगा, ऐसी आशा हम करते हैं। और हर नए दिन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है, और हर नया दिन अपने आप में एक नए जीवन के समान होता है, और कहीं ना कहीं कुछ नया करने का एक अवसर होता है, कुछ सीखने का, कुछ जानने का, या अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का। तो चलिए जैसे भी हो, ये नया दिन आप सबको एक साथ बनाए रखे, आप लोगों के जीवन में प्रेम हो, अपनापन हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो, और आप जो भी चाहते हैं, आपकी सभी इच्छाएं जो है वो पूरी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए सुबह का नजराना इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। सुप्रभात, एक बार फिर से दिल से आप सभी का स्वागत है। 9 बजे तक चलने वाला है ये म्यूजिकल कारवा सुबह का नजराना का, और आइए इसकी शुरुआत हम करते हैं चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: संकट चाहे जितने भी आए, रणभूमि चाहे जितनी भी विकट हो, अगर कर्म धर्म से बंधा है तो सारथी भगवान ही बनते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 24 आवर्स अ डे।
1: आइए, यहाँ पर सवेरे के 7:14 हो रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। मौसलमा आना फ्लिक ऑफ लॉक यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, खासकर एवेन्यू मूले कासे, एवेन्यू दे थ्रिति, एवेन्यू दे मॉले, एवेन्यू दे मेरू, ए पास बेक्विन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 8 अक्टूबर को सुबह के साढ़े आठ बजे से दोपहर के साढ़े तीन बजे तक यहाँ पर बिजली के सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही लावाचिया के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। लावाचिया के खासकर विलेज हॉल लेन, शिवाला लेन, रॉयल रोड लावांचिया, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 8 अक्टूबर को सुबह के साढ़े आठ बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही ट्रॉबुचिक के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। ट्रॉबुचिक के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक गांधी रोड, एसएसआर लेन, ट्रॉबुचिक, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 7 अक्टूबर को सुबह के साढ़े आठ बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर आज साढ़े आठ बजे से सुबह के साढ़े आठ बजे से सपहर के चार बजे

0: के बीच यहां पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियाँ सीईबी की ओर से।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

यकीनन जो खुशी हमें किसी के साथ दोस्ती में मिलती है, वो सुकून हमें दुश्मनी में कहाँ मिलता है। दोस्ती जो है दिल को सुकून देती है, जीवन को एक नई आशा देती है, जीवन को एक नई उम्मीद देती है। वहीं दुश्मनी जो होती है मन का चैन खो देती है, मन का सुकून खो देती है और कहीं ना कहीं हम चिंता से घिरे होते हैं। तो अगर हमें चुनना पड़े दोस्ती और दुश्मनी के बीच, तो क्यों ना हम दोस्ती को चुनें और जहाँ तक हो सके किसी से दुश्मनी से दूर रहें, है ना। चलिए अभी के लिए 7:21 आपको बताते हैं कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना, 7:40 से आपके डेडिकेशंस को हम शामिल करेंगे, जिसके लिए आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस सवेरे से ही हमें मिल रहे हैं 4028085 पर, साथ ही 5251700005 पर। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज, आपको तो पता ही है हर बुधवार को होता है आ खेल खेले हम, उसमें आप इतने प्यार से हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, इसके लिए धन्यवाद। 8:30 आप सुन पाएंगे परिवार नियोजन इस कार्यक्रम को मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। 8:50 पर किरण जानकी से आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को, और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम जो है समाप्त हो जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति। 10 बजे होगा समाचार, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी से। 11 बजे होगा समाचार और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। दोपहर के 12 बजे वंदना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लाहिरी। 12:30 मराठी भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे प्रीति की प्रस्तुति में। दोपहर के 1 बजे आरसी प्रस्तुत करेगी तमिल भाषा में कार्यक्रम। 2:45 गुजराती भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे अमिता से, और फिर 2:30 से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस कार्यक्रम में। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सपेर के 4 बजे आप मराठी भाषा में प्रोग्राम सुन पाएंगे शिरीष की प्रस्तुति में। 5 बजे फारे की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे खेती बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम। 5:15 से उषा और रोशन आप सभी का साथ देंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम में। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6:30 हक्का भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे डेविड द्वारा। 7 बजे कलेवानी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तमिल भाषा में प्रोग्राम। 7:30 ग्रीशालिनी प्रस्तुत करेगी तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। 7:50 पर मराठी भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे नितिन बापू से। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम आप सुन पाएंगे रोशनी की प्रस्तुति में। 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिले शब, और फिर 9:00 से 11:00 के बीच आप सुन पाएंगे भोजपुरी तड़का इस कार्यक्रम को प्रताप की प्रस्तुति में, और 11:00 सुनहरे पल प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे नीलमणि द्वारा, और 12:00 से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की। और चलिए गाने का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं, और यहाँ पर मुकेश साहब और साथियों की आवाज़ों में इस गाने के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धर्म करम इस फिल्म से लिया गया है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।

दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये परीक्षा जो होती है जीवन में हमें बहुत दूर ले जाती है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स परीक्षा में भाग ले रहे हैं, परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं, आप लोगों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ लिखिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें, ऐसी कामना हम करते हैं। और ये तराना आप सभी

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

कविता बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी की आवाज़ों में। बुधवार 7 अक्टूबर, और चलिए जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, कोई ख़ास मौका है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनों के साथ इन खुशियों को बांट रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर आपकी खुशियों में हम भी शामिल हो रहे हैं। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, और यहाँ पर आपके मैसेजेस के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, आपके डेडिकेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरे प्रोग्राम तो हमारा रेडियो पर 6 बजे से शुरू होता है, लेकिन 5 बजे से ही हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके मैसेजेस हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी रिवेदिक क्रियोल से हमेशा हमारा साथ देती है, सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रभात विश कर रही है, और अगला गाना जाएगा यहाँ पर आप सभी के नाम, यहाँ पर सभी जीवन फैमिली के नाम जो हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिवेदिक क्रियोल, मौदाल बेयर, यूनियन पार्क, लारोजा और दुबई से। तो चलिए आप सभी का स्वागत हम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक और सुंदर सा मैसेज आया है, निस्वार्थ ही जीवन का धन है, सुप्रभात। तो चलिए, कुछ लोग फूलों की तरह होते हैं जो दूर रहकर भी अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं, फासले चाहे कितने भी हो, वो हमेशा हमारी यादों में, दिल में बसे हुए होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी, आप लोग भी, हमारे सभी सुनने वाले भी हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे दिल में बसे होते हैं, तो इस सुंदर से मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दिन कहेंगे आपको भी। यहाँ पर इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है लक्ष्मी जी, बॉम्बे से हमारा साथ दे रही है, ऐसे ऐसे गाने चलाया तो सुबह मानो खिल उठी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते लक्ष्मी जी, और यहाँ पर आप भी हमारा साथ दे रही है जानकर बड़ी खुशी हुई, और अगला गाना बेशक आपके नाम हम करेंगे। शिवरानी जी ग्रामबुआ से हमारे साथ जुड़ी हुई है और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। लीला जी बौशेरी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको लीला जी। हमारी प्यारी शोभा जी भी वाकवा से हमारा साथ दे रही है, कह रही है कि मैं और मेरे पति दोनों ही आपके प्रोग्राम से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। गाना जाता है श्रवीना अनुषा के नाम, आपके सभी दोस्तों के नाम और आपकी ओर से हमारे लिए भी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हमारा साथ दे रही है अनीता जी मौदालबिया से, आज का दिन सभी के लिए शुभ हो यही हमारी दुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपके लिए भी ये दिन ढेर सारी खुशियां लेकर आए। गाना जाएगा अनीता के नाम, कविता अमृता, सभी दोस्तों के लिए, सभी परिवार के लिए। यहाँ पर सुबी जी सवेरे सवेरे हमारे साथ जुड़ चुकी है, वाकवा से सुप्रभात आपको, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं, फिर चाहे रेडियो मॉरिशस हो, रेडियो मनोरंजन हो, हमारे टिकटॉक लाइव हो, आप सभी हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ कनेक्टेड रहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुबी जी। ओके, हम दोनों मिलके ऑलराइट, मौका मिलेगा तो इस गाने को हम चलाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ऐसे फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है। आप तैयार हो रही है, अस्पताल में काम करती है, तो चलिए आपको शुभ दिन हम कहेंगे, ईश्वर आपको ढेर सारी शक्ति दे। और जितने भी लोग इस समय काम करने के लिए जा रहे हैं, अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, आप सभी को हमारी ओर

यकीनन कुछ लोग ज़िंदगी में बहार की तरह होते हैं, कुछ लोग उस सावन की तरह होते हैं जो जीवन को खुशियों से भर देते हैं, है ना। तो चलिए अभी के लिए खूबसूरत यहाँ पर डेडिकेशंस आपके हमें मिल रहे हैं। जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, आप लोगों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ हमारी पूरी टीम की ओर से। और यहाँ पर शादी की सालगिरह मना रहे हैं तो उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। यकीनन ये जो खुशियों के पल होते हैं ना, इसे बांटने से जो है ये खुशियाँ और भी बढ़ जाती है। और ज़िंदगी का गणित भी कितना अजीब होता है ना, कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो चलिए एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ देते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। अविनाश यहाँ पर, बेटा अविनाश जन्मदिन इनका कल था, तो आपको अविनाश जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मामा मुन और पापा चांद की ओर से। साथ में आपकी पत्नी है नीलम, निया है, निक्षु है, साथ में अविशा है, आश्ले है, अभिषेक है, जिनश्री है। सभी फुकेचन परिवारों की ओर से अविनाश आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर माँ सुरागनी और बेटे गजन दोनों ही का जन्मदिन एक दिन है, यानी कि डबल सेलिब्रेशन। सो सुरागनी जी, आपको और आपके बेटे गजन, आप दोनों को जन्मदिन के हार्दिक बधाई आई है बॉशरी के सभी रघु परिवार की ओर से। और चलिए इस समय मीला जी निवग्रोव से साथ दे रही है और लंदन में उनके जो बच्चे हैं उनको याद करते हुए वो इस डेडिकेशन को कर रही है। किशन है, रुशना है, कोही है, प्रीतम है, किशी है, खुशी है, जेसिका है, सभी परिवार जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सूरज शर्मा सजादा जी ट्रियोले से साथ दे रहे हैं और गानों को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा मैसेज हमें मिला है लक्ष्मण सी गोविंद जी की ओर से, आपको भी इस नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वाकवा के शिव मंदिर की ओर से सभी को आप शुभ दिन कह रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लक्ष्मण जी आपके इस सुंदर मैसेज के लिए। विद्या जी यूनियन पार्क से हमारे साथ जुड़ी हुई है और कह रही है कि नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच विद्या जी, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन जन्मदिन का मौका हो, शादी की सालगिरह हो या कोई भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो, ऐसे गानों के साथ सेलिब्रेशन का जो मजा है और भी बढ़ जाता है।

और चलिए दोस्तों, इसी गाने के साथ जो है हम बढ़ेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचार की और उसके साथ कुछ और मैसेजेस हम यहाँ पर शामिल करते हैं। देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे सभी सुनने वालों को शुभ दिन कह रही है, प्रोग्राम को पसंद कर रही है। सुनीता जी ग्रांगुप से हमेशा हमारा साथ देती है, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। माला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आपको भी हम नहीं भूले हैं। आफिस जी लावण्या से हमेशा हमारा साथ देती है, हर एक प्रोग्राम में भाग लेती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी प्यार भरे साथ के लिए आफिस जी। और चलिए इसी गाने के साथ हम 8 बजे के भोजपुरी समाचार और शोक समाचार की ओर बढ़ेंगे और हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में। तो ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस पर। नमस्कार अभी के लिए आप सभी को और शुभ दिन हम कहेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सबके के नमस्ते। फजर के 8 बजल बा के समाचार सुना जा। बैंक ऑफ मॉरिशस भविष्य में रिटायर हुई होला लोग खातिर रिटायरमेंट सेविंग्स बॉन्ड के घोषणा कर लेबा। ई 15 बरिस के बॉन्ड पर हर बरिस 6% ब्याज मिली, जेकर गारंटी सरकार दे। 50 से 65 बरिस के मॉरिशन नागरिक

0: लोग एकर में 1,00,000 से 2,000,000 रुपया ले निवेश कर सकियन सा। ब्याज हर 6 महीना में मिली, पर रकम कम से कम 5 बरिस खातिर लॉक रही। समय से पहले रकम निकलला पर ब्याज दर 4.5% नेता बाजार दर के अनुसार रही। एकर खातिर आवेदन 15 अक्टूबर से 11 कमर्शियल बैंक में करल जा सकी। आवेदन के अंतिम तारीख 23 दिसंबर के है। आज फजीर के एबेन में अमेरिकी टेक कंपनी मेटा के प्रतिनिधि और मॉरिशस के अधिकारी लोग के बीच पहला कार्य बैठक लगता। फेसबुक और व्हाट्सएप के कंपनी के प्रतिनिधित्व करे होला ई प्रतिनिधिमंडल काल मॉरिशस पहुंचल। एकर में दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र के मेटा के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख और यूरोप मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्र खातिर सुरक्षा नीति प्रमुख शामिल हवन सा। बैठक में मुख्य रूप से लैका लोग के ऑनलाइन सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और पुलिस के संगे बेहतर सहयोग पर चर्चा शामिल बा। एकर खातिर सरकार और मेटा के बीच एगो संभावित रूपरेखा समझौता पर भी विचार करल जाए। मॉरिशस में 5 और 6 अक्टूबर के अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग पर दूसरका वार्षिक सम्मेलन के आयोजन होल। ई सम्मेलन आज हुई होला अफ्रीकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्खा के औपचारिक शुरुआत से पहले आयोजित करल गल। अफ्रीकी संघ के समर्थन से स्थापित करल जाय होला। अफ्खा के उद्देश्य अफ्रीकी देश के वास्तविक परिस्थिति और उपलब्ध आंकड़ा के आधार पर जस्ती सटीक क्रेडिट रेटिंग दे के है। सम्मेलन के दूसरका दिन रेटिंग उद्योग और नवा टेक्निक के संबंध पर चर्चा होल। एकर में खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आंकड़ा के गुणवत्ता जैसन मुद्दा पर ध्यान देवल गल। और दूसर देश के खबर में फ्रांस में शिक्षा खातिर फंडिंग बढ़ाई के मांग कर रहा स्कूली लैका लोग के समर्थन में काल देश भर में प्रदर्शन करल गल। देश के ढेर शहर में लैका लोग सड़क पर उतर के ई सब मांग के समर्थन करलन सा। ढेर जगह छात्र के संगे झड़प होल, पुलिस के ओर से आंसू गैस छोड़ल गल। देश में जेंसी के आंदोलन के लेके राष्ट्रपति इमानुएल माकों पर दबाव बढ़ ले जाता। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा होगा। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सबको के नमस्ते।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
0: मरने की खबर सुना जा। ममजेलशान गुडलैंड में 75 बरिस के सोसन कैंसों के श्री कुसिगास अलकोरी जुन ओमदेव से जस्ती जानल जाथरलन गुजर कल हवन। अर्थी आज फजर के 10 बजे उनकर पत्नी शोभा हलकोरी के घर ममजेलशान गुडलैंड से उठा के बागूश गुडलैंड के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM एवेन्यूले पालमिये कांगारो फ्लाक में 105 बरिस के संसैकों के श्रीमती कनकामा चिनिया पैदाश नाम बंगारी अर्जुन बबम से जस्ते जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 1:30 उनकर बेटा रामदास और देवानंद चिनिया के घर एवेन्यूले पालमिये कांगारो फ्लाक से उठा के लावोचो के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM रॉयल रोड कैंस कौतों फाकुआ में 77 बरिस के सोसंजी से तौके श्री गोइन सामी सुंदरम जुन राजन से जस्ती जानल जाथरलन आर साडाल कॉलेज के पुराना अटेंडेंट रलन गुजरगल हमन। अर्थी आज सांझ के 3 बजे उनकर पत्नी विमला सुंदरम के घर रॉयल रोड कैंस कौतों फाकुआ से उठा के फिनिक्स के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टूटे एट 3 PM श्रीवाला लेन पिछपा के मोताई ब्लॉन्च में 74 बरिस के श्वसन कातोजों की श्रीमती रूपावती जगह सिंह पैदाश नाम नक्चेदी अर्जुन राधा से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन। अर्थी आज दिन के 2:30 उनकर बेटा विकास जगह सिंह के घर श्रीवाला लेन पिछपा के मोताई ब्लॉन्च से उठा के पिछपा के मोताई ब्लॉन्च के श्मशान भूमि ले चल जाए। क्रिमेशन टूडे एट 2:30 PM अलीब्रियन फाकुआ में 64 बरिस के श्वसन काथों के श्रीमती विलासावादी लचिनी पैदाइश नाम

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 7 अक्टूबर सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं।

0: खेले हम।
1: और चलिए यहाँ पर दूसरे घंटे की शुरुआत होते होते शुरुआत हो जाती है आ खेल खेले हम इस छोटे से क्विज की, जो हम लेकर आते हैं हर बुधवार को सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में। और हमें पता है हमारे सुनने वाले जो है इसका इंतज़ार करते हैं ताकि इसमें वो भाग ले सके। तो चलिए आज बॉलीवुड की एक ऐसी म्यूज़िक डायरेक्टर का जन्मदिन है जो एक महिला है, क्योंकि अगर हम म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र्स की बात करें खासकर हिंदी फिल्मों की, तो ज़्यादातर ये जो क्षेत्र है मेल डोमिनेटेड रहा है, महिलाएं बहुत कम इसमें नज़र आती है। तो ये उन गिनी चुनी महिला म्यूज़िक डायरेक्टर्स में से एक है जिनका आज जन्मदिन है। आज ही की तारीख यानी कि 7 अक्टूबर 1941 को इनका जन्म हुआ था। तो आपको हमें इनका नाम बताना है, इसलिए 4028085 पर आप हमें कॉल ही कर सकते हैं। जी हाँ, ये उन गिने चुने संगीतकारों में से एक है जिन्होंने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब अपने आप में बहुत बड़े बड़े दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ऑलरेडी अपना नाम बना चुके थे। उन्होंने अपने बॉलीवुड का डेब्यू किया था 1959 की फिल्म दिल देखे देखो से, जब वो महज 17 साल की थी। उसके बाद उन्हें म्यूजिक डायरेक्शन का मौका मिला और कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। चलिए अभी तक हमने जो है पूरा इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी दी भी नहीं और आपके फोन कॉल्स यहाँ पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रही है? बहुत सारे लोग फोन लगाकर छोड़ देते हैं और फिर जो है फ़ोन हम रिसीव करते तो आप लाइन पर नहीं आते हैं। प्लीज़ जब आप फ़ोन करें तो प्लीज़ फ़ोन पर बने रहिए, क्योंकि तब जाकर ना हम आपकी बात को सुन पाएंगे। 4028085 है नंबर हमारा। तो चलिए आज हम जिनका नाम खोज रहे हैं वो एक बॉलीवुड की ऐसी म्यूज़िक कंपोज़र है जिन्होंने लेट 50s से लेकर 60 और 70 के दशक में काफ़ी फिल्मों के लिए काम किया है। चलिए एक और श्रोता से मिलते हैं। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते जी, आपका स्वागत है। कौन बोल रही है?
2: मैं विद्यावती।
1: विद्यावती जी
2: बोल रहा हूँ, उषा खाना है।
1: ओके, चलिए आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है। विद्यावती जी कहाँ से बोल रही है?
2: देवास। विद्यावती देवास, मैं मोटा ब्लॉक से बोल रही हूँ।
1: ओके जी, बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए, आपने भाग लिया इसके लिए शुक्रिया। आपको शुभ दिन कहेंगे,
2: धन्यवाद।
1: एक और श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्कार।
3: नमस्ते
1: जी, आपका स्वागत है। कौन है?
3: उषा खन्ना।
1: हाँ उषा खन्ना, आप अपना नाम पहले बताएं, कौन बोल रहे हैं? हेलो
3: जी,
1: आपकी बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हेलो, फिर

0: से आप बताएंगे कौन है?
1: दिदी फिनिक्स से।
0: अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए। फिनिक्स से आप हमारा साथ दे रहे हैं, जुड़े रहिए, थोड़ी देर में बताएंगे कि सही जवाब क्या है। चलिए ढेर सारे फ़ोन कॉल्स और साथ में आप मैसेज भी। दीपा जी कॉन्टोरेल से हमारा साथ दे रही है, कह रही है कि जवाब है उषा खन्ना। चलिए ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड से जुड़े कोई भी सवाल हम करते हैं, इस पर आपकी जानकारी काफ़ी होती है। एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार जितने लोग हमें फ़ोन करते हैं, हम आपसे मांग करेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें, एक तो रेडियो सेट के वॉल्यूम को कम रखें और रेडियो से थोड़ा सा दूर रहे ताकि हम जो है आपकी बात को अच्छे से सुन पाए। वरना ऐसे होता है जैसे अभी हुआ है कि हम अपनी ही आवाज़ को बड़ी ही तेज़ सुन पा रहे हैं। चलिए एक और श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है। कौन है?
2: अली।
0: कैसे है अली जी?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक है। और क्या है जवाब अली जी?
2: बिल्कुल उषा खन्ना।
0: कुछ जोड़ना चाहेंगे उषा खन्ना जी के बारे में?
2: नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है।
0: चलिए कोई बात नहीं, आपने पार्टिसिपेट किया इसके लिए धन्यवाद। शुभ दिन आपको। और एक और श्रोता है। हेलो नमस्ते।
3: हेलो सुमी जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन है जी?
3: मैं अमृता हूँ।
0: कैसी है अमृता जी? हेलो हेलो, आपकी लाइन कट गई शायद, आपके यहाँ लाइन में कोई खराबी आ गई। चलिए कोई बात नहीं अमृता जी। हेलो नमस्कार।
4: नमस्कार,
0: कौन है जी?
4: हम तारा हैं।
0: कैसी है तारा जी?
4: हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
0: बिल्कुल ठीक है। और क्या है जवाब?
4: जवाब है उषा खन्ना।
0: ओके, और उषा खन्ना जी का कोई गाना या किसी फिल्म में?
4: सभी गाना ठीक सुंदर है, सभी गाना।
0: बहुत धन्यवाद तारा जी आपके जवाब के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद। और एक और श्रोता। हेलो नमस्ते।
5: नमस्ते
0: जी, कौन है?
5: मैं हूँ वसंती।
0: कैसी है वसंती जी?
5: जी उषा खन्ना।
0: हाँ ओके। चलिए आपके जवाब के लिए धन्यवाद वसंती जी, शुभ दिन। और यहाँ पर एक और जवाब आया है मीला जी की ओर से, निवग्रोव से लिखती है, मेरा जवाब है उषा खन्ना। तो चलिए आपके भी जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है लाइन पर? हेलो नमस्कार।
6: नमस्कार
0: जी, कौन बोल रही है?
6: इंदिरा
0: जी। कैसी है इंदिरा जी?
6: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक है। और क्या है जवाब आपका?
6: जवाब है दीवाना।
0: चलिए आपके जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक यू।
0: ओके, लेकिन आपको कहेंगे ये जवाब ठीक नहीं था। और यहाँ पर हमने म्यूज़िक कंपोज़र कहा जो फिल्मों में संगीत देते हैं, देवानंद साहब तो एक्टर और फिल्म मेकर रहे हैं। और यहाँ पर माला जरी जी का जवाब आया है उषा खन्ना। चलिए आपके भी जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम कॉल हम लेते हैं। हेलो नमस्कार।
7: नमस्कार सिमी जी।
0: नमस्ते जी, कौन है?
7: मैं हूँ अनिता मोदाजिया से।
0: कैसी है अनिता जी?
7: ठीक हूँ, आप ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक है। और क्या है जवाब आपके पास?
7: उषा खन्ना।
0: चलिए आपके भी जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, शुभ दिन। तो सभी के सभी लगभग श्रोताओं ने मैसेज के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए सही जवाब दिया, सिर्फ एक जवाब हमें गलत मिला। और इस छोटे से क्विज़ में आपने भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, उषा खन्ना है सही जवाब। आज है इनका जन्मदिन, 7 अक्टूबर 1941 को इनका जन्म हुआ था। ये म्यूज़िक डायरेक्टर तो है ही, साथ ही इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काफ़ी गाने भी गाए हैं। और अपने करियर के दौरान इन्होंने लगभग जो है 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, संगीत दिया है। और हम हिंदुस्तानी, शबनम, आप तो ऐसे न थे, हवस, साजन बिन सुहागन और कई अन्य फिल्में। और इनके जो यादगार संगीत है, जो गाने हैं, वो अपने आप में बड़े कमाल के हैं। जैसे कि छोड़ो कल की बातें, हम तुमसे जुदा होके, मधुबन खुशबू देता है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, ये सारे गाने उन्होंने जो है गाए हुए हैं। तो आप लोगों के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जो गाना हम चलाने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो है बिन फेरे हम तेरे, इस फिल्म का। और इस फिल्म के इस गाने में आप रफ़ी साहब के साथ साथ उषा खन्ना जी की आवाज़ को भी सुन पाएंगे।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ 8:30 बज चुके हैं और अभी के लिए समय हुआ है हम बढ़े परिवार नियोजन इस कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मिस्टर भगन, तो आइए उनको सुनते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

1907 के सालों में जब एक परिवार में बहुत बच्चे थे, तब मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ने समाज में आक्रामक अभियान चलाया था। परिवार नियोजन पर फिल्म, शो, पोस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्विज, मोबाइल सिनेमा के माध्यम से, और इससे 1970 के सालों में जन्म दर यानी कि बर्थ रेट 3% से घटकर अभी 1.5 हुआ है। मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऐसे संघर्ष करता रहा और 1990 में मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड में सबसे उल्लेखनीय एनजीओ प्राप्त हुआ था। साल 2000 से मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की एक व्यापक अवधारण की दिशा में कदम बढ़ाया, जिसमें एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी और प्रजनन स्वास्थ्य के संबंधित मुद्दे शामिल थे। साल 2003 में मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली वेलफेयर के सहयोग से ड्रॉप इन सेंटर का निर्माण किया था, जहां यौन शोषण के शिकार बच्चों की सहायता करते हैं। मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन इस साल 2 अक्टूबर को आपके सेवा में 69 साल से हैं और आगे भी आपको सेवा प्रदान करता रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुज़ुर्ग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन इस साल के अंतर्राष्ट्रीय बुज़ुर्ग दिवस में ये जोर लगा रहा है, दीर्घायु का युग, लंबी उम्र के लिए प्रणालियों पर पुनर्विचार, यानी कि द एज ऑफ लॉन्गजेविटी, रीथिंकिंग सिस्टम्स फॉर लॉन्गर लाइव्स। मनुष्य अब पहले से कहीं अधिक दीर्घायु हो रहा है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा में पिछले 7 दशकों से लगातार वृद्धि हो रही है। दीर्घायु जीवन के विभिन्न चरणों में स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक तिथियों तथा मानवाधिकारों के अनुभव पर अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है। विश्व भर में वृद्ध लोग यानी कि जिन्हें 7 साल से अधिक उम्र की है, की संख्या 1980 में लगभग 26 करोड़ से बढ़कर 2021 में लगभग 75 करोड़ हो गई है, यानी कि 3 गुना वृद्धि हुई है। 2021 से लेकर 2050 के बीच वैश्विक स्तर पर वृद्ध आबादी के हिस्से 10% से बढ़कर लगभग 17% होने का अनुमान है। वृद्धावस्था एक सामान्य प्रक्रिया है हमारे जीवन में। जो लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको वृद्ध माना जाता है। कई देशों में बढ़ती उम्र वाली आबादी देखी जाती है। इसका एक कारण ये है कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, यानी कि लोग अच्छे स्वास्थ्य सेवा से लंबे उम्र तक जीवित रहते हैं। पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार अभी मॉरिशस में लगभग 2,64,000 लोग वृद्ध हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस ने ये प्रेडिक्ट किया है कि अगले 20 से 25 सालों में ये स्टैटिस्टिक्स दुगना हो जाएगा, यानी कि साल 2050 तक मॉरिशस का पॉपुलेशन में 30% लोग वृद्ध होंगे। आज हमारा पॉपुलेशन लगभग 1.2 मिलियन है और हमारे देश का प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट लगभग 1.5 है, जो काफ़ी कम है। एक जोड़े में यानी कि कपल में पुरुष और महिला होते हैं, यानी कि 2 लोग, और नॉर्मली उनके 2 बच्चे होने चाहिए। इससे जो प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट वो 2 होगा, पर मॉरिशस में अभी ये 1.5 है, जो कि काफ़ी कम है। इसका ये मतलब है कि आने वाले सालों में हमें कई नए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन में हमने ये निरीक्षण किया है कि जो किशोरी गर्भावस्था है वो काफ़ी गंभीर है। पिछले साल हमने लगभग 260 किशोरी गर्भावस्था के केसेस रजिस्टर किए थे, और जिन लोगों के आर्थिक परेशानियां हैं उनके ज़्यादा बच्चे हैं, और जो लोग आर्थिक रूप से स्थिर हैं उनका 1 बच्चा है या कोई भी बच्चा नहीं है। इस प्रजनन असंतुलन
को भी ठीक करना चाहिए। जिन लोगों के बहुत बच्चे हैं उनको एक गर्भ

निरोधक तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, और जिनके कम या कोई भी बच्चा नहीं है उनको और बच्चे प्लान करना पड़ेगा। किशोरी गर्भावस्था को भी कम किया जा सकता है जब माता पिता और युवक ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट सामान्य हो जाएगा 2 पर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले कुछ सालों में मॉरिशस का पॉपुलेशन कम होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों का देहांत होगा और बहुत कम बच्चों का जन्म होगा। बढ़ते उम्र के साथ कई परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि शरीर का कमज़ोर होना, बीमारियां आना, अकेलापन, मनोवैज्ञानिक परेशानियां और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य परेशानियां। वृद्धावस्था में लोगों को पीढ़ी का अंतर यानी कि जेनरेशन गैप का सामना करना पड़ता है। वे अपने बच्चों या छोटे बच्चों को समझ नहीं पाते या फिर बच्चे उनको समझ नहीं पाते। अभी हम ये भी देखते हैं कि डेवलपमेंट और तकनीकी उन्नति के वजह से ये जनरेशन गैप ज़्यादा बढ़ गया है। कई परिवारों में ये भी देखा जाता है कि वृद्ध लोग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। कहीं ये भी देखा जाता है कि बहू बेटे और सास ससुर में अनबन के कारण बच्चों और वृद्ध लोगों पर गलत असर होता है। जिनके बच्चे उनका देखभाल नहीं करते उनको वृद्धाश्रम जाना पड़ता है या फिर अकेले रहना पड़ता है। वृद्धाश्रम में उनके बच्चे उनको देखने भी नहीं आते। कुछ वृद्ध लोग अपने पति या पत्नी के गुजर जाने पर अकेलापन का सामना करते हैं। जिन वृद्ध लोगों को स्वास्थ्य समस्या है उनको लंबे समय तक इलाज करवाना पड़ता है और दवा भी लेनी पड़ती है, या वृद्धावस्था के दौरान दर्द का सामना करते हैं। कुछ लोग दीर्घकालीन बीमारियों का सामना करते हैं, जैसे कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे ये दिखाते हैं कि कुछ वृद्ध लोग यौन सक्रिय होते हैं, क्योंकि उनके यौन अंग अभी भी काम कर रहे होते हैं और उनमें सेक्स की इच्छा भी होती है। 55 साल के बाद लोगों में यौन सक्रियता अलग मायने रखता है, न कि बस यौन संबंध। कुछ लोग इनको गलत समझते हैं और गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कुछ वृद्ध लोगों को इनफर्टिलिटी या यौन रोग यानी कि सेक्सुअल डिसफंक्शंस का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्ट्रेस और चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और कुछ लोग जो वृद्ध हैं उनको काफ़ी गंभीर मनोवैज्ञानिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डिप्रेशन, चिंता, अकेलापन इत्यादि। वृद्धावस्था और उनसे जुड़ी हुई परेशानियों के कारण कुछ वृद्ध लोग की सहन शक्ति कम हो जाती है और वे ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन में रहते हैं। वृद्धावस्था में कुछ लोगों को मौत की चिंता यानी कि डेथ एंग्जाइटी भी होता है। वृद्धावस्था में लोग ध्यान और स्नेह की ज़्यादा उम्मीद करते हैं और उनके परिवार व्यस्त जीवन के वजह से उनकी ये उम्मीद पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि उनमें ज़्यादा चिंता और अकेलापन का सामना करने में मजबूर कर देता है। कुछ वृद्ध लोगों में भूलने की बीमारी हो जाती है, जो उनको काफ़ी परेशान करती है। भूलने की बीमारी अधिक गंभीर अवस्था में डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है। ये कुछ कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता है। लोगों के बढ़ते उम्र के साथ उनके दिमाग भी कमज़ोर होता जाता है। कुछ गंभीर केसेस में जिनको अल्जाइमर्स हो जाता है वे सब कुछ भूलने लगते हैं, यहाँ तक कि अपना नाम या जीवन के अंश, या फिर अगर उन लोगों ने कोई काम अभी अभी किया था तो वे भूल जाते हैं। ये भी हो सकता है कि वे अपने परिवार के लोगों को भी भूल जाते हैं, और कुछ लोग अपना घर का पता भी भूल जाते हैं और घर वापस नहीं जा पाते हैं। अल्जाइमर्स एक प्रगतिशील रोग है जो कि कुछ सालों के बाद ज़्यादा गंभीर होता जाता है। अभी तक अल्जाइमर्स डिजीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। कुछ वृद्ध लोग मादक द्रव्य का सेवन यानी कि सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं और जिनसे जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करते हैं। लोगों में दिलचस्पी है न केवल दीर्घायु तक जीने में, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अच्छे स्वास्थ्य का होना। एक व्यक्ति

कि 50 साल से कम उम्र वाले स्वास्थ्य ये दर्शा सकता है उनके बढ़ते उम्र में उनका स्वास्थ्य कैसा होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमें बढ़ते उम्र के साथ एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए ये सब करना चाहिए। आपका सही बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए 50 साल की उम्र में। आप व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करें। प्रति सप्ताह हमें 5 दिन कम से कम 30 मिनट रोज़ व्यायाम करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें फल सब्जियां और कम वसा वाले प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लेना चाहिए और अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का कम सेवन करना चाहिए। जिन लोगों के कम स्वास्थ्य समस्या हैं और टाइम पर इलाज कराते हैं वे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। जो लोग धूम्रपान और शराब से दूर रहते हैं, लचीलापन और कम मनोवैज्ञानिक परेशानियां जिनमें होती हैं उनका स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक होता है। और ख़ासकर जिनको सामाजिक और पारिवारिक समर्थन और सामाजिक संपर्क मिलता है, जो लोग सुखद विवाहित जीवन जीते हैं और जो परिपक्वता यानी कि दुख के स्थिति में आसानी से हार ना मानना यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन में हम सभी वर्ग के लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। वृद्ध लोगों के लिए कई सेवा उपलब्ध हैं जैसे कि मामोग्राफी, एकोग्राफी, ब्लड टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट इत्यादि। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें इन फ़ोन नंबरों में कॉल कर सकते हैं 2089233 या 2114101 या आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं जो कि लारी दे फोर्ज पोर्ट्विस में स्थित है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिवार नियोजन इस कार्यक्रम को मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मिस्टर भगन ने, इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: सवेरे के 8:50 और अभी के लिए समय हुआ है हम बढ़े हमारी धरोहर इस प्रोग्राम की ओर और इसे हम सुनते हैं आइए किरण जानकी जी से।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, आज 7 अक्टूबर है जब हमने एगो ऐसन धरोहर के मान देवब जा जेकर नाम है कपास कॉटन। 7 अक्टूबर के वर्ल्ड कॉटन डे मनाइला जा यानी कि विश्व कपास दिवस। तू जोन कमीज कुर्ता साड़ी चूड़ीदार या कोनो भी कपड़ा पहनेला या रुमाल जेब में रखेला वो खाली एगो कपड़ा नहीं है बल्कि उस सब किसान के पसीना के कहानी है जे

0: कॉटन कपास के खेत में काम करे रंसा। कपास कॉटन के सफेद सोना बोलल जला और इस सची तह आज दुनिया के 80 देश में 10 करोड़ परिवार कपास यानी कॉटन पर जिएला और इमें आधा से जस्ती औरत लोग बा। ई बरिस 2026 के थीम ओकर विषय है अच्छाई खातिर कपास व्यापार परिवर्तन और पार्टनरशिप साझेदारी से समृद्धि के ओर बढ़ा। एकर मतलब बहुत सीधा बा, कपास यानी कॉटन के सफर खाली खेत से फैक्ट्री तक नहीं होवेला बल्कि गरीबी से अमीरी तक। जब हमने कॉटन के कपड़ा पहनी लास या खरीदी लास त खाली कॉटन नहीं किना थी सा, एगो किसान के परिवार के मदद कर थी सा, एगो औरत मजदूर के आत्मनिर्भर रहे के मदद कर थी सा। और एगो दूसर बड़ा बात त ई है कि हमने ई धरती के बचावत है सा प्रदूषण से, कहे कि कॉटन कपास एगो नेचुरल बायोडिग्रेडेबल फाइबर है जौन की प्रकृति में घुल मिल जाला बिना प्रदूषण कर ले। जबकि उधर प्लास्टिक के कपड़ा के देखबा तो वो लगभग 200 बरिस तक पर्यावरण में कचरा फैलावेला। तो चला कपास कॉटन दिवस पर ई प्रेरणा ले जा कि जहाँ तक हो सकी तक कॉटन के लुगा की नबजा, जेकर से किसान लोग के मदद तो होइबे करी लेकिन प्रकृति के सुरक्षा भी होई और कॉटन से कोनो एलर्जी होई के कोनो खतरा कोनो डर नहीं रहेला। कॉटन ओ चाहे सर्दी के मौसम रही या गर्मी दोनों में सकबा पहने आपके त्वचा आपके स्किन के कोनो समस्या नहीं होई। कॉटन पहनला खाली एगो फैशन ही नहीं है बल्कि एगो जिम्मेदारी है। कॉटन के सब अच्छा ही बात बा, खाली कॉटन से हमने के भविष्य भी अच्छा रही। ई रहल कपास दिवस सफेद सोना यानी कॉटन पर आज के धरोहर कार्यक्रम। ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: तो चलिए किरण जानकी जी को हम धन्यवाद देते हैं हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए। और आज विश्व कपास दिवस है, इसकी भी शुभकामनाएं। ये सिर्फ एक फसल नहीं है बल्कि रोज़गार का भी एक जरिया होता है, व्यापार है, उद्योग है, परंपरा है। और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे दिन जब मनाए जाते हैं तो इसका अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और इसी के साथ अब बारी है एक भोजपुरी गीत की, जिसके साथ समय हो गया है हमें आपसे विदा लेने का। और बड़े ही प्यार से आज भी आप हमारे साथ जुड़े रहे सवेरे के 6 बजे से अभी तक। इस भोजपुरी गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं 9 बजे के समाचार की ओर, और उसके बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा इस प्रोग्राम को रत्ना की प्रस्तुति में। उनका साथ आप ज़रूर दीजिएगा। 10 बजे हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी भक्ति धारा इस कार्यक्रम में। तो अभी के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। और ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं गीता जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते गीता जी।
2: नमस्कार अटनाथ जी, सभी को हमारा नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस ने भविष्य में रिटायर होने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स बॉन्ड की घोषणा की है। इस 15 साल के बॉन्ड पर सालाना 6% ब्याज मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार देगी। 50 से 65 साल के मॉरिशन नागरिक इसमें 1,00,000 से 2,000,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। ब्याज हर 6 महीने में मिलेगा, लेकिन रकम कम से कम 5 साल तक लॉक रहेगी। समय से पहले रकम निकालने पर ब्याज दर 4.5% या बाजार दर के अनुसार होगी। इसके लिए आवेदन 15 अक्टूबर से 11 कमर्शियल बैंकों में किया जा सकेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 23 दिसंबर

पर हैं। आज सुबह एबेन में अमेरिकी टेक कंपनी मेटा के प्रतिनिधियों और मॉरिशस के अधिकारियों के बीच पहली कार्य बैठक लग रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप की कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला ये प्रतिनिधिमंडल कल मॉरिशस पहुंचा। इसमें दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र के लिए मेटा के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख और यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के लिए सुरक्षा नीति प्रमुख शामिल हैं। बैठक में मुख्य रूप से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, कॉन्टैक्ट मॉडरेशन और पुलिस के साथ बेहतर सहयोग पर चर्चा शामिल हैं। इसके लिए सरकार और मेटा के बीच एक संभावित रूपरेखा समझौते पर भी विचार किया जा रहा है। मॉरिशस में 5 और 6 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग पर दूसरे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन आज होने वाली अफ्रीकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्का की औपचारिक शुरुआत से पहले आयोजित किया गया। अफ्रीकी संघ के समर्थन से स्थापित की जा रही अफ्का का उद्देश्य अफ्रीकी देशों की वास्तविक परिस्थितियों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अधिक सटीक क्रेडिट रेटिंग देना है। सम्मेलन के दूसरे दिन रेटिंग उद्योग और नई तकनीकों के संबंध पर चर्चा हुई। इसमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आंकड़ों की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। और विदेशी खबरों में फ्रांस में शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग कर रहे स्कूली छात्रों के समर्थन में कल देश भर में प्रदर्शन किए गए। देश के विभिन्न शहरों में हजारों छात्रों ने सड़कों पर उतरकर इन मांगों का समर्थन किया। कई जगहों पर छात्रों के साथ झड़प होने पर पुलिस की ओर से आंसू गैस छोड़े गए। देश में जेंसी के आंदोलन को लेकर राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों पर दबाव बढ़ गया है। और दिल्ली में कल देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके दिल्ली के आसपास के इलाकों के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। Your news on NBC Play.

0: बुधवार का दिन 7 तारीख अक्टूबर का महीना और रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आपका साथ देने के लिए। आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। आपको एक बार पुनः याद दिला दें, इस कार्यक्रम को आप दोबारा से सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले कि खेल कूद हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। जैसे पहले के समय में हमारे जब गिरमिटिया मजदूर लोग मॉरिशस आए थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने शारीरिक विकास में भी अपना उतना ही योगदान दिया, साथ ही साथ खेल कूद किस प्रकार से हमारे मॉरिशस में स्थापित हुआ, और साथ ही साथ खेल कूद दौरान जब कभी घाव लग जाता था तो कैसे लोग इसका निवारण ढूंढते थे, कैसे इसको ट्रीट किया जाता था, इस पर थोड़ा इतिहास की ओर भी हम चलेंगे। और आज के समय में भी खेल कूद के दौरान अगर किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर की ज़रूरत कब पड़ सकती है, और किस तरह से चोटों का इलाज किया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर संजीव कुमार बाबुआ जी, जो कि एक प्रेसिडेंट ऑफ मास्टर्स पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। जी हाँ, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ वे डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के, और डायरेक्टर ऑफ मेडिटेशन, साथ ही साथ हेल्थ एंड फर्स्ट एड सेंटर के यहाँ पर डायरेक्टर उपस्थित हुए हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत बातें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम रत्ना जी, और जितना श्रोतागण इस प्रोग्राम में जुड़ल हुए उस सब लोगों के प्रणाम मिलते हैं।
0: बहुत बहुत स्वागत बात। डॉक्टर जी, आज के शुरुआत करे के अगाड़ी पहले तो हमने के हाई बताओ, जैसे जब शुरुआत होल रहल मॉरिशस में, जब गिरमिटिया मजदूर लोग आल रहलन, तो खेल कूद के है जो विकास होल मॉरिस में, वो कैसे हमने के मॉरिस में स्थापित होल?
1: देखा, ई जोन खेल कूद है ई एक परिवार के, एक समाज के और एक राष्ट्र के एक सूत्र में बांध के रखेला। इससे हमने के जो पूर्वज लोग रलन जा गिरमिटिया, अच्छा वा बोले कि जितना युवा लोग हवन सा, जितना जवान लोग हवन सा, जब बोलिए सा गिरमिटिया तो

0: सुंजना सर के हवंजा, इसमें थोड़ा प्रकाश डाले थे इस बोली से आगे। जब देखबा कि 1834 जिस भी थनकात में जब पहला जहाज हमने के देश में आल उकर में थनसिस जो हमने के जो गिरमितिया लोग रलंजा अपन देश छोड़ के भारत से कैसे अगड़ा बा बारा बा बनारस बा उत्तर प्रदेश से और जो बिहार से जो गंगा के टच से आलनजा वो लोग ऐसने ना आलनजा खाली हमी के खेत में काम करे जहाँ पे कंडा में काम करे जब आलनजा तो अपन साथ अपन संस्कृति अपनी भाषा अपनी जो कल्चर और जितना हर खेल कूद के भी जो उन लोग के अनुभव ज्ञान रहा साथ लेके आ रलनजा ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे समझे के कि हई देश में जब से उस समय से जब अलन जा तहजा पड़ी बहुत कठिनाई के सामना करे के पड़ल। जब अलन जा हजा से तो उ लोग कैसे बन जा कि हई कैंप बोले जला जैसे सुखिया के जो न और अथी जहाँ पर काम करे के जन सगरो सगरो गलन जा तो हजा पड़ी अपन परिवार के साथ रहन जा। धीरे धीरे जब समय बीतते बीतले गल तो धीरे धीरे मैडम लोग सब जब
1: महिला
0: लोग हाँ। और लड़का लोग सब अलन सा जब भाई देश में अलन सा कि एगो जीवन के पहला शुरू करे के हाउ समय में हो जा पड़ी अच्छा बात कि जाने के जब स्पोर्ट्स के बारे में बतिया था खेल कूद के तो वहाँ पर भी उस देश में वहाँ पर लोग के बहुत कठिनाई पड़ रहा है। उस समय बहुत से बीमारी रहल कैसे कोलेरा टाइफॉइड डायसेंट्री सब रहा हो जा पड़ी तो उससे छुटका पार के भाग के और बहुत अलग से कि जब मॉरिशस में अबा ना तेजा पे के जो पत्थर उठेबा तेजा पे सोना मिली तो इस तरह से जब लोग सोचलन से कि हिजाब से कि एगो अच्छा जीवन बनाई के बा और कि अच्छा स्वास्थ्य भी रही और काम से पैसा लियन सब तो इसी तरफ से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रहा उस तरफ से लेके लेके एगो कंट्रैक्ट में अलन सब जब कंट्रैक्ट में लंस है तो उ लोग ये लोग नहीं समझा कौन पाप ये सीए तो मतलब कुछ सीए करत हो सर तो उस समय जब अग्रीमेंट बोलत लंस है तो नहीं सकत लंस प्रोनाउंस करे बोले कौन से अग्रीमेंट ग्रीमित ग्रीमित ग्रीमित से ग्रीमित हो गल तो उसमें कौन चीज लिखा रहल कौन चीज बा लोग समझ लन जा नहीं लेकिन उसमें रहल कि हर महीना में 5 रुपया मिली और काम के जो कंडीशन रहल कैसे रही और 3 महीना 6 महीना के अक्ते लोग के पैसा मिल जाए साले जैसे बोले जला वो कंट्रैक्ट में तो सब कुछ नहीं रहा। जब अलन जाए जा पड़ी तब रलन से तो दूसर दूसर जगह गए से किसी मोगिस में सगरू में सब कौ कैसे कौ इच्छे कौ सब सगरू है। जब हजा से गलन से अपन कैसे पहला जो ना थनसिस पैसों आ रहा जा रन से पूर्वज लोग तो औतवाने फुलियार गलन जा हौजा पड़ी अपन जीवन शुरू हो जा पड़ी तो धीरे धीरे जब जब समय बीतते गल तो जा पड़ी अब कैसे अपन हजार नया देश में देखा ना बहुत से कठिनाई पड़े कर नहीं जान तो कहाँ अभी के ज़माना में तो सब बा कम्युनिकेशन के फैसिलिटी के मैं हाउ समय सोचा कुछ नहीं बा और ऐते हाउ इस दहाज में जब आते पहले अतलास में आते सोचा कि कितना घाम पानी दहाज में 3 महीना ओकरे में पड़े रहे के तब ऐलन सा और उस समय देखा ना कब के कोई के जो वो बीमारी शुरू है कुछ कोई के सर्दी खोखी वाला था जल्दी से नहीं होला थोड़ा समय ले वाला वो बोले सा इंक्यूबेशन पीरियड बोली ला जा तो उस समय जब भाई बीमारी दल कोलेरा टाइफाइड डायसेंट्री सब रहल तो वो बीमारी के मैनिफेस्टे करे के साइन एंड सिम्पटम जैसे बोली जाला समय ले वाता तो जब दहाज में आओ तो जब बीमार जल्दी हो जान सा जब बीमार हो जाता है तो उसमें इलाज नहीं रहा ना कैसे करें सा कैसे
1: कोनो
0: ट्रीटमेंट नहीं तो कुछ होता जब लोग की मृत्यु हो जाता है तो लोग के वो काला पानी में डाल दे वतन सा। अब सोचो कि अब समय के जब कौन तुहर परिवार आवाता साथ बा कि वो लोग के लेके हई काला पानी में डाल रहे कितना कठिन से अलन जा और कितना दुख से तो ये स्वास्थ्य और लोग बढ़िया रहन सा बहुत काम कर दें सा खेती में खेत की मारे जब ये बहुत खेत तब अलन से जब ये जब रहत रहत धीरे धीरे तब जीवन आगे चले लगल तो जो उस समय की कठिनाई से फजीर के देखा ना जब किरण फूटे सकते जब जैसे सूर्य उदय हो सकते वो लोग अपन खेत में काम शुरू कर दें सा अभी के समय में देखा था लड़का लोग सुते रहा कितना 6 बजे से पहले, मैं उन लोग के

0: उन्हें से
1: उन्हें
0: सुविधा,
1: तड़के उठ
0: तो उन लोग
1: जाता
0: के
1: ना।
0: उन लोग के स्वास्थ्य कैसे रहा और उन लोग कैसे अपन खेती बाड़ी में अपन जीवन चलावत रहन सा, और जो कोजिशों रहल कठिन रहल बहुत दिन में। फिर भी जब सूरज डूब गल तो आवतन सा घरे, हाई समय में जब लोग जब देखलन से कि कोथा समाप्त होता असकी अपन वापस जेन सा भारत या हजे रहन सा, कोई लग अपन सब कुछ लेके आ रहा सा अपन संस्कृति भाषा सब कुछ लेके आ कि हजार देश में कि हजार नवा जीवन शुरू करेगी। तो उस समय जब समय बीतते गल तो शादी होल लड़का जो नवा जनरेशन होल, तो उस समय के अब देखल जला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहल सा उस समय तो वो भी वहाँ पे लोग के कोजिशों थावाय से, तो ये लोग कैसे करके अपन कैसे सब लोगों से मिलियन से बातचीत करियन सा, तब बैठका थ्रू होल बैठका शुरू करलन जा कि अपन संस्कृति भाषा से। बैठका एगो ऐसा इंस्टीट्यूशन किसे कब से बोले कि एगो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, और वहाँ पर जितना डिसीजन लेवे के और जितना सब कोई आ रहा सा, तो वहाँ पर वो लोग शाम के सवेरे शाम हुई तो जाके सब लोग एकजुट मिलके किसे थोड़ा बोल ली कि जब खेल कूद जावेला और जब मिलन होला सबके, हमने के देखना हमने एगो ऐसा प्राणी है कि नहीं सक सब अकेले जिए
1: सोशलाइजे करे के जरूर
0: चला सला सोशलाइजे करे के सबके से मिलजुल के रह के। तो उस समय जब आलम से एगो नया देश में और जब वातावरण जैसा रहल कि बहुत कठिन रहल, तो कैसे अपन जीवन चलिए जा, लड़का लोग लगलन से अब खेले खेल शुरू करे खेल रहा उस समय कैसे बोलन जा सिरिंगोल तेलंगी अभी बोलें सा काइट, तो खेल के जो गिली घंटा भी रहल तो लड़का लोग सर उ लोग के जो पिता जो ना दादा दादी लोग लोग के कहानी भी सुनावे और लोग के बतलाए कि चला खेले शुरू करे के पास कि हाउ अभी बोले सा स्ट्रेस बोली ला सा ना थका प्रॉब्लम सब कुछ होला, तो उस समय भी तो कैसे इसके छुटकारा पाई के कैसे इसके दूर जाए के, तो लड़का लोग सर खेले के शुरू करे के। बैठका में पढ़ाई तो होता लेकिन वो ऐसा एगो स्थान बैठका तो अभी तो बा अभी देखबा तो हमारे देखे में एगो 104 गो बैठका बा देश में उस समय हर जितना कौन रहल जितना ताबिसमा रहल वहाँ पर भी बैठका रहल, और जितना संस्कृति भाषा के और जितना कैसे पूजा सब चलते रहे और अपन सोशलाइजेशन के
1: एगो रिलीजियस गैदरिंग नियर
0: ये भी एगो भाव से जब देखबा नहीं मन से तेगो एगो भाव से हमने सोशलाइजेशन खातिन अब लगन से लड़का लोग खेले कैसे बन सा कि धौड़े के खेले के। जब समय बीतले गल तो जितना अब नवा जनरेशन आल जितना नवा पीढ़ी लोग आयन जा एगो के नाम से कब ले कि कैसे एगो वायलाइडो बा ओका नाम है कपेन नॉर्फ में वत है, वो बेचारा अभी तक अपन स्पो में वो शुरू कलक कान काटे के, जब कान काटा कान के लाद के फिर भी समय खोज के वो शुरू कलक है जो अथी जो हाउ समय में जब अंग्रेजी देश रलन सा अंग्रेजी लोग रलन सा, तो लोग वहाँ पर सब जितना इस्टाब्लिश जितना हजबरी थी बा है कौ बा, तो हो जा परी वहाँ लोग के अथी रहल स्पोर्ट ग्राउंड रहल कैसे मतलब कि खेल के मैदान बा लापलैंड अभी देखबा तो अभी तक बा। तो जब देखबा बेलवी बेलवी एगो एग्जाम्पल देते थे सगरो भी बा हो जब एगो लापलैंड बा हो जब खेल के मैदान बा, तो हो जा परी ओकर जब देखला कि मौका बा तनी धौड़े ओके वो अपने से धौड़े, तो उस समय जब देखलन जा थी हमने के ब्रिटिश जो अथी रहन सा कोलम बोलतलन सा कैसे बतलन सा कि सरदार लोग रहा लोग के बुजुआ बोलतलन सा, तो एक दिन देखलन सा ये धौड़े ला तो एक बात बात में उ सुना गल चीज छुकरवा धौड़े ला कना वायला दो कपेन रहेला कि उमोल वाजिया के वासी वन ऐसे तो बोलते कैसे हमने के खेल कुछ शुरू हल हमने के जड़ से। तो उस समय से जब जब ये लोग शुरू कलन सा खेले के तो जाने ला हर जितना है सुख या जितना पड़ी गन्ना के जहाँ पड़ी काम होला तो वहाँ पर खेल के भी एक थी प्रतियोगिता। तो जस्ती अति जो कैसे बनता कि जो फिरंगी बोलन जला या बोलबा कि ब्रिटिश लोग रहन सा उ लोग इसमें भाग लेवे, तो जितना है लोग काम करे होला था इन लोग के

0: नई मौका मिले
1: परमिशन नहीं रहा
0: नहीं रह जाके जब सुनलन से कि एगो उकर में एगो लड़का बा कि ई खेलेला तो के को मौका मिलल कि बलन से जाए बला प्लान बा बेलवी में आवत नहीं सुन एगो वो लोग अपन गानिजे कलवन सा कि एगो स्पो के एगो खेल के तो ई जब शुरू कर ला तो एक जितना शक्ति और जितना सती रहा तो दिखल कि इस सब के लगल से आगे निकले दौड़ में 100 मीटर 100 मीटर में 200 मीटर में 400 मीटर में और जब फुटबॉल देखना हर में द फ्यूएल के देखबा बूशों के देखबा जितना पड़ी जहाँ पड़ी जहाँ पड़ी जहाँ पड़ी हमने के पूर्वज लोग जाके उधर बसर रलन सा हर जगह देखबा तो उधर पड़ी स्पो के एगो स्थान बा वो लोग खेला तन सा था ई जब शुरू कलक तो फुटबॉल में रहा तो ई लोग जब देखलन जा कि जोन हो जाके जोन अथी रहल ओकर सेफ रहल जैसे बना कि सरदार रहल बता ई छोकरवा खेलेला तो देखो पहचान है ना कब बोले सा कि एगो बात आवेला कि भोजपुरी में कि कदवा छूट रात के बन जा कि जब आदमी के पहचान नहीं है कैसे बोला जला कि सुबह कि ओकर बीते के कला नहीं बा तो जब ओके देखलन जा ओके देखलन जा कि धौरा था तो के अपन लिकिप में डलन जा तो उस तरह से धीरे धीरे वो जितना जितना अथी रहल कौन रहल जितना दूसर फ्यूएल और सब लगन सा कॉम्पिटिशन स्पो में शुरू करके फुटबॉल के रहल धौड़े के भी रहल सब चीज रहल तो इस तरफ से देखला वो अपन लगल सब पकड़ो पार्टिसिपेट हो अभी तो कितना बहुत अभी तक बा अभी एक्सपो में अभी मास्टर्स बन गल बा मास्टर बा उसी तरह एगो बा कि डॉक्टर राज मुनुस्वामी वो भी साथ रहल जब उन लोगों के खेले तो ई बोले देखा ना तू फुटबॉल नहीं सकबे खेले पास कि फुटबॉल खेले में चाहना दूसर का कला चाले करके खेल कूद के दूसर पीढ़ी में देलन जा तो ई लगल धौड़े उस समय से धौड़त धौड़त कितना सौंपना कलक हमने के देश के राज डॉक्टर राज मुनुस्वामी अभी सबको जाने लग जा कि वो बड़का मगातुनिये है और वासु मुनुस्वामी भी और ऐसे कि अनिल कसनिया बा अनिल कसनिया वो कैपिप के रहलन वो बेचारा के एक भी एक हाथ ने बा कैसे बने कि जो डिजेबिलिटी बोले जला ऐसे तो ढेर बस आके सांप लोग के देखेला वो भी शुरू कर स्पो के देश के कितना में जितना स्पो में
1: विकास भाग लेला
0: और अमेरिका में भी जाके पार्टिसिपेट हो ओलंपिक गेम में तो ऐसे साइलिस बा साइलिस रामसाहा बा ऐसे बहुत कुछ बा तो धीरे धीरे बा कि हमने के जन जुए आवेला कि जुए डिजील जब जुए डिजील बोली ला था कि हमने के आइलैंड इंटरनेशनल गेम जब शुरू हो कि रेन्यू आइलैंड में 1979 में शुरू हो तो उस समय जब हो जा रहा था हमने भाग ले ली सा जब मॉरिशस में आल 1985 में तह जाके हमने के पहचान शुरू हो नीमन से जब देख भाई जब शैला शिबालक जब दौड़त आठ मीटर रेस में 404 मीटर रेस में तो देश के अब सुलभ प्रकृति के स्पो के पहचान हमने के पूर्वज लोग के जो नए पीढ़ी लोग लगलन से अपन अथे कैसे बाय जयसिका अभी सुगम सुब्रन बा या सुनम बा बोले लन जाओ के तो ये लोग जावलो के स्पो के हित में तो बोले चाहते हैं कि हमने के जो पूर्वज रलन से अपन अपन स्किल अपन संस्कृति अपनी भाषा जब न्यू जनरेशन के दलन से अभी तक बढ़ते जाते से अभी बहुत आतले बाद
1: दू,
0: अभी दो तीन को नाम ले लिया मैं उस समय से जब शुरू हो लड़का लोग बैठका में बैठ के समय तो नहीं रहा उस समय में सब बोलबा कि देखा ना सवेरे से
1: आज के समय में तो सब कोई बोले ला,
0: सब के समय
1: नहीं मिलेला हमने
0: सुना हमने के पूर्वज लोग सवेरे 4 बजे अंधार में भी सूर्य तो भी उठल नहीं बा जाके खेती कान काटत हुन सा
1: जी
0: और रात के शाम के जब सूर्य डूबल बतावत हुन सा और दिमाग के जब काम होता था कोई पैसा नहीं मिलेला 2 घंटा जब काम करतलन सा तो उस सोचला एगो कैसे गुलाम ही की तरह रह कैसे काम करब पैसा कुछ नहीं मिले और इस उस समय सोचा जब एक दिन बीमार हो जेब एक दिन बीमार हो जाए 2 दिन के तो कटा जाता
1: हाँ,
0: हाँ, तो हाँ। गिरमिटा के समय नहीं रह कठिन लेकिन

0: फिर भी वो लोग रुचि रखत रहन सर हई गेम और स्पोर्ट्स के बारे में
1: अपने को पहचान बनाई लग
0: पहचान बना के अभी जन हमनी जितना चीज जानी ले सर बहुत चीज अभी तो राष्ट्र इंटरनेशनल में कितना हमनी आगे बढ़ने से स्पोर्ट के बारे में अभी बड़ा लोग के जब देखे ना अभी बोलबा कि को ना बड़ा के थौत हो गए लाज आगवा से तरह तनि स्पोर्ट करे बोले ना समय नहीं बा उस समय बड़ा छोटा साथ लेके जब एक ही कैसे कहते हर धर्म के लोग हर कुम के लोग हर जाति के लोग एकत्रित होके हाउ जोन मित्रता और जोन हाउ भाव जोन हाउ जोन वातावरण पैदा होता है कि वही हमने के कैसे बोला कि हमने के देश जैसे बोले जा सके एक इंद्रधनुष देश कौशल है तो वही देखबा कि हमने के पहचान जोड़ के ही स्पो जोन है यही जोन गेम स्पो था हमने के इदौचिचे जैसे बोले ला सर हमने के पहचान और हमने के शक्ति यही हमने के शक्ति है कि जब बाहर जब देश में सब कि मॉरिशस ते एक बहु बच्चा देश है कम से मल्टी रेशल कंट्री है कि इतना लोग सब कोई साथ मिल के और जब हर एगो स्पो होला तो ऐसे होला उस समय देखा ना अभी तो बहुत सुविधा बा बहुत फैसिलिटी बा जब एगो तैयार करब एगो मैदान खेल के तो उस समय लासो से भी करता लासो है कि लापुत की तरह सब लोग मिलजुल के रेखा खींचा जा रहा कि है जहाँ पे 100 मीटर के रेस हुई और जहाँ 400 मीटर के रेस हुई है भाई जावलो हुई है जहाँ के जावलिन हुई देखा ना उस समय में खेल रहा कि कबड्डी अभी भी त्रियोले में भी बा कि एसोसिएशन भी बा कबड्डी के उस समय जब गिली डंडा बोला था लीजा गिली डंडा तो अभी तक क्रिकेट से चला मॉरिशस में भी है जब भी बा जब जब सदांजलि के कुश्ते में हो जा पर भी एगो क्लब बा कि वहाँ पर क्रिकेट के खेल के तब बोले चाहते हैं जो गिरमिथिया लोग अन्न से लोग संस्कृति भाषा साथ साथ सब खेल कूद में जब देखबा ई कैसे को फुटबॉल मैच होला ई तो खेल में आवेला तो सब कोई जुड़ जाएला सा घर में अपन
1: नहीं सोचलन सा कौन छोटा बा कौन बड़ा बा नहीं सोचलन सा कौन जाति के हवा हाई सब नहीं बोला सब कोई के एकत्रित करेलन
0: जब अपन रसोई में पकावत हुआ तब बोले लड़कवा के देखा तब पूछा था लड़कवा से लड़कीवा से कि देखा तब कौन फुटबॉल खेला था केकर का नतीजा कैसे बा तो देखा ना जिगतमा है जिगतमा सब कोई कनेक्ट हो जाए और नहीं कि देश के जब एगो कोई लोग मैं भाग लेवेला तो सब कुछ जाने चाहला सा कि उस उस जो भाग लेवत जो गेम जो स्पोर्ट्स में उसका नतीजा खुद अभी हाल ही में तो अभी वर्ल्ड कप होल ना तो पूरा विश्व सब कुछ
1: देखे
0: सब जुड़े था तभी हमने के एगो सबसे महानता है बढ़ता कि हमने मनुष्य सब कोई एक रू एक ही थी कैसे थे
1: एक स्पोर्ट्समैनशिप हाँ एक स्पोर्ट्समैनशिप में चला वाला हाँ
0: और तो इसी तरह से कि हमने के जो देश है कैसे बता वासुदेवा कुटुंबकम हाँ हर जो पूरा विश्व है एक हमने के एक परिवार है तो इस परिवार के इसी जब देख बता हमने के जो घिरमितिया लोग रहन से हमने के बड़ा दादा दादी लोग यही हमने के आशीर्वाद दिलन से कि नवा जेनरेशन में खिंचाना सके ठीक है ना उस समय
1: एको धरोहर लेके हम हाँ।
0: जब बैठका में बैठा दलन जला की बात करे के जब दिखबा एगो इंस्टीट्यूशन लीडरशिप मैनेजमेंट और जा कोई भी नाम से नहीं जाना था लंसा लेकिन हवे कमवा कर दन सा अभी बोलबा कि एगो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है प्लानिंग ओला में प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप और कंट्रोल वो लोग करत लंसले अभी तो हमने दूसरा नाम से दे ला सर वो लोग बैठ के एगो स्पोर्ट के ऑर्गेनाइजे करत लंसा
1: जो स्पोर्ट्स के जो लैपोटॉस है आज के समय में वो कम होवा था या बढ़ा था कैसे जानब बस कि जैसे जैसे तू बोला था पहले कैसे सब कोई खेलकूद में बहुत लहते लेवे पर आज के समय में खेलकूद काहे जरूरी हो गल बा काहे चाहिला स्पोर्ट्स करे के
0: जनेला स्पोर्ट्स हमनी के स्वास्थ्य के लिए
1: हां
0: देखला स्वास्थ्य पहचान तावला कार्य तसब करे तो उस समय देखा ना जैसे बताए कि स्वास्थ्य बहुत इंपोर्टेंट है हाँ जब स्वास्थ्य अच्छा न रही तो जीवन में कुछ नहीं सकब करे एगो चले नहीं सकब काम नहीं सकब हमने के जब देश में देखब अभी कैसे बन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एनसीडी सब बहुत देर होता तो उस समय वो लोग भी अपन स्वास्थ्य के लिए
1: हाँ।
0: काम करते रहन सर लेकिन स्पोर्ट के ओकर जरूरी क्यों हाँ कि हमने के देखा ना उस समय ऐसे बतलन कि जब वो लोग बैठ के वो लोग अपन संस्कृति भाषा में बदलन जा

अमया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभा भवे। इसका मतलब कहा कि सब लोग कि खुशी में रहें और बीमार से दूर रहें और कोई भी परेशानी कठिनाई न रही,

0: नोट्स करावे के, और जैसे तू बोलत हवा मान ल कोई बड़ा व्यक्ति हवन 40 के पार चल गल बा, तो कैसे वो अपन खातिर एगो समय निकाली? बस कि आज जैसे तू बोलत हवा सब कोई हये बोली हमनी के तो समय नहीं मिलता, हमार काम तो देर रात ले चलेला, तो कैसे वो अपन अपन खातिर एगो समय निकाली?
1: देख सब श्रोताओं के यही बोली चाहते हैं कि समय के धुनबा तो कबू नहीं मिली तोरा, हाँ। तोरा समय के खोज के निकाले के चल है। कैसे बोला कि घर घर एक ही ढेला बोल जला है, जो सूर्य है सब घर में वही प्रकाश डलेला सबके, वो जन समय था सला बदलाव वाल बा, लेकिन अगर जब समय तू नहीं ढूंढबा तो कैसे बोले समय तोहरा नहीं ढूंढ
0: नहीं मिली। हाँ
1: तो समय के उस समय सोचना बैलबा लिकाल निकाल के कैसे स्पो करेंगे। और एगो दूसरा बात बहुत जैसे अच्छा बोल रहा कि जब जवान लोग रहला से युवाक लोग लिकोल जब जालिया से स्कूल के समय में तो स्पोर्ट जब शुरू होला तब एगो ऐसा समय जीवन के जब सौजमा आवेला कि कोई काम में हिल गल, कोई शादी कर लेलक, तब लिए अब स्पोर्ट के समय नहीं बा। ई बहुत सला समझे के कि जब ई बोल जला कि जब लाज आवश्यक स्पोर्ट फिन होला, जब देखबा निमन से कि हमने के पूर्वज लोग अपन लड़का लोग के अपन दादा दादी लोग के बतलावत सके स्पोर्ट में भाग लेके साथ, तो इसके जो प्रभाव पड़ेला हमने के स्वास्थ्य में, तो ई अगर जे जितना काम करबा देखा हमने के को हमने के जो हमने के दिल है वो छोटा है, उसमें काम करबा जस्ती कैसे वो लुत्तों के जब हाली भगेबा तो हाली से टूट डाला, तो शरीर भी ऐसने है।
0: हाँ हाँ।
1: और उस समय जब लड़का लोग खेले, जब से वातावरण के खेले वो लोग समय के निकाल के जाके खेला तलन सा कैसे वो कोई सिरिंगोल उड़ावता, कोई खेला था दौड़ता गुलीगंटा, तो उसके जब देखबा उकर उकर कैसे लोग के पर्सनालिटी जैसे बोला जला।
0: हाँ हाँ।
1: कि हमने के दिमाग में एगो ऐसन कैसे बोला कि खुशहाली जमी के
0: दिमाग निमन से काम करे,
1: तो उकर में हमी के दिमाग में आवेला एगो सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, ये सब जब निकले ला हमने के कपार में के दोन हार्मोन्स, तो इतना थोड़ा खुशी से भर देवला भीतरे कि वो कीने नहीं सब ओके। तो हमने ये जो खुशी मिलला जगह कोई के जब सफलता प्राप्त करला, जब सफलता प्राप्त करलक तो आवी बोलिए देखा ना हम एगो मेडल रननी ये कर ली, तो वो खुशी नहीं सकब कोई से कीने, देखे ना सब कुछ सकब काम करब जहाँ भी इस बा की दौड़त है लेता नहीं बा समय के, जैसे बोला अभी के समय में कोई बहता कि कहाँ करते हुआ तई सुन सकबा है, नहीं नहीं हमके लेता नहीं बा हमके लेसों जाए के बा हई बा करे के फजीर के जब उठ पता चला मोबाइल के देखे के कौन ची कुछ नहीं बा।
0: हाँ।
1: तो उस समय में कुछ नहीं रहा, मैं जब स्वास्थ्य कुछ भी कर जाए जब स्वास्थ्य चल गल तो लड़का लोग उस समय निकाल के ढूंढ के थोड़ा सोचे ना फजीर से कान काट के कान के लाट के रात के आए के बाद मैं फिर वो लोग समय निकाल के जैसे थोड़ा एग्जाम दे लिया कि
0: पहला भी 24 घंटा ही रहल, आज के समय में भी 24 घंटा ही सब कोई के मिला,
1: समय के कोई के जस्ती कमती नहीं मिला पाए के समझे कि समय समय कोनो भी मौत पहनला कोनो भी महंगा के, लेकिन वो घड़ी पारी हुई चली, कोनो भी कार में चला कोई बेम डुबलेवे के कार में चलवा या चल के चलवा, लेकिन रास्ता वही रहला,
0: वही रहला, सही बोला,
1: रास्ता वही रहला,
0: बिल्कुल
1: रास्ता वही रहला कि जीवन में अगर जे समय के घूम में करे तो तोहरा नहीं तोहरा चला निकाल के, तो अभी के जैसे बोलत हुआ उस समय जब सक्तन से निकाल के स्पोर्ट में ध्यान दे भाग।
0: हाँ,
1: ले
0: हाँ।
1: तो काहे ने हमने के अभी के उसी तो वही तो बैन कात करता हूँ जैसे बोले ला वही तो घड़ी में ना,
0: बिल्कुल,
1: तो अगर जो निकलबा तो तोहर स्वास्थ्य अच्छा रही, और सबसे जब मिलबा जुलबा तो जितना हमने के देखे ना हमने
0: सोशली से हो बा,
1: और देखे ना हमने एगो ऐसा मनुष्य नहीं से कि अकेले नहीं सकब से रहे, चाहे ना बात करे के, जब बात करबा तो जितना थका जितना स्ट्रेस है तो वो निकले ला।
0: हाँ।
1: और उससे हमने के अच्छा स्वास्थ्य भी बनेला, और जैसे बता कि हमने आगे बढ़ीला सा, और हमने के जब कैसे थोड़ा बोली एक परिवार से शुरू होला ना, एक परिवार
0: से ऐसा भी हो जाला कि मान लो थ्राका कि तू पता से करत हव सोशली से करत हव, तो कहूँ ना कहूँ तोरा निदे मिली कि कैसे तू सोल्यूशन ढूंढबा ओकर कैसे तू करबा, तो स्पोर्ट्स एगो माध्यम है सब कोई के संगे जोड़ेला, सब कोई के नजदीक लावेला, और स्पोर्ट्समैनशिप एगो लीडरशिप के जो भावना है उ त्योहार में बढ़ावेला। तो जी हाँ, आज संजीव कुमार बाबुआ जी डॉक्टर संजीव कुमार जी हमनी के संगे जुड़ले हवन, और जैसे स्पोर्ट्स कितना जरूरी है तोहर स्वास्थ्य खातिर ओकर पर ज़्यादा बल देवत हवन, और संगे संगे जितना भी कोई स्पोर्ट्स खोजत हवन कौन स्पोर्ट्स जस्ती अच्छे है इंडोर कि आउटडोर. अभी थोड़ा घड़ी में जानब सर और आप सबको एक जना देवत है हमनी के संगे आज तकनीक पर साथ देवत हुआ न फिजान भाई और

0: पर प्रभाव क्या होता है हमारे खेल कूद का और ये क्यों आवश्यक है। वैसे आज के समय में सभी लोग यही शिकायत लिए बैठे होते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम खेतों में काम करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, तो हमारा तो शारीरिक श्रम वहीं हो जाता है, तो स्पोर्ट्स की क्या आवश्यकता है। चलिए डॉक्टर जी से जानते हैं। डॉक्टर जी, जब कोई महिला या पुरुष बोले लंसा कि हम ढेर काम करीला, हमारे शारीरिक बहुत श्रम करीला, हम खेत में काम करीला, हम मजदूरी करीला, तो हमारे तक शारीरिक श्रम हौजे हो जाला, लेग्जेसी तो हौजे हो जाला, तो लेग्जेसिस और शारीरिक श्रम में कौन अंतर बा?
1: देखा मैं बहुत बड़ा अंतर बा, जब कोई बोलेला कि हम काम कर दिली, मांसों के काम कर ली जैसे बोलला, उस समय भी कान काते तलन सा कि कान लादे तलन सा, मैं अगर जब कान लदेन समझ सा कि हमने स्वास्थ्य कर दिली सा हमने के स्पो हो गल, तो उस समय हमने के कपन नहीं आवत, हमने के बड़ा बड़ा स्पो स्पोर्टमैन नहीं आवत। बस उस समय देखा ना, काम और खेल और कूद और स्पोर्ट ये को दो अलग बात है। जब हमने काम करने से उनके हमने के जो दृष्टि से देखिला सा हमने के शरीर में जो प्रभाव पड़ेला पा गई नहीं है, काहे खातिन जब स्पो करब तो वो को दूसर हमने के जैसे तुहरा बोली पहले कि हमने के शरीर के इतने जागृत करेला, हमने के आत्मा की शक्ति देवेला कि जो हम शक्ति आवेला कि हमने के कपार में कैसे बड़ी सीरोटोनिन मेलाटोनिन और
0: ऑक्सीटोसिन
1: आवेलन जा, ये सब देवेलन जा कि हमने के शक्ति देखे। मैं जब काम करबा तो स्ट्रेस में चला काम करे के पैसा के और हमने के शरीर में ओकर प्रभाव पागे नहीं होला, तो अभी बोलबा ना हम काम कर दिली घर के जितना रह नितवाए कर दिली सफा कर दिली, हम काम हो गल खेत में गली काम करे, स्पो के कौन जरूरी बा। देखा अगर जो निमन से देखा जब हम लिचित करे सके हमने के एगो स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन बात हमने के इसमें जो पढ़े लन जाओ के बतिया ले जा साइंटिफिक में कि कौन प्रभाव पड़ा स्पो के बारे में। और एगो दूसरा बात है इसी विषय में बोले चाहते कि बोले लन सा कि घर के मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब कुछ है जब जब कुछ करवा कर, मतलब समझावत हैं कि जब कुछ करवा ना बोले सा ई नहीं तो एक एक जरूरी नहीं बा के ओकर है पोतोंस नहीं देला सा। और दूसरा भी है कि बोले न सा कि जब काम करते उस समय देखा ना काम करते हमने के दादी दादा लोग बोले तलन सा कि कदवा पर सितवा चो, एक मतलब है कि जो बलवान नहीं हवन है कि थोड़ा सुनवन कि ऊपर दबाव डाले के, तो इसका मतलब कुछ है जब स्पो करब और काम करब दूगो अलग बात है। और अभी के समय में जैसे बोली जा चर्चा कर ली जा कि कोई के समय नहीं बा हई बा करे के हो बा करे के, देखो ना दुनिया में कहाँ कुछ भी करब हमने के समय जब आवेला तो पहले सब कुछ छोड़ के जाए के, तो स्पो में भी जब हिली ला जा तो जब हमने के स्वास्थ्य अच्छा रखे के बा तो ई अपन के समय निकाल के जब देखबा तो प्रभाव कर जो इफेक्ट बोली ला सा पारे नहीं,
0: पारे नहीं।
1: जब थक जेबा काम करके तो नींद लग जला पारे ही नहीं लेगी जो स्पो करके कर ला, और जब से मिलबा तो ये बोले थे कि श्रोताओं लोग के है जो अच्छा सोच नहीं आ कि जब सोचबा कि हम काम कर दिली और समय ने बा हम स्पो कर दिली।
0: डॉक्टर जी एगो और सवाल हमने के मन में आवता है, जैसे मान ला जा आज के समय में तो लेग्जेसिस करे भी बहुत लोग सोचे लंसा कि जिम में जाइबा तब वो लेग्जेसिस तू करे सकब, और आज के तो महंगाई के समाना कितना चले आवता, तो सब कोई बोले हमने के स्पो करे के भी पैसा चाहिला, तो हई बात में कितना तथ्य है कि पैसा के बिना भी तू व्यायाम करे सकब। और हाँ यही सही सवाल पर हम पहला पूछब जा, और एक और सवाल हमने के दिमाग में आवता उपाद में पूछब जा। तो
1: धन्यवाद एक प्रश्न के लिए। देखा ना जब बोलबा कि पैसा और स्पो, जिम ही नहीं चला जिम में जाए के पैसा पे के हर महीना में स्पो करे के, घर ही से सकबा शुरू के सब चीज़ घर ही से शुरू होला, थोड़ा सा चल ब थोड़ा उठब बैठ ब तो नहीं चला जिम में जाके करे के। देख बोले अभी जब कोई बीमार हो जाता है जाना फिजियोथेरापी करे के हई करे के व्यायाम करे के, जब उस समय देखबा हमने के जब नारी लोग रहन सा कि कोई पेच से रहल जब खेत में जाता लन सा काम करे उन लोग के शक्ति रहल, जब फजीर के गलन सा काम करे शाम के एगो बच्चा लगे तो इसका मतलब कुछ यह कि इतना लोग शक्तिमान रहन सा वो लोग कि हॉस्पिटल के जरूरी ना, कितना लोग हमने जन्म ले लें सा कि
0: घर में
1: तो बोले चाहते हैं कि चाहना एगो एगो कैसे एगो इंस्टीट्यूशन जैसे बोला कि अभी चाहना एगो जिम में जाके और सब

0: લોકો પૈસાને લઉં કે તો પૈસાને બસપો કરે કે મેં પૈસા જમને રહી તને કે મતલબ નહીં આ કે ને બસપો કરે હમની કે ચાલા જો ભી સાધારણ લેકિન કહીં જબ પઢે કે બા તો નહીં ચાલે કો નિમન લતાબ और निमन प्लेन चेहरा लिखे के तब सब विद्या पाई और एग्जाम में पास हुई।
1: पहला तो नीचे बैठ के पढ़त रहन
0: उस समय बैठ का में जाके चिराग बार के पढ़त ली सा अभी तो सब सुविधा बा लेकिन भी देखो थे कि जो हमने के रिजल्ट बोले ला जा कि पागे नहीं तो इसका मतलब ये है अगर अच्छा स्वास्थ्य के चाहब तो पैसा कैसे पे करके नहीं चाहना कि जाके इंडोर या आउटडोर गेम के बोला उस चाहना तब सब बस पो करे चले कि मॉरिशस में तो सगरो सब चले घर में
1: और अभी तो सगरो सगरो ट्रैक्स बना दे ले हवन और लापलेन बाजू में बास भीरी में बा सिर में कोई नहीं जाला हो जा
0: देखा ना यही तो एगो सबसे बड़ा देखा ना इतना सुविधा बा इतना फैसिलिटी बा अभी के समय में
1: फायदा नहीं उठा हुआ था
0: और उस समय ढूंढ के जाके खोज के थोड़ा लिग्जेसिस का तरह स्पो का तरह अभी सब सुविधा बा लेकिन हमी के जो हमने के विचार बा जन्म के सोच बा इस पर चाहना सब लड़का लोग के समझाई के कि समय रोज के चाहना निकाले के और निकालबा तो देखा ना जैसे थोड़ा फिर से अभी अभी सुविधा देवते एग्जाम देवत हैं कि उस समय वो लोग ढूंढ के फजीर के 6 बजे से 7 शाम के 7 बजे रात के वो लोग समय छोट के खोज के अपन लड़का लोग के बतलावन
1: सब बच्चन फिर भी अपन व्यायाम के
0: वही बोले थे कि कोई के तुम्हारा आज पैसा नहीं बता इसका मतलब नहीं है कि नहीं सब एगो कोई स्पोर्ट में भाग ले या कोई कुछ भी शुरू करे कोनो खेल में खेल कूद में
1: डॉक्टर जी हैजा पर जैसे तू बोला था घरे से सकबा शुरू करे तो इंडोर गेम जस्ती है कि अच्छा है कि आउटडोर गेम जस्ती अच्छा है
0: देखो ना हमने के जन पूर्वक हमने के हमने हमेशा से हमने सीखल जा कि प्रकृति के साथ रब नेचर के साथ रब तो उसका प्रभाव हमने के आयुर्वेदिक सिस्टम में जब देखबा और जब हमने सांस ले ला सा जब सांस ले कर जो ना ऑक्सीजन आवेला हमने के जो प्रभाव पड़े ला हमने के सब नस में वो पागे नहीं है कि जब बंद चारों दीवार में स्पो करबा जाके को जिम करते हैं कोई देखा होता पर वेंटिलेशन जैसे वजह की जब हवा सबने ला
1: यानी शारीरिक श्रम करे हाँ, के
0: हां तब देखबा जब एक देता लोग कोई के फेंटिंग हो जाला कि अपन कैसे दांत लग जाल कैसे बेहोश हो गलन जा हाँ, हाँ. जब बेहोश हो गलन जा तो कुछ चाहना करके इसमें बात करब जा भी मैं ही बोला था कि जब से हमने सीखा हमने के एगो ऐसा शरीर है कि जमी के चाना घाम लगे के चाना पानी हवा इसी से हमने बनल ऐसा ये हमने के बजाय कि जब आयुर्वेदिक सिस्टम समझ बा कि वाता पीता कफा इसी से हमने के शरीर बनल बा हर हमने के जो गुण है सतुगुण रजोगुण तमोगुण हाँ। जो भी है
1: हमने के जन शरीर बनल बा जितना प्रकृति के निकट रह बा हाँ। उतना तो हर खाते जस्ती अच्छा
0: लाभ होला क्योंकि जब चल बा तो हवा में कैसे समझ के जब समुद्र के पास जब कि चलत हुआ तो का प्रभाव जन पड़ेला पागने से कि हुई जोन हमी बन कमरा में जोन स्पो करी ला सा और बन चाहे हीलिंग पावर है ना सी समुद्र तो उस यही बालिक चाहते कि जब जब प्रकृति के साथ रब हमने के जन प्रभाव पड़ेला कि सोच के
1: और
0: हमने
1: के पॉजिटिव रहेला
0: बहुत पॉजिटिव रहेला और दूसरा दृष्टि से भी आप देखबा कि समाज के अपने आप को उसका प्रभाव पावे नहीं पड़ेगा
1: बिल्कुल तो डॉक्टर जी तू स्पोर्ट्स के एगो दोक्तिया हवा तो जैसे हम हई भी पूछब तोहरा समय बहुत कम थी रह गल बा कि जैसे तू एगो दोक्तिया हवा तो जैसे मान ला एगो स्पोर्ट्स करत हवा कोई के घाव लग गल कोई जैसे घुमरी खा के गिर गल कोई के बहुत डिहाइड्रेशन हो गल तो हई सब में कैसे एगो एगो फर्स्ट एड देवे सकबा मतलब कौन कौन चीज ध्यान में रखे के चाहिला
0: देखा हम इस कैसे बता इस जो स्पोर्ट्स के जो फर्स्ट एड बोले जा हम डॉक्टर नहीं हैं जो क्लिनिकल डॉक्टर्स जो ऑपरेशन सब कर लेकिन काम कर लें जब हाउस समय में रही जितना हॉस्पिटल बा एगो नर्सिंग ऑफिसर ले सब समय शुरू करे सा पहले तो जितना ऑपरेशन रहल जितना कोई के घाव लग के लुपिताल में आवत लन जा कि सबसे हमने के अनुभव बा कि ऑक्सीडेंट बा कुछ से तो हमने ट्रीटमेंट देवत ली सब तो हम अपन अपन पढ़े के दूसर दृष्टि में डाली अभी पीएचडी करनी अपन लिजी काशों में जस्ती ज्यादा में इसमें हमार बहुत अनुभव जब से हम स्पोर्ट लगभग 40 बरिस से अधिक हम स्पोर्ट में हैं और रीजनल

0: से नेशनल इंटरनेशनल में बहुत कंपटीशन में, इसी भाव से हम एगो थोड़ा इंस्टीट्यूशन भी के स्थापित कर ली, एगो मास्टर्स पढ़ाते थे का एसोसिएशन बा, और एगो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन बा, और मेडिटेशन हेल्थ एंड फर्स्ट एड सेंटर बा। तो जब देख ली हमारे अनुभव से, इसी में हम बहुत दिन से इसमें लड़का लोग के और जितना लोग खिलाड़ी वन सब लोग के अनुभव दे रहे थे कौन चीज़ चाहना करे के जब घाव लगे थे, तो इससे हम हमारे जो इसी में जैसे थोड़ा स्पेशलाइज होली कि स्पोर्ट्स साइंस में और स्पोर्ट के जितना घाव लगे कैसे करके, तो बोले चाहते हैं कि हर स्पोर्ट्स करब तो चाहना थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे सावधान रह के कोई चीज चलाओ कर कैसे चलाओ कर ट्रीटमेंट देके। पहला ये बात है कि जो भी खेल खेब चला एथलीट चला दू घंटा से अगते चला खाई के नहीं सकबा कुछ ले बे भारी खाई के, बस कि हमने के शरीर में जब देखब जब ढेर खाई करे तो ओकर लिफे होला, और सेतु जब दिब्बत की जब ले नहीं बात तो कोई बेहोश हो जाला, तो इसके ट्रीटमेंट में के बारे में अभी बात करब। तो बोले चाहते हैं कि हमने के जब कोई के घाव लग गल गिर गया सतला नाक में से खून गिरा था हई फंसे दिला सा और सबके अनुभव दिला सा, तो के चला बैठा के ओकर जो सिर है आगे करे के जब खून आगे गिरी एगो छोटा बोल सब डाल दे ओकर नाक चला जब 10 मिनट चला पेजे करे के और मुंह के खोल के जब सांस ले, जब सांस नहीं लेते हमने के कपार में जब सांस नहीं जला तो हमने के जो ब्रेन सेल्स है मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स है तो जब ऑक्सीजन में तो हाइपोक्सिया होला तो वो अपन ओकर इफेक्ट होला कि अनकॉन्शियस है, तो जब अनकॉन्शियस हो जला फेंटिंग हो जला तो उस लोग के हमने के चला कैसे जब जब हर कोई के रकबा पीठी पड़े पीठी पड़े जब हमने के जीभ है जब गिर जला तब हमने के सांस लेके बहुत कठिन पड़ेला, कब जब पेट कुनिया चना सूते के पेट कुनिया रबा और अगल के रबा तब हमने के सांस लेके अच्छा फासला, तो इस तरह से हमने के रिकवरी पोजिशन बोली लाज है, तो इसे बतलायला सा कैसे करे के, और धीरे धीरे हमने ओकर देखिला सा कि कैसे ओकर पल्स बा इसकी रेस्पिरेशन शुरू हो बाग नहीं, जब हाई एगो है जब एगो अनकॉन्शियस पर्सन है हई बहुत मिलेला पास की लड़का लोग धौरे लन सा जन जितना खिलाड़ी लोग धौरे धौते देखो ना जब हमने हमने के नमक और पानी जब बिले पेजी वाला सा मेरा पेस्पिरेशन तो और पानी नहीं बा उससे हमने जब हमने के इलेक्ट्रोलाइट जब चल जला तो ऐसा हमने फेंटिंग हो जला सा या शॉक में चल जाता शॉक बला जला कि हमने के जितना हमने के जो ओगान बा जितना हमने के जितना कैसे हार्ट ब्रेन किडनी ये सब जब लोग के ऑक्सीजन नहीं मिलेला तो उ लोग शॉक में जाता ये लोग के ट्रीटमेंट दिला सा कि कुवेयर करके और गोर ऊपर के कोई हाइपोजेमिया हा हाइपोजेमिया में कि ठंडा के अथी हो जला टेम्परेचर नीचे हो जला हाइपोजेमिया अभी देखबा कि कोई बहुत से बीमारी बा कोई जावेद बोले लन सा तो उ लोग अभी हमने के जितना मास्टर्स आते बस सबके बोली रहा सा कि अपन मेडिकल सर्टिफिकेट ट्रीटमेंट देख के निमन से आके स्पो करके कोई के घाव लग गल कोई के घाव लग गल हाथ में हड्डी टूट गल तो अब उसके देखा ना जब घाव लगेला तब हमने के फूले लगेला हाँ तो जब फूले लगेला तो एक राइस ट्रीटमेंट बोले सर तो उस जब हमने के हबी तो इस राइस बजा के ओके चना उठा दे के ओके कंप्रेस करके आइस सब दे के और जमी प्रेशों से जमी बराने मोटा नहीं हुई, लेकिन जब हमने के जब पूर्वज लोग जब लड़का लोग उधर उस समय भी खेला था सर था हाँ। तो उस समय हरदी के इस्तेमाल करते रहन सर नीम के पत्ता के जो और जो विधिक जन दवा है
1: चीज हाँ हाँ वो कर
0: सकते हैं तभी इसका जब अभी जब कंचा हल्दी लेके दूध में भी है तो एगो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और कैसे एलोवेरा भी है तो वो भी अभी दवाई की तरह पर बात, लेकिन वो जब देवरा सा कि जब मोटा हो जाए ओकर कमती अथी करेगे ओकर दुलिया भी कमती करेगे मैं अभी जब फसेद बलिला सा फसेद एगो ऐसा ट्रीटमेंट था कि बना सके
1: जब के आवे के अगाड़ी जैसे
0: अगाड़ी ओके जन कोंजिशों के घाव ने हुई के हाँ। और उसके हाल से रिकवर करके तो इस अभी इस कैसे बात है कोई कोई सीखे चाहता इस बारे में तो हमने हमेशा हर सप्ताह इसमें कोर्स दे ला सा बतला ला सा कैसे फसेद करे के बौंदाज कैसे डाले के और कैसे चला जब घाव लग गल और कौन ट्रीटमेंट देके जैसे
1: जैसे के समझे के समझे के
0: या कोई भी पाशो ने या कोई भी घर भी रही तो इस अनुभव बहुत जरूरी है फर्स्ट एड के, तो अगर जब कोई चाहिए तो सकबा हमने के बोले
1: बिल्कुल
0: हमने के हमने के हमने के निमोगो सकबा सोने के 53

0: Saint Jujutsu Sensei, ya email ada sa Mauritius Health ego nima deu deu thay sabda sunay kare ya hami ke email ke mauritiushealthmeditation@gmail.com ya Mauritius Masters Para Athletic Association ya athletic स्पोर्ट्स मॉरिशस @gmail.com इससे अगर जो लाभ उठाया जाए पैसे इस मंच में हम सब फसेद के बारे में नहीं सकब बतलाए पैसे समय के ध्यान के रखते हुए
1: हाँ डॉक्टर जी आज के कार्यक्रम के हैजा पर बिल्कुल हम चलाल हैं बहुत अंत में तो जाते जाते हमार श्रोता लोगन के कौन दू लाइन में कौन चीज बोल
0: देखा ये बोले कहा कि स्पोर्ट एगो ऐसन कैसे बताए कि हमने के
1: बहुत जरूरी चीज़
0: बहुत जरूरी चीज़ है कि ये कोई दीवार नहीं चाना रही के कोई सीमा नहीं चाना रही के कोई ब्लॉकमा नहीं चाना रही के और जे भी कोई भी रास्ता से आलवा कहीं भी देश से कहीं से आलवा हम लेकिन हमने के मंजिल एक ही है कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा प्रकृति के लिए और इसके लिए कि हमने एक ही कैसे सूत्र में बन जाए ऐसा और ये हमने के सबसे बड़ा कैसे के पहचान है कि हमने के देश के एगो मल्टी रेशियल कंट्री जैसा जो बहु जातीय देश है सर और इससे हमने आगे के प्रगति के आगे बढ़े के यही सबसे बड़ा हमने के एगो सीमा है और इसे सबके मांग बा कि इसमें जुड़बा तो इसका तुम्हारे की हर
1: फायदा
0: कितना रही और इसी में से हमने के बहुत प्रगति के ओर लेके चला
1: तो चला इसी के साथ डॉक्टर संजीव कुमार बाबुआ जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा काहे के स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है व्यायाम जरूरी है जे तू स्वस्थ रह तो समाज स्वस्थ रही और कैसे तू दूसर लोग के भी एदे करे सकब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी और हमनी के साथ जुड़ल रहलन भाई फिजान टेक्निक पर साथ देलन हमनी के उरुसा प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोड्यूसर रहल शीतल लोबिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जितना श्रोता लोगन इस कार्यक्रम के सुनलन देखलन बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद और फेरो से भेंट आप सा एगो नवा कार्यक्रम के साथ इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ दिन आप सभी को
0: अच्छा नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मिलते हैं गीता जी से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
2: नमस्कार विकास, सभी को हमारा नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस ने भविष्य में रिटायर होने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स बॉन्ड की घोषणा की है। इस 15 साल के बॉन्ड पर सालाना 6% ब्याज मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार देगी। 50 से 65 साल के मॉरिशन नागरिक इसमें 1,00,000 से 2,000,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। ब्याज हर 6 महीने में मिलेगा, लेकिन रकम कम से कम 5 साल तक लॉक रहेगी। समय से पहले रकम निकालने पर ब्याज दर 4.5% या बाजार दर के अनुसार होगी। इसके लिए आवेदन 15 अक्टूबर से 11 कमर्शियल बैंकों में किया जा सकेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 23 दिसंबर है। एबेन में अमेरिकी टेक कंपनी मेटा के प्रतिनिधियों और मॉरिशस के अधिकारियों के बीच आज पहली बैठक लग रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप की कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला ये प्रतिनिधिमंडल कल मॉरिशस पहुंचा। इसमें दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र के लिए मेटा के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख और यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए सुरक्षा नीति प्रमुख शामिल हैं। बैठक में मुख्य रूप से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और पुलिस के साथ बेहतर सहयोग पर चर्चा शामिल हैं। इसके लिए सरकार और मेटा के बीच एक संभावित रूपरेखा समझौते पर भी विचार किया जा रहा है। और आज इन्फोमेटिक्स क्षेत्र देश के जीडीपी में 5.6% का योगदान देता है, जबकि 2014 में ये हिस्सा 7.4% था। सरकार अब इस अंतर को कम करना चाहती है। इसके लिए सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन

0: में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। आईसीटी मंत्री अविनाश रामटोहल ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया। उन्होंने हेल्थ कार्ड का उदाहरण दिया जिसे ई हेल्थ सिस्टम के जरिए संभव बनाया जा सकता है। मंत्री ने ये भी बताया कि स्वास्थ्य बजट का 80% हिस्सा इलाज पर खर्च होता है जबकि रोकथाम पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया जाता है। ऐसे में उपलब्ध आंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार साबित हो सकता है। और विदेशी खबरों में, दिल्ली में कल देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके दिल्ली के आसपास के इलाकों के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 थी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। गनगामा लेन पाल्मा काथोबोन में 78 साल के 78-year-old के श्री रामदास इपिलापिया, जो विष्णु से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10:30 उनके घर गनगामा लेन पाल्मा काथोबोन से उठाकर सैमौतें का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। नंबर 2 रोटे रोड लासूस काथोबोन में 71 साल के 71-year-old के श्री रंगासामी किसनैन, जो गाविन किसनैन से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 1:30 उनके घर नंबर 2 रोटे रोड लासूस काथोबोन से उठाकर बेतो कोडेगाड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1:30 PM। हाईलैंड रोज फिनिक्स में 68 साल की 68-year-old की मिसेज शिरीन बोयगू, जो शिरीन से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनासा आज दिन के 2:30 उनके भाई शाहुद बोयगू के घर हाईलैंड रोज फिनिक्स से उठाकर रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: On NBC Play and NBC.MU. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 7 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए 10:05। रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन, सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। भक्तिधारा इस कार्यक्रम को लेकर हम एक बार फिर आप सबके साथ जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं और अभी से लेकर 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। श्रोताओं, जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। आपको बता दें कि भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि, भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति। श्रोताओं, कहते हैं कि मानवीय मूल्य हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाते हैं। ये हमें अच्छे और बुराई की समझ देते हैं। ये हमें सच्चाई के कदम पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ ही समाज में ये हमें मान सम्मान दिलाते हैं। और कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों की बात करें तो करुणा है, दया है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना है। और इन सभी भावनाओं के बिना, इन सभी मानवीय मूल्यों के बिना हमारा जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। तो इन सब के चलते हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। तो चलिए, ऐसे विचार के साथ आज के कार्यक्रम का श्री गणेश हम करते हैं।

कहो भक्ति धारा इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमिता आप सबका साथ दे रही हूँ। श्रोताओं, कहते हैं हमारे जीवन में भाव

भावों का बहुत गहरा महत्व है। अच्छे भाव सिर्फ हमारे शब्दों या व्यवहार में नहीं बल्कि हमारे विचारों में भी दिखाई देते हैं। हमारी अच्छी नीयत और हमारे कर्मों में भी ये दिखाई पड़ते हैं। जब मन में प्रेम, दया, करुणा, कृतज्ञता, क्षमा और संतोष जैसे भाव होते हैं, तब जीवन अपने आप में सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगता है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं इस अगले भक्ति गीत द्वारा।

0: जी हाँ, तुम आशा विश्वास हमारे, यही तो है जो हमारे जीवन का आधार है। और कहते ना कि विश्वास ही पर तो ये दुनिया टिकी हुई है, विश्वास ही पर तो ये सृष्टि कायम है। और यही विश्वास हमारा उस परमपिता परमेश्वर पर भी है। तो चलिए, अभी के लिए भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुनेंगे कार्यक्रम विनय अंजलि।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
2: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम विनय अंजलि का शुभारंभ करेंगे आदरणीय पंडित वाल्मीकि महेश जी के गाये एक भजन से,

श्रोताओं, आज का संदेश आधारित है यजुर्वेद के एक मंत्र पर। इस मंत्र का पाठ आप अक्सर किया करते हैं और सुना भी करते हैं। प्रार्थना के अंत में हम यह मंत्र बोला करते हैं। ओम द्यौ शांति रंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देधि। ओम शांति शांति शांति। श्रोताओ, पहला शब्द आया द्यौ। द्यौ का माने है सब लोगों से ऊपर जो आकाश है उसे द्यौ कहते हैं। दूसरा शब्द आया अंतरिक्षम। दो लोगों के बीच में जो आकाश है, जैसे पृथ्वी और चंद्र के बीच में ये दो लोक हुए, इनके बीच में जो आकाश है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। फिर पृथ्वी है, इस भूमि को पृथ्वी कहते हैं। शब्द है आपह, जल यानि प्राण को भी आपह कहते हैं। फिर है औषधय, औषधि, जैसे सोमलता है एक औषधि है, इसी प्रकार बहुत सी औषधियाँ। वनस्पतय, वनस्पति, और वन में जो वृक्ष हैं जैसे वट वृक्ष आदि। विश्वेदेवा, इस संसार के सब विद्वान यानि सब विद्वान लोग। विश्वेदेवा के बाद शब्द आया ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, और ब्रह्म वेद शास्त्र को भी कहते हैं। सर्वम, सब कुछ, सब पदार्थ। शांतिरेव शांति, शांति ही शांति। सा माँ शांति रेधि, वह शांति मुझको भी प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। तीन प्रकार के दुखों को दूर करने की प्रार्थना है। श्रोताओ, जितने शब्द हमने कहा अभी, जैसे द्यौ, प्रार्थना परमात्मा से कहते हैं कि द्यौ में शांति बनी रहे, कोई उपद्रव न हो। इसी प्रकार आप, जल में भी शांति बनी रहे। वनस्पतयः,

वन के वृक्षों में भी शांति हो, ब्रह्म शांति, और जो जान है वेद जान है उसमें भी शांति रहे। वही शांति सर्वत्र रहे और मुझे भी प्राप्त हो। श्रोतागण, अंत में जब हम शांति शांति शांति कहते हैं तो बहुत से भाई बहनों को यह मालूम नहीं होता कि तीन बार शांति बोलने का अर्थ क्या है। एक बार किसी भाई ने मुझसे पूछा कि ये हम तीन बार शांति अंत में क्यों कहते हैं, तो दुख तीन प्रकार के हैं जिसे त्रिताप कहते हैं, तीन प्रकार के ताप। एक है आध्यात्मिक ताप यानी आध्यात्मिक दुख, एक है आधिभौतिक और एक है आधिदैविक। श्रोताओं, चलें हम इस मंत्र पर कुछ विचार करें। पहले शब्द में हमने देखा शांति की मांग की जा रही है, और जिस शांति की मांग हम अनेक पदार्थों में कर रहे हैं वही शांति अंत में हम अपने लिए भी मांगते हैं। सामा शांति रेधि, अर्थात हे परमात्मा वह शांति मुझे भी प्राप्त हो। श्रोताओ, परमात्मा से हम जिस शांति को पाने की प्रार्थना करते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह शांति क्या है, उसका असली रूप क्या है? चलें हम इस पर विचार करें। शांति का वास्तविक अर्थ है ईर्ष्या द्वेष कलह रोग शोक से छुटकारा। जो जीवन में धर्म पूर्वक चलता है, पाप के रास्ते से दूर रहता है, उसी को वह शांति मिलती है। दूसरे को दुखी करने वाला कभी उस शांति को पा नहीं सकता। जब आदमी शांति की प्रार्थना करता है तो कर्तव्य उसका बनता है कि वह किसी की शांति को न छीने। शांति छीनने वाले का शरीर कमजोर होने लगता है, उसका हृदय निर्बल हो जाता है। शारीरिक कमजोरी के कारण उसका दिमाग सही काम नहीं कर पाता। फल यह होता है कि वह भीरु हो जाता है, डरपोक बन जाता है। विद्वानों का कहना है कि डरपोकपन एक प्रकार की पशुता है। डर के मारे आदमी दूसरे की हिंसा करता है। उसे भय बना रहता है कि यदि मैं इस आदमी को न मारूं तो मुझे मार देगा। यही तो पशुता है, डरपोक। आदमी किसी का विश्वास नहीं करता। उसका फल यह होता है कि वह स्वार्थी बन जाता है, दूसरे की भलाई की बात सोच ही नहीं सकता। वह दिन रात असमर्थ मनुष्यों को सताता है। दुखों के क्या कारण है? दुखों के कारण है रोग दोष दरिद्रता पाप अपवित्रता आदि। जो व्यक्ति सुख चाहता है शांति चाहता है उसे मन का विकार दूर करना चाहिए। मन का विकार है क्या? स्वार्थ मन का विकार है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध, ये सब भयंकर विकार है जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। आदमी रोगी हो जाता है और दुख के गड्ढे में गिर जाता है। आज हम देखते हैं मानसिक और शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, पागलपन बढ़ रहा है और आत्महत्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्या कभी हम विचारते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमने शांति का मार्ग छोड़ दिया है, धर्म का मार्ग छोड़ दिया है। हम प्रकृति की ओर लौटना चाहते हैं परंतु लौट नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अपनी बुद्धि के बल को बढ़ाना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी को सुखी बनाएं। स्मरण रहे कि यदि

हम दूसरों को सुख देंगे तो हमें भी सुख मिलेगा। अंत में हमने जिन शब्दों से शांति की मांग की हुए हैं, ओम शांति शांति शांति।

आत्मा शरीर में जो रोग और अविद्या, राग द्वेष, मूर्खता, शरीर का ज्वर, पीड़ा आदि से जो दुख होता है उसी को आध्यात्मिक ताप कहते हैं। हमने परमात्मा से कहा ओम शांति, यानी इस आध्यात्मिक ताप से हम दूर हों। फिर हमने चाहा कि हमारा आधिदैविक ताप भी दूर हो। आधिदैविक ताप क्या है? जो ताप हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जो कष्ट, जो दुख प्रकृति से हमें प्राप्त हो, वही तो आध्यात्मिक ताप है। जैसे अधिक बरसात होना, जब अधिक बरसात होती है तो बाढ़ आती है, खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है, पशु पक्षी जान माल की हानि होती है। अतः इस दुख से बचने के लिए, बेहद गर्मी से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे मन और इंद्रियों का जो दुख है उससे भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम बचें। दूसरा है आधिभौतिक ताप। आधिभौतिक ताप उसे कहते हैं जो शत्रुओं से हमें प्राप्त होता है, जैसे चोरों से, डाकुओं से, हिंसक पशुओं से, शेर, चीते आदि और रेंगने वाले जीवों से, सांप से, इस तरह इन पशुओं और प्राणियों से जो दुख होते हैं उस दुख को हम कहते हैं आधिभौतिक दुख। तो हम आधिभौतिक दुख से भी बचने की प्रार्थना करते हैं। इस मंत्र में हमने परमात्मा से तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने की प्रार्थना की, इसे हमने तीन बार अंत में कहा ओम शांति शांति शांति। श्रोतागण, हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। अंत में आप एक शांति गीत सुनेंगे। गायक हैं प्रकाश आर्य। आपने सुना, आपको बहुत धन्यवाद। हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। नमस्ते।

तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में, और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, ईश्वर से जुड़ने के कई मार्ग हैं और हर एक मार्ग कहीं ना कहीं हमारे इच्छाओं से होकर जाता है, हमारे अच्छी भावनाओं से होकर जाता है, हमारे विचारों से होकर जाता है। ईश्वर को पाने के लिए केवल पूजा पाठ या बड़े बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना, किसी ज़रूरतमंद की मदद, किसी दुखी व्यक्ति को संतवान देना, किसी दुखी व्यक्ति को आस दिलाना, बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा सोचना, ये भी भक्ति के रूप होते हैं और ये भी अपने आप में भक्ति के मार्ग होते हैं। जब हमारे मन में पवित्र भाव होते हैं तो ईश्वर को हम कहीं ना कहीं अपने आसपास ही पाते हैं।

इसलिए ईश्वर का नाम भजते रहने से मन के कई नकारात्मक विचार जो है अपने आप दूर हो जाते हैं। और कहते हैं जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन शांत होने लगता है, जैसे कि सुबह की पहली किरण, पक्षियों की आवाज़, बारिश की बूंदे, हवा की जो सरसराहट होती है, ये सारी चीज़ें भी हमारे मन को शांत करती है। जिस तरह से ईश्वर की शरण में जाने से हमें असीम शांति प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गोद में जाने से भी हमारे जो मन के विकार है वो दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सकारात्मकता से हम जुड़ जाते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:55 हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। ब्लू बे के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। ब्लू बे के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक मॉसल मॉब ब्लू बे एवेन्यू ले जिग्रित एवेन्यू मॉल एवेन्यू पायोंके यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर शुक्रवार 9 अक्टूबर को सुबह के 8:30 से सपैर के 4:00 के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। इसमें आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आभार। 11:00 आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। इस अंतिम प्रस्तुति के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को। हमारे

0: वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का। स्टूडियो में गीता जी, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को हमारा नमस्कार। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर दिन 55,000 क्यूबिक मीटर प्रयोग किए गए पानी समुद्र में छोड़ती है। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियाबादेन का प्रस्ताव है कि इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाए ताकि जलाशयों से और अधिक पानी न लेना पड़े। उन्होंने पोर्टविस स्थित अपने दफ्तर में एक प्रेस सम्मेलन में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए कई तत्काल उपायों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। मॉरिशस COP31 के लिए अपनी राष्ट्रीय स्थिति को अंतिम रूप दे रहा है। इसे शुक्रवार 9 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाएगा। राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP31 9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंटालिया में आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान करेंगे। मॉरिशस में 5 और 6 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग पर दूसरे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन आज होने वाली अफ्रीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्रीका की औपचारिक शुरुआत से पहले आयोजित किया गया। अफ्रीकी संघ के समर्थन से स्थापित की जा रही अफ्रीका का उद्देश्य अफ्रीकी देशों की वास्तविक परिस्थितियों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अधिक सटीक क्रेडिट रेटिंग देना है। सम्मेलन के दूसरे दिन रेटिंग उद्योग और नई तकनीकों के संबंध पर चर्चा हुई। इसमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आंकड़ों की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। और विदेश खबरों में, रूस के ब्लैक सी तट पर कल यूक्रेनी ड्रोन हमले से लाइबेरियाई ध्वज वाले तेल टैंकर में आग लग गई। इस टैंकर में 23 भारतीय चालक दल सदस्य सवार थे। रूसी अधिकारियों के अनुसार सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार।

0: मोताई ब्लांश में 91 साल के 91 ईयर ओल्ड के श्री भारद्वाज गुरोहु, जो पंचन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे अमृतपाल गुरोहु के घर बुलांशे गोद मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। हाईलैंड रोज फिनिक्स में 68 साल की 68 ईयर ओल्ड की मिसेस शरीन बुयो, जो शरीन से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2:30 बजे उनके भाई शाहूद बुयो के घर हाईलैंड रोज फिनिक्स से उठाकर गिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। नंबर 2 रोटें रो डलासोस काथोबोन में 71 साल के 71 ईयर ओल्ड के श्री रेंगासामी किस्नैन, जो रविन किस्नैन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके घर नंबर 2 रोटें रो डलासोस काथोबोन से उठाकर बेतो कोडगाड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। नंबर 116 सर एडगर लोरेंट गली पोर्ट लुइस में 95 साल के 95 ईयर ओल्ड के जनाब सुमोधी कोडाडिन इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 12 बजे उनके घर से निकालकर मस्जिद हिदायत इस्लाम ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए गिश्तिया का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट नून। हसन साकिया लेन सेंट पैट्रिक रोजिल में 44 साल के 44 ईयर ओल्ड के जनाब सफराज सुबाची इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा आज उनके वालिद सादिक सुबाची के घर में किया जाएगा और 3 बजे वहीं से सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

0: ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉर्शस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में हर बुध की तरह आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, नातो सलाम, बयान, इसके अलावा आपके पैगाम। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, जिससे अल्लाह अपनी रज़ा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है और उनको सीधी राह पर चलाता है। तो आइए आगाज़ करते हैं कलामे इलाही से। आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह अलमाईदा का एक और हिस्सा बमाए उर्दू तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे, लेकिन जब कोई पैगंबर उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे, तो वो अंबिया की एक जमात को तो झुटला देते और एक जमात को कत्ल कर देते थे, और ये ख्याल करते थे कि इससे उन पर कोई आफत नहीं आने की। सो वो अंधे और बहरे हो गए, फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई, लेकिन फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए, और अल्लाह उनके सब कामों को देख रहा है।

वो लोग बेशुबा काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही तो है, हालांकि मसीह यहूद से यह कहा करते थे कि ऐ बनी इसराइल अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी, और जान रखो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोजख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा।

मसीह इब्न मरियम तो एक पैगंबर ही थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे और उनकी वालिदा मरियम अल्लाह की वली और सच्ची फरमा बरदार थी। दोनों इंसान थे और खाना भी खाते थे। देखो हम इन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर ये देखो कि ये किधर उल्टे जा रहे हैं।

कहो कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की क्यों परस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और अल्लाह ही सब कुछ सुनता है जानता है। कहो कि ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में नाहक मुबालगा न करो और ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के पीछे न चलो जो खुद भी पहले गुमराह हुए और अक्सरों को भी गुमराह कर गए और सीधे रास्ते से भटक गए।

जो लोग बनी इसराइल में काफिर हुए उन पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की जबान से लानत की गई। ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज किए जाते थे और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे, बिला शुबा वो बुरा करते थे।

तुम उनमें से बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखती हैं। उन्होंने जो कुछ आगे भेजा है बुरा है, वो ये कि अल्लाह उनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। और अगर वो अल्लाह पर और पैगंबर पर और जो किताब उन पर नाजिल हुई थी उस पर यकीन रखते तो इन लोगों को दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें अक्सर बदकिरदार हैं।

और जब उस किताब को सुनते हैं जो इस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि इन्होंने हक बात पहचान ली। और ये अल्लाह की जनाब में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो तू हमको मानने वालों में

लिख ले। और हमें क्या हुआ है कि अल्लाह पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान न लाए, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा। बस अल्लाह ने उनको इस कहने के सबब बहिश्त के बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये हमेशा उनमें रहेंगे और नेकूकारों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो जहन्नमी हैं।

मोमिनो, जो पाकीजा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम न करो और हद से न बढ़ो कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल और तैयब रोजी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो।

अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआखजा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआखजा करेगा। तो उसका कफारा 10 नादारों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहल वयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम आजाद करना, और जिसको ये मुयस्सर न हो वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो।

शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे? और अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है।

जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन पर उन चीजों का कुछ गुना नहीं जो वो खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किया, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकुकारी की, और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है।

मोमिनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेजों से हासिल कर सको अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार की मुमानियत से, ताकि मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। सो जो उसके बाद ज्यादती करे तो उसके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है।

0: मोमिनों, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार के जानवर न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो या तो उसका बदला दे, और वो ये है कि उसी तरह का चौपाया जिसे तुम में से दो मोतबर शख्स मुकर्रर कर दें कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए, या कफारा दे और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उसके बराबर रोजे रखे ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे, और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने मुआफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब है इंतकाम लेने वाला है।
1: सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, यानी ऐसी किताब जिसके तमाम मज़ामीन हम रंग हैं और लोगों को समझाने के लिए बार बार दोहराए गए हैं। इस किताब की तासीर ये है कि इसको सुनकर उन लोगों के बदन कांप उठते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके जिस्म और दिल नर्म होकर याद इलाही की तरफ रागिब हो जाते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

0: कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पे मकसद भी जुबां पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ऐसी अजीम नेमत है कि इस पर इंसान जितना अशुक्र अदा करे कम है। कभी कभी अपनी हाजात जुबान पर लाने का मौका भी नहीं मिलता और अता से दामन भर दिया जाता है। मौज़ सामईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:29 होने को हैं। बुध का दिन है, अक्टूबर की 7 है और माह रबीउस्सानी की आज 25 है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005। ताकी ना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे खतीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समाअत फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

0: इंतकाम का जरिया बना लें, बात बात पर तलाक से धमकी दें, मजाक में तलाक दें, तो हर जगह तलाक हो जाती है। और इसके बाद ऐसे जज्बाती फैसलों के से इस्लाम ने रोका है। कुरान करीम की जब हम पढ़ते हैं सूरतुत तलाक या दिगर आयात मुबारका को, तो तलाक के अहकाम बयान करते हमें मालूम होते हैं। और कुरान ने जिस अहसन तरीके से तलाक के अहकाम बयान फरमाए, तो ज़रा आप सुने, थोड़ा सा मैं आपको उसका टेक्स्ट देता हूँ। कुरान मजीद की जब हम मुताला करते हैं तो ये बात मालूम होती है कि तलाक के हवाले से जो अहकाम बयान हुए हैं, कुरान ने कहा कि मारूफ तरीका हो, एहसान वाला तरीका हो, तकवे वाला तरीका हो, इद्दत, गवाही, रुजू और हुकूक की तालीम कुरान ने दी है कि तलाक में भी इन बातों का लिहाज रखें। नंबर एक मारूफ तरीका, नंबर दो एहसान का तरीका, नंबर तीन तकवे का तरीका, नंबर चार इद्दत का तरीका, नंबर पाँच गवाही का तरीका, नंबर छः रुजू का, नंबर सात हुकूक का। अंदाज़ा करें। इसलिए हमारा मसला सिर्फ ये नहीं है कि तलाक क्यों होती है, सवाल है ये, उसका जवाब, असल सवाल ये, तलाक तक पहुंचने से पहले हमने कुरान के दिए हुए इस्लाही रास्ते को कितना इख्तियार किया है। आज हम बताएं जो बात बात पर तलाक देने वाले हैं, क्या हमने जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अहकाम फरमाए, हमने उनके इस्लाही रास्ते जो कुरान ने दिए कितना इख्तियार किया? किसी आलिम से पूछा, किसी मुफ्ती से रुजू किया, किसी अपने बड़े से पूछा जो इल्म रखता है? हम पूछते भी हैं तो ऐसे लोगों से जो इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं, और तलाक देने के बाद फिर हम आलिम के पास आते हैं, अरे बाबा जब तूने ये सब काम कर लिया और पूरा घर जला दिया, आग लगा दी, तो अब तू किस लिए आया है? आग लगने से पहले आग के बचाने का और घर के बचाने का तेरे पास इंतज़ाम होना चाहिए था। उसी इंतज़ाम का नाम है कि तलाक क्यों हो रही है, ये एक सवाल है। ये एक सवाल नहीं है, असल सवाल ये है कि तलाक तक बंदा पहुंचा कैसे, और उसके पहुंचने से पहले जिस जो इस दरवाजे तक पहुंच गया, उसने अल्लाह की दी हुई किताब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई सुन्नत हदीस नबवी से इस्लाही रास्ते कितने इख्तियार किए हैं? क्या उसने कोशिश की? नहीं की है। 99.9% लोग इस्लाह नहीं करते, बल्कि 100% से ज्यादा लोग। अब अंदाजा करें कि निकाह अल्लाह ताला का मुकद्दस अहद है। अल्लाह तबारक व ताला ने निकाह को महज मुआशरती मुआहदा नहीं, बल्कि सुकून, मोहब्बत और रहमत का जरिया करार दिया। वमिन आयातियन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा फरमाया, और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े बनाए और उनसे आराम पाओ, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी है। निकाह की बुनियाद सुकून, मवद्दत और रहमत पर है, लेकिन जब मियाँ बीवी एक दूसरे को सुकून देने के बजाय मुसलसल अजियत देने लगे, हर बात अना का मसला बन जाए, उनके दरमियान गुफ्तगू ख़त्म हो जाए, एतिमाद की धज्जियाँ उड़ जाएँ, और ख़ानदान के लोग इस्लाह के बजाय आग में घी और तेल डालने लगें, तो घर का सुकून तबाह हो जाता है, और फिर तलाकें हो जाती हैं और घर तबाह हो जाते हैं। कुरान करीम ने तलाक से पहले इस्लाह का रास्ता बताया है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद को अगर हम देखें, जो अल्लाह की मुकद्दस किताब है, आज हम हर किताब पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो फ़कत अल्लाह की किताब और कुरान पाक को न पढ़ते हैं और न उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कौम कुरान के साथ जुल्म कर रही है, हम खुद जुल्म कर रहे हैं। आज जो माशरे में तबाहियाँ हैं, चाहे वो नशे की तबाही हो, या फजूल खर्ची की तबाही हो, या माँ बाप के हुकूक की पामाली की तबाही हो, या मियाँ बीवी के हुकूक के पामाली की तबाही हो, या घर घर में गीबत के बाजार गर्म हो, या जबानों पर हर छोटी और बड़ी बात में झूठ बोला जा रहा हो, और लोगों की अमानत में खयानती की जा रही हो, और एक दूसरे के मालों को गसब किया जा रहा हो, विरासत के मालों पर कब्जे किए जा रहे हों बिना वजह, और बहनों को उनके हुकूक अदा न किए जाते हों, तो ऐसे मुआशरे में जब हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, तारी तबाहियां इस बुनियाद पर हैं कि हमने किताबों को ताकों में सजा कर रख दिया है। अगर बाप मरे तो 40वें तक कुरान की थोड़ी बहुती तिलावत टूटी फूटी कर लो, खत्म बात। 40वां में, तीजे में, 10वें में बस। अगर घर नहीं नया बनाया है तो कुरान का खत्म करा दो। हमने इन दो कामों के लिए कुरान को समझा और रखा है कि शायद ये फकत 40वें में पढ़ने की किताब होगी। अरे बाबा यकीनन पढ़ोगे तो बख्शिश होगी, लेकिन कुरान पाक फकत 40वें 10वें में पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर जगह पर कुरान तुम्हारी रहनुमाई करता है। कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट है, और ये वो अजीम सरमाया और हमारे लिए नीमत है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर और दुनिया से जब पर्दा फरमाया और इमामुल अंबिया इस दुनिया को खैराबाद कह करके जब अपने आराम गाह में गुम्बदे खजरा में जलवागर होने के लिए तशरीफ फरमा हुए, तो आखिरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरा मुकम्मल दीन कामिल अकमल सिखा दिया तो दो बातें फरमाई कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इन दोनों का दामन थामे रखना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अना तारिकु मुस्तकलैन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज मुख्तलिफ हैं। पहली हदीस में फरमाया अव्वलु किताबुल्लाह व सुन्नती, पहली चीज़ अल्लाह की किताब, दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत है, यानी मेरी हदीस है, मेरे अकवाल अफ़आल और मेरी तकरीरें हैं जो हदीस की शक्ल में, जिसने इन दोनों का दामन थामा कभी गुमराह नहीं होगा। और दूसरे अल्फाज हैं अना तारिक मुस्तकलैन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अव्वलु किताबुल्लाह फीहिल हुदा व नूर, पहली चीज किताबुल्लाह है, उसमें अल्लाह ने हिदायत और नूर को रखा है। और दूसरी चीज व इतरती, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा मेरी औलाद, मेरी अहले बैत है, तुम इससे मोहब्बत करते रहना। उज़क्किरुकुम अहलु बैत, उज़क्किरुकुम अहलु बैत, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में डराता हूँ। आज बताओ जिस पैगंबर ने दुनिया से अलविदा कहकर और जब रुखसती फरमाई है, पर्दा फरमाया, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे अहम बात बताई, मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह छोड़ रहा हूँ। मुझे बताओ आज हमने कितना किताबुल्लाह को पकड़ा है। अगर किताबुल्लाह को पकड़ा होता तो ये बात बात पर तलाक की तबाहियाँ हमारे मुआशरे में होती। ये नौजवान बच्चे जो आज नशे आवर चीज़ें पी पी करके, गांजा पी करके, हीरोइन पी करके और पूरे घर को तबाह कर लेते हैं और उनके चेहरे शक्लें बिगड़ जाती हैं, वो खुद आईने में अपने चेहरे नहीं देख सकते। मुझे बताओ ये सारी तबाहियां किस वजह से है? इस वजह से है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को छोड़ दिया है, हमने किताबुल्लाह को छोड़ दिया है, हमने सुन्नत रसूलुल्लाह को छोड़ दिया है। काश हम किताब को पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करते और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करते तो हमारे घरों से खुशबू फूटती और हमारे घरों में उजाला होता। मेरे अजीजों यही पैगाम है, पलट आओ किताबुल्लाह की तरफ, तुम भूल चुके हो, आ जाओ किताबुल्लाह की तरफ और अच्छे आलिम से और अच्छे इमाम से जो कुरान और हदीस का इल्म जानता हो, आलिम हो, उससे रुजू करो और उसकी बातें सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़िकिल्लाहु बैनहुमा, और अगर तुम में उन दोनों के दरमियान मुखालफत का अंदेशा हो, यानी मियाँ और बीवी में, तो एक मुनसिब मर्द घर वालों में से और एक मुनसिब मर्द औरत के घर वालों में, यानी अगर तुम में बात नहीं बन रही है, मियाँ बीवी की सलाह नहीं हो पा रही है, तो शोहर की तरफ से एक इंसाफ करने वाला आदमी मर्द और एक मर्द औरत के घर वालों में से, दोनों को हाकिम मुकर्रर करो और वो दोनों इस्लाह चाहें तो उन दोनों में मुवाफिकत अल्लाह करा देगा। तो आज होता ये फब आसू हकम मिन अहली ही व हकम मिन अहलीहा, इस पर अगर इस्लाह की कोशिश की जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये तलाक की तबाही का रेशो कम हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: موزے سامعین, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خطیب و امام مسجد رضا کوندے واس پاوے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غفران رضا قادری صاحب کی

ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपके दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। जुम्मा 9 अक्टूबर सुबह 10 बजे जामिया अयूबिया रिजविया पोर्ट लुइस निकोले रोड में महफिल 11वीं शरीफ का उर्स का अहतमाम किया जा रहा है शैला आपा की सरपरस्ती में। बाद नमाज ज़ोहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। आइए समात फरमाइए एक और ऐलान। सनीचर 10 अक्टूबर शाम के 4 बजे आलिमिया कॉलेज हाईलैंड्स फिनिक्स में उर्स शरीफ हज़रत सैदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीनों हज़रात को शिरकत की दावत है। इसके अलावा आइए बढ़ते हैं चंद पैगामात की तरफ। वाकवा से मुस्लिम ची भाई हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं और सैंपल से रेहाना और रियाज ने इस कलाम की फरमाइश की है। आइए समात फरमाइए।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, रात के अंधेरों को दिन के उजाले में तब्दील करने वाले, ऐ मेरे अल्लाह, हमारे दिल के अंधेरों को भी अपने फ़ज़ल से उजालों में बदल दे, पंज वक्ता नमाजी बना दे और हमारे जज़ीरे में, मॉरिशस में बारिश की रहमत को भेज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामेईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। जी हाँ, आज बुधवार 7 अक्टूबर 2026 और ये खूबसूरत कार्यक्रम खासकर आप लोगों के नाम, नंबर है 4028085402808 और ज़रूर हमें आप लोगों का इंतज़ार है। चलिए, बहुत ही प्यारा मौसम है, इस खूबसूरत मौसम में खूबसूरत गाने हम एंजॉय करेंगे। चलिए आज का पहला गाना सुनते हैं और ये गाना उन तमाम लोगों के लिए जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ।

आपकी पसंद। दो बजकर 37 मिनट हुए हैं। चले यहाँ पर हमें सुन रहे हैं रोहित जी फ्रॉम बोबासा और साथ में संगीता जी जो रहती है क्यूपिप, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गाना आप लोगों के नाम हम चलाते हैं 4028085 402808585।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, चाहा था चाहते रहेंगे कुछ नए कुछ पुराने 80s 70s 60s और ऐसे ऐसे गाने हम चलाएंगे आप लोगों की मांग पर। और यहाँ पर हमें सुन रही है सिमला जी, जी हाँ वो रहती हैं बेल रोज, और गाना वो मांग रही है बहन रूमा आरती इंदिरा, भाई जो है राकेश धीरज नमलेश बेटी कीर्तिना, और हमारे सभी लिसनर्स के लिए चलिए धन्यवाद आपको। नसीब फिल्म से लिया गया लता जी की आवाज़ में।

0: आपकी पसंद।
1: 2:50 हुए हैं और यहाँ पर आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। जी हाँ, गाना, अगला गाना जी हाँ हम चलाएंगे विश्वानी डुमन जी के लिए। वो रहती है वाकवा और इस समय हमें सुन रही है गाना उनकी बहन इंदिरा, शारदा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए।

ही पसंद। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सुदेवी जी हमें सुन रही है फ्रॉम वाकवा और गाना वो मांग रही है दीदी ललिता कुशल फैमिली के लिए और साथ में सुनीता शोभा देवी नामाला बिंदु मालेंगा के कृषय कृष्णी प्रणीता राम रतन परिवार रघुबर परिवार कुआहू परिवार और जालू परिवार के लिए। और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में बेघर महिलाओं के लिए सुरक्षित ठिकाने की कमी पर पास्कल ने चिंता व्यक्त की है। संस्था के मुताबिक पुरुषों के लिए रात में ठहरने के 3 केंद्र हैं, लेकिन महिलाओं के लिए एक भी नहीं। ऐसे में कुछ महिलाएं हिंसा से बचने के लिए अस्पतालों की बेंच, समुद्र किनारे या अपने बच्चों के साथ टेंट में रात गुजारती हैं। पास्कल ने महिलाओं के लिए ऐसा इमरजेंसी शेल्टर बनाने की मांग की है जो दिन में भी खुला रहे और जहां उन्हें जरूरी मदद मिल सके। वहीं मंत्री शकील मोहम्मद के मुताबिक देश में इस समय 52,000 से 55,000 लोग घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं और स्थायी घर मिलने तक अस्थायी मकानों की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। और अब उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आपने हाल में यूरोप का पीने वाला दही खरीदा है तो अपने फ्रिज में रखी बोतल जरूर जांच ले। मोगिले और पनागोगा मार्केटिंग ने मॉरिशस और रोड्रिग्स में यूरोप की 250 ग्राम की सभी किस्मों की बोतलें सावधानी के तौर पर वापस मंगाने का फैसला लिया है। कुछ बोतलों में सफेद सख्त प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होने की आशंका है जिन्हें गलती से निगलने का खतरा हो सकता है। मॉरिशस में नए फिल्मी हुनर को आगे लाने के लिए नेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2026 शुरू की गई है। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इस प्रतियोगिता में इस बार 3 श्रेणियां रखी गई हैं, पारंपरिक फिल्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म और डॉक्यूमेंट्री। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 12 नवम्बर तक आवेदन लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य नई प्रतिभाओं को सामने लाना और मॉरिशस में सिनेमा को बढ़ावा देना है। वहीं MFDC के 40 साल पूरे होने पर कई खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें सिनेमा वीक, ट्रेनिंग, फिल्मों के विशेष प्रदर्शन और गांव तक सिनेमा पहुंचाने की पहल शामिल है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में, हिमालय का रंग बिरंगा मोनाल पक्षी अब इंसानी गतिविधियों के कारण अपना ठिकाना ही नहीं अपनी आवाज भी बदल रहा है। भारतीय शोधकर्ताओं के 5 साल के अध्ययन में पता चला है कि बढ़ते पर्यटन, निर्माण और भीड़ के कारण ये पक्षी पहाड़ों में और ऊंचाइयों पर जा रहा है और वहीं इंसानों और गाड़ियों के शोर के बीच अपनी आवाज दूसरे पक्षियों तक पहुंचाने के लिए उसे अपना सुर भी बदलना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोनाल हिमालय के पर्यावरण की सेहत का अहम संकेत है और इसमें आ रहे ये बदलाव दूसरी प्रजातियों के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। महात्मा गांधी रोड लोशे तेहूज में 73 साल की 73 years old की जसोदा रंगलोल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बसंती के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल गुरुवार 8 अक्टूबर को दिन के 12:30 बजे उनके बेटे रंजीत रंगलोल के मकान तेहूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोआमोशन तेहूज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। आलेमोंग पुस्तफ्लाक में 22 साल के 22 years old के केशव बिपन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम के 6 बजे उनके भाई केविन कुमार बिपन के घर आलेमोंग पुस्तफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुए की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 6 PM। शोक में डूबे दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है। on NBC Play.

ये सीबी की ओर से सुनिए एक विज्ञप्ति। सैंतक्रुआ के आसपास के इलाके रुद बासै नंबर वन, नंबर टू और ले कोनू के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि गुरुवार

अनुसार जहां कल गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 सुबह के 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सेबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। आपकी पसंद तीन बजकर 5 मिनट हुए हैं। श्रोताओं जी, हाँ, आप सुन रहे हैं आपके पसंद प्रोग्राम ऑन रेडियो मॉरिशस, और यहाँ पर नंबर है 4028085402808 और मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5251700। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं उषा आप लोगों के साथ रात के शाम के 4 बजे तक अभी साथ दीजिएगा। और यहाँ पर हमें सुन रही है सरिता जी ऑफ नोवेल फॉन्स, और गाना वो मांग रही हैं अपनी बेटी स्वीटी और उनकी सहेली वीना। आज दोनों का जन्मदिन है और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद सरिता जी की ओर से। और साथ ही साथ में हमें सुन रही है ज्योति जी, जहाँ वो रहती हैं यूनियन पार्क, और गाना वो मांग रही हैं आदर्श के लिए आदर्श नामा। आज उनका जन्मदिन है तो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मामा प्रीति, भाई मयूर, विवेक, बहन वेदना, विमला, केनिता और हमारे सभी लिसनर्स की ओर से, और ख़ासकर पूरे एमबीसी टीम की ओर से आपको जन्मदिन मुबारक हो।

चलिए अगला गाना हीरा मती जी के लिए, वो रहती हैं बुआशेरी, और गाना हम सुनेंगे रॉकस्टार फिल्म से लिया गया, और ये गाना खासकर उनके बेटे की याद में पूरे परिवार की ओर से।

16:22 हुए हैं। चलिए अनीता जी जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम फिकॉन फ्लाक, और वो गाना खास मांग रही हैं अपने पति राज के लिए। दो बेटे हैं अंतिश और अंकुश, बहुएं हैं अशिमा और मनीषा, और पोती जो है हिमेशा और आदिया, और पोते अंश के नाम। चलिए गाना सुनते हैं।

आपकी पसंद। जी हाँ दोस्तों, आप जहाँ पर भी है इस समय हमें सुन रहे हैं, काम पर हैं, घर पर हैं, बस ऐसे ही खूबसूरत गाने आप लोग एंजॉय कीजिए और हमेशा रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े रहिए। विक्रम जी जो हैं वो रहते हैं कावा कासिया और इस समय हमें सुन रहे हैं। चलिए अगला गाना आपके नाम।

3:37 हुए हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप सुन रहे हैं आपके पसंद प्रोग्राम दिलीप जी जो रहते हैं कुंगुमा, और गाना वो मांग रहे हैं संगीता योगेश, कविता कृष्णवी, इंदिरा, मनीषा, दानन, निशा के लिए।

की पसंद। तीन बजकर 43 मिनट हुए हैं और यहाँ पर कब्जा मूवी से लिया गया अगला गाना हम चलाएंगे, खासकर बंधु फैमिली के लिए जो रहते हैं थयोले, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में।

0: की पसंद।
1: चले दोस्तों, यहाँ पर हम गाना चलाएंगे फिल्म पल की, इसे लिया गया, जी हाँ, पल की। और गाना खास कर जैबून जी के लिए, वो रहती हैं पोपाल हैं, और गाना वो मांग रही है शोहर कासम। चार बेटे हैं, चार बहुएं हैं, साथ में उनके नाती पोते के लिए जैरब भी, नगमा, उर्फा, असगर, हिदायत, फैजुला और निहाद के लिए, और उनकी बहन जो है आंसू, और बहन नाजमुन, और ख़ास कर नाजिमा और आयलिमुन के लिए।

0: Aïe, sonye si bikior, se ek vigyopti, vin l'aventure ki as paske la ki vin village ho lane, Shivala lane, or route royale l'aventure ki rene valo ko ye suchit kiya jata hai, ke kal guruvar 8 अक्टूबर 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
3: आपकी पसंद।
0: जी हाँ प्यारे श्रोताओं, आज जी हाँ इस साकरी गीत हम चलाएंगे विद्या जी के लिए। वो रहती हैं यूनियन पार्क और गाना वो मांग रही हैं अपने लिए और बहन सती के लिए, सुरेखा, बबीता और चाची कुमारी के नाम। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों ने साथ दिया। इसी गीत के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और 4 बजे भूलिएगा नहीं आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम शिरीष रामा की प्रस्तुति में। और मैं उषा कौर, आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी शाम के 5 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम में भाई रोशन के साथ। जी हाँ, और अभी के लिए चलिए लता जी की प्यारी आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारा सतराना।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ रेशमा बालगोबीन बासेनू, वल्गराइजेशन ऑफिसर फारे से। आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस हफ्ते हम बात करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान सीजन 2026-2027 फॉर फ्रूट प्रोटेक्शन। इस समय मॉरिशस में फल के फूलने का मौसम चल रहा है, जैसे कि लीची, आम, लौंगान और स्ट्रॉबेरी। और जैसे आप सब जानते हैं, इस मौसम में शोवसूरी, जिसे हम बड़े बैट्स कहते हैं, के हमले से काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए

इन नुकसानों को कम करने के लिए हमें अपने फलों को इन जानवरों से बचाना ज़रूरी है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है एंटी बर्ड नेट लगाना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो इंडस्ट्री, फूड सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड फिशरीज सभी ऑर्चर्ड के मालिक को और आम जनता को सूचित करता है कि फ्रूट प्रोटेक्शन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान 2026-2027 की वैलिडिटी पीरियड 1 अक्टूबर 2026 से लेकर 6 नवंबर 2026 तक है। ये प्लान इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों को एंटी बर्ड नेट खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिले, ताकि वे अपने फलों को चिड़ियों और बैट्स से बचा सकें। हर बेनिफिशरीज को नेट के कॉस्ट पर 50% सब्सिडी मिलेगा। आपको बैकयार्ड के लिए मैक्सिमम 5 पेड़ के लिए और कमर्शियल ऑर्चर्ड के लिए आपको 60 पेड़ तक मिलेगा। ये सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर ही चलेगा। ध्यान रहे, हर बेनिफिशियरी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन दे सकता है। आपको नेट्स तब लगाना चाहिए जब आपके फल का साइज 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया हो। इस सहायता जो फाइनेंशियल एड है का लाभ लेने के लिए आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड की कॉपी, एक रिसेंट CWA या फिर CEB का बिल प्रूफ के रूप में, और अगर ऑर्चर्ड हैं तो आपको प्रॉपर्टी टाइटल का प्रूफ भी अपने साथ लेकर आना चाहिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर फागे के वेबसाइट पर भी मिल सकता है। आप फागे के ऑफिसर्स में अपनी एप्लीकेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन भर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी और अन्य एप्लीकेशन डालने के लिए आप फागे के ऑफिसर्स में संपर्क कर सकते हैं। आप इन दिनों में और इन जगहों में फागे के ऑफिसर्स में जा सकते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक आप जा सकते हैं। इन जगहों में मापू मॉडल फार्म, फ्लैक मॉडल फार्म, रिविया डेज एंगी मॉडल फार्म, प्लेजेंस मॉडल फार्म, वाक्वा सब ऑफिस या फिर आप सेंट पियर एक्सटेंशन ऑफिस पर भी जा सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इसके साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समापन होता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप नज़दीक फागे ऑफिस से संपर्क करें। आपके ध्यान के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपको शुभ रात्रि।

0: जी हाँ, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, परंतु अगर अंताक्षरी प्रोग्राम नहीं चलेगा तो कोई फर्क तो होगा ही।
1: अंताक्षरी, अंताक्षरी।

0: अंताक्षरी प्रोग्राम के मस्तानों, गीतों के दीवानों, उषा और रोशन के कदरदानों, आप सभी लोगों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, कैसे हैं आप?
0: श्रोता लोग तो ठीक होंगे। उषा जी, आप कैसी हैं?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, क्योंकि 2 सप्ताह आप तो नहीं

0: थे।
1: क्या करें, लेकिन आपने क्या खूब संभाला। लेकिन क्या करें, कभी कभार छुट्टी लेनी पड़ती है ना। लेकिन आप लोगों का प्यार हमें खींच लाया जल्दी जल्दी यहाँ पर।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए उषा जी, आप बताइए कि आज क्या होने वाला है।
0: आज क्या होने वाला है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको गाने गाने होंगे, दो ऐसे कलाकार के गाने, एक अमिताभ बच्चन साहब और एक रेखा। एक ऐसी जोड़ी हम लेकर आए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्रसिद्ध जोड़ी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी का जन्म दिवस 11 अक्टूबर को,
0: और रेखा जो है उनका तो 10 अक्टूबर है,
1: यानी एक दिन की फर्क।
0: जी
1: तो चलिए,
0: और यहाँ तो नंबर हम बताएंगे।
1: बिल्कुल,
0: 4028085402808 5, और मैसेजेस आप भेज सकते हैं। अगर घर पर बैठे बैठे ये प्रोग्राम आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फिर नंबर पर आप हमें बता सकते हैं, 5251705।
1: बिल्कुल, और एक और माध्यम है उषा
0: जी। जी, एक और माध्यम है और वो है टिकटॉक। आप हम लाइव टिकटॉक कर रहे हैं और आप लोग हमें देख सकते हैं। जी हाँ, और इस प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट पर आप सही जवाब भी दे सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत स्पष्ट रूप में उषा बहन ने आपको बता दिया है।
0: शुरू करने से पहले हम उन लोगों को हाय बोलना चाहेंगे जो जुड़ चुके हैं।
1: अच्छा जी,
0: एक है जमाइका क्रॉसिंग जो इस प्रोग्राम को कभी मिस नहीं करता है।
1: जमाइका क्रॉसिंग,
0: हाँ जी।
1: अरे बाप, जमाइका में हुई पर तो उसेन बोल्ट है ना।
0: हाँ जी,
1: जो फास्ट रनर। हाँ,
0: और नीलिमा है, हेलो टू यू। और रुकाया सुडन, अच्छा आप भेजी फ्रॉम पॉपुलर स्टोर, अच्छा पॉपुलर स्टोर, वाह क्या बात है,
1: नए नए नाम।
0: हाँ जी, और प्यारी सुमिता जो है वो यहीं पर है और फिर भी हाय बोल रही है, हेलो टू यू सुमिता।
1: जी बिल्कुल, सभी लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। तो बता दें आपको, पहला गाना आपको श्री अमिताभ बच्चन जी पर गाना है, और दूसरा गाना म्यूजिक राउंड है जहाँ पर हम रेखा जी पर गाना चलाएंगे और आप उस गाने को पहचान कर गाना पड़ेगा आपको
0: जी।
1: तो सभी जो गाने आप पहला गाएंगे अमिताभ बच्चन जी पर,
0: अमिताभ बच्चन जी पर। हम देखते हैं यहाँ पर
1: लाइन पर कौन है,
0: पर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
2: नमस्कार उषा बहन, नमस्कार भाई रोशन,
1: नमस्कार भाई हरीश,
2: वेलकम बैक टू यू।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम तो यहीं पर थे,
2: हैप्पी टू हियर यू।
1: ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए हरीश भाई, आप अमिताभ बच्चन जी को पसंद करते हैं, तो चलिए उन पर एक गाना गा,
2: पहला गाना अमिताभ बच्चन।
1: हाँ जी बिल्कुल, उन्हीं पर आपको गाना होगा पहला गाना। ओके,
2: ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों के गलियों में
1: जी,
2: तू जो नहीं है कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना।
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: मुकद्दर का सिकंदर है ना।
1: जी
2: सिकंदर,
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आपको गाना पड़ेगा रेखा जी पर और यहाँ पर धुन चल पर आपके लिए, सुनिए। ओके सुनिए।

0: जी हाँ, हमने बहुत देर तक ये गाना चला दिया आपके लिए हरीश भाई। कोई
1: ट्राई
0: दिक,
1: करेंगे। ये
0: हाँ जी कीजिए। हाँ
1: कहाँ गए साथ चलते चलते।
0: नहीं हरीश भाई, ये गाना नहीं है। चलिए बहन
1: ओके
0: आपके लिए गाएंगी।
1: ओके,
0: ये
1: थैंक यू।
0: मौसम इतने
1: इतने सालों
0: सालों।

0: अच्छा ओके, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है हर्ष भाई, ये खेल है और आपने क्या कोशिश की है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद,
1: थैंक यू, बाय बाय।
2: आज क्या हुआ ऐसे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे कठिन सवाल हमारे श्रोता से आप
0: पूछ नहीं, लेकिन आपने तो पहचान लिया
2: मैंने तो पहचान लिया
0: क्योंकि आप तो प्रोफेशनल हैं।
2: ओह माय गॉड,
0: और ये गाना हाई पिच में था बहना, कैसे आपने लिया ये?
2: ले लिया, ले लिया
0: आपने,
2: बस ले लिया
0: एक ही झटके में,
2: एक ही झटके
0: बिना कोई रिहर्सल किए हुए।
2: हाँ जी,
0: ओह यू आर द बेस्ट हैं।
2: ओके चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो,
0: हेलो जी, नमस्ते।
3: हेलो, नमस्ते रोशन जी और उषा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: नमस्कार।
0: क्या नाम है आपका?
3: मैं लीला बोल रही हूँ,
0: बुआशेरी की लीला जी, आपकी लीला परंपार है।
3: आप कैसे हैं? दोनों ठीक है ना?
0: ठीक है जी, बिल्कुल। तो चलिए लीला जी, आप अमिताभ बच्चन जी पर कोई गाना गाइए।

बहुत सुंदर सा गाना आपने गाया फिल्म शराबी से. आशा करता हूँ कि आप शराबी तो नहीं. चलिए ये हो गया आपका गाना. अब आपके लिए रेखा जी पर ये गाना आपको पहचानना है और गाना है. ओके सुनिए.

0: जी लीला जी, चलिए आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, अब आप हमें बताइए कौन सा गाना है ये।
1: फिल्म सिलसिला का है?
0: नहीं जी, आप कोशिश तो करें गाकर, सुनाइए तो पहले। सुनाइए, याद आया? नहीं जी, चलिए सुनिए बहना को। तेरे बिना।

0: जी,
1: जी
0: क्या
1: बाबा,
0: बात है, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ही आप कोशिश करती रहें लीला जी।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: आप लोगों को, और
0: धन्यवाद,
1: शुभ संध्या आप दोनों
0: शुभ
1: को।
0: शुभ संध्या,
1: बाय
0: बाय।
1: बाय बाय।
0: ये तो एक तरफ से आपकी परीक्षा हो गई
1: हाँ वही तो मैं देख रही हूँ, जब आप नहीं
0: बहना
1: होते हैं तो मैं बोलती हूँ ओके आप नहीं आए, मैं बहुत सैड होती हूँ, लेकिन फिर भी हमारी परीक्षा नहीं होती
0: हाँ
1: है।
0: जी, लेकिन खेल खेल में बहुत समय गुजर जाता है ना। किसी ने कुछ कमेंट्स किया है टिकटॉक
1: बहुत
0: पर, बहुत सारे।
1: चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कौन है। मीनाक्षी है, हाय बोथ ऑफ यू, हाय टू यू।
0: हाय।
1: और आप हैं शोभा जी फ्रॉम वाक्वा,
0: नमस्कार।
1: शोभापुरन। आज हमें पता चला कि आपका सरनेम क्या है,
0: सरनेम, हाँ
1: शोभापुरन।
0: हाँ जी।
1: और धनी जगरूक फ्रॉम गुडलैंड्स, उन्होंने अपना फुल एड्रेस दे दिया है,
0: अरे बाप रे।
1: गुडलैंड्स ममजिल जान। ओके थैंक यू सो मच। और दास कोल है, हाय टू यू। हम आपको कहेंगे कि आप लाइव देखते समय प्लीज़ लाइव को लाइक करें, शेयर करें, और इस पेज को भी आप फॉलो करें। और यहाँ पर उमा बेचू बाचू,
0: बाचू जी।
1: और वो रहती हैं बुआशरी। हेलो। अच्छा, हमारी प्यारी मीरा मीरा जी भी है,
0: अच्छा।
1: वन ऑफ माय स्टूडेंट। और नर्वदा, नमस्ते टू यू। चलिए कीप ऑन शेयरिंग ये लाइव। आप लोग को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। लक्ष्मण मालू, थैंक यू सो मच। और हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं
0: लाइन पर कौन है?
1: लाइन पर कौन है। हेलो
0: हेलो।
1: हेलो
0: ओ हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते रुशन भैया, नमस्ते उषा
0: नमस्ते
1: मैना।

0: या बहना, जरा रेडियो को आप बंद कर दीजिए प्लीज,
1: हाँ हो
0: ताकि आपकी
1: गया।
0: आवाज बहुत साफ आ जाए। अच्छा ओके, तो आप तैयार हैं इंदिरा जी? मेबर्ग से हैं ना
1: हाँ
0: आप?
1: हाँ
0: ओके, तो चलिए आपका पहला गाना अमिताभ बच्चन जी पर। अरे
1: आजरापति जाए तो
0: बाप,
1: हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी पिसल जाइयो। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो।
0: क्या गाना बहना ने गाया, वाह, नमक हलाल फिल्म का गाना।
2: ये जो पार्ट है, आहा, मैं कभी मिस नहीं
0: मिस
2: करती
0: नहीं
2: हूँ।
0: करती है ना आप? चलिए, ये बहुत ही सुंदर सा गाना था आपकी ओर से। चलिए, आप रेखा जी को पसंद करती है ना आप?
1: हाँ
0: तो चलिए, ये आवाज़, ये धुन आप सुनिए और पहचानने की कोशिश करें प्लीज।

0: जी हाँ, बहुत आसान सा धुन है इंदिरा जी, गाइए।
1: गीत तो आ रहा है लेकिन
0: ओ,
1: दिमाग में
0: ऐसा ना करें, ये
1: मिल
0: आपने
1: जाएगा। अब आ
0: पहचाना
1: है,
0: नहीं।
1: बोलो
0: ओ
1: लिखो।
0: चलिए बहना, शुरू हो जाए।
1: परदेसी आ ये सच है।

0: थैंक यू,
1: याद आ गया। ओके, जब उषा जी ने गाया तो आपने कहा ओ मेरी किस्मत।
0: ओके थैंक यू उषा बेना,
2: बहुत धन्यवाद,
0: शुभ संध्या।
2: और यहाँ पर ये गाना चलाने से पहले हमारी प्यारी प्रीति रंजीत जी हैं जो हमें सुन रही हैं, उन्होंने कहा कि उषा जी प्लीज आप सब के लिए ये गाना गाइए बस।
1: अच्छा,
2: इसीलिए मैंने वही परदेसिया।
1: अरे वाह,
2: हाँ जी,
1: यही गाना,
2: यही गाना तो मैंने गा
1: लिया।
2: हाँ जी,
1: अच्छा गाइए।
2: नहीं बस अभी तो गा लिया ना।
1: मैं सोचता था कि आप अंतरा गाएंगी।
2: हाँ,
1: कोई बात नहीं,
2: नेक्स्ट टाइम
1: तो उनकी मांग तो पूरी हो गई।
2: हाँ जी, नेक्स्ट टाइम।
1: ओके, वेरी गुड।
2: गलियों में,
1: चौबारों में।
2: और यहाँ पर विक्रम सूरज बाली, हेलो जी, मैं विक्रम फ्रॉम ग्रैंबोआ, आई वांट टू, नहीं ये डेडिकेशन नहीं है लेकिन फिर भी आपकी बीवी का नाम हम लेंगे, हिमा जी हाय। और उमा बाचू, प्रोग्राम जबरदस्त है, सो नाइस, आपकी आवाज क्यूट है, थैंक यू, धन्यवाद
1: आपको।
2: बढ़ते हैं आगे, चलिए यहाँ पर कौन है, हेलो,
1: हेलो जी,
2: हेलो,
3: हेलो, नमस्ते आप दोनों को, अहो भाग्य हमारा आज लाइन मिल गई।
1: सरिता जी
3: मुझे, आप दोनों कैसे हो?
1: हम ठीक हैं जी, आप कैसी हैं?
3: मैं भी ठीक हूँ।
1: चलिए आपका स्वागत है क्योंकि आपकी लाइन लग गई है।
3: जी जी,
1: तो चलिए अमिताभ बच्चन जी पर गाना गाइए प्लीज।
3: किस पर?
1: अमिताभ जी पर।
3: अमिताभ बच्चन जी,
1: हाँ गाइए।
3: अभी तो
1: आपको याद हो,

0: बहुत ही सुंदर आपने गाया है, और
1: धन्यवाद।
0: आप के लिए हम क्या कहें, ताड़ियों की गूंज तो हमने बजा दिया आपके लिए।
1: जी
0: अब चलिए, ये आवाज, ये धुन पहचानिए, रेखा जी पर है। ओके
1: ओके।
0: सुनिए।

0: भूल गए अब।
1: बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
2: जी हाँ, उषा जी की मदद से आपने गाया और
0: जी, मैं भूल गई
2: बीच कोई
0: में।
2: बात नहीं, लेकिन आपने ठीक पकड़ा और आप बनती हैं फर्स्ट ऑफ द वीक, क्योंकि
0: okay,
2: दोनों जवाब आपको पता हो गया। धन्यवाद
0: okay,
2: आपको
0: बाय जी, धन्यवाद,
2: शुभ संध्या,
0: बाय।
2: जी हाँ उषा जी, एक बार तो मेरा कहा मान लीजिए।
3: वो बात
2: है कि मैं कदम कदम पर पग पग पर आपकी परीक्षा लूंगा अभी।
3: और चलिए यहाँ पर रंजना, नमस्ते टू यू एंड
2: नमस्ते रंजना जी,
3: फ्रॉम रंजना एंड धर्म गंगू।
2: हम तो जानते हैं उन्हें बिल्कुल।
3: क्या बात है, आप तो बहुत फेमस हो।
2: हाँ जी, आपकी तरह आपकी तरह इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन रंजना जी बहुत अच्छा गाती हैं वो भी।
3: अच्छा, चलिए किसी दिन उनको
2: सुनेंगे उसको
3: मिलेगा।
2: बिल्कुल।
3: और यहाँ कौन है? हेलो
4: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
2: नमस्ते।
4: नमस्ते उषा जी।
3: नमस्ते
2: श्यामा जी, है ये तो।
4: हाँ।
2: कैसी हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ। मेरी लाइन वहाँ पर नहीं मिल रही है, ये मेरी बेटी के फोन में से नहीं मिल रहा है, पता नहीं, 3 सप्ताह हो गए।
2: हो सकता है कि लाइन में खराबी होगी। हाँ, क्योंकि सब फोन जो आ रहे हैं तो हम उठा तो रहे हैं। कोई बात नहीं श्यामा जी, चलिए आप अमिताभ बच्चन जी पर गाना गाइए अमिताभ जी पर।

0: सलाम लेते जाना।
1: जी हाँ, लेकिन क्या कह रहे हैं आप, आखिरी सलाम इसके बाद नहीं आएंगे क्या?
2: क्यों?
0: फिर आएंगे।
1: तो ये अपना आखिरी सलाम वाला गाना गा दिया। चलिए ये तो हो गया आपके लिए। अब आप ये गाना पहचानिए, रेखा जी पर आधारित है। ओके, सुनिए।
0: पता नहीं।

0: जिसके लिए छोड़ा हमें
1: है?
2: सबको छोड़ा
0: सबको छोड़ा
2: उसी ने मेरे दिल को तोड़ा।
1: कौन बेवफा? हम तो
2: हम तो बेवफा नहीं है श्यामा जी, लेकिन आपने क्या खूब पकड़ा। आप भी बनती हैं स्टॉप द वीक। बहुत धन्यवाद आपको।
0: ओके बाय।

0: आपसे प्यारा कौन मिल सकता है, कहिए तो उषा जी।
1: कहिए तो हाँ, कोई नहीं है आप लोगों से प्यारा। चलिए जल्दी जल्दी हम यहाँ पर नाम लेंगे और शोभा जी जवाब दे रही है, थैंक यू जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा। हाँ यही सही जवाब है। और पृथ्वीराज सिंह, आप भाई नंदलाल वाचिंग रिगार्ड्स टू भाई रोशन। चलिए आपका एक फैन है,
0: बिल्कुल फुटबॉल फुटबॉल के प्रेमी हैं वो।
1: चलिए यहाँ कौन है, हेलो।
0: हेलो जी, नमस्ते
2: रोशन भाई। नमस्ते उषा जी।
1: नमस्ते आपको, कौन है आप?
0: अब तो
1: अच्छा मिस
0: उदय भाई। हाँ,
1: उदय भाई।
0: कैसे उदय भाई?
2: भी यहाँ का हैप्पी बर्थडे, और रेखा जी को भी हैप्पी बर्थडे।
0: ओह क्या बात,
2: मैं तो रोज केबीसी देखता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, रोज देखते हैं आप केबीसी?
2: रोज देखते हैं,
0: इसीलिए आप करोड़पति हैं दिल के। चलिए तो अगर आप केबीसी रोज देखते हैं तो अमिताभ जी पर कोई गाना हो जाए।
2: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

0: या तूने क्या इशारा।
1: सचमुच आपने हम दोनों का मन छू लिया है अपने गाने के द्वारा, बहुत ही अच्छा लगा उदय भाई। अब देखते हैं कि आप ये गाना पहचान पाएंगे या नहीं।

0: बहुत आसान है भाई उदय, बताइए क्या जवाब हो सकता है?
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में फूल खिले हुए। ठीक,
0: बहुत अच्छा, आपने ये गाना भी पहचान लिया और ऐसे में आप बनते हैं स्टार ऑफ द वीक।
1: थैंक यू,
0: बहुत धन्यवाद आपको,
2: धन्यवाद, बाय बाय
0: बाय।
2: चलिए यहाँ पर फिर से याद दिला देते हैं हमारे श्रोताओं को जो लाइव टिकटॉक देख रहे हैं, लाइव को आप शेयर करें, लाइक करें और इस पेज को आप फॉलो करें। यहाँ पर राहिश्ता सुविधा है, हेलो टू यू
0: सुविधा।
2: सुविधा
0: बहुत सुंदर नाम है ये तो।
2: हाँ जी, बहुत सुंदर नाम है। चलिए धन्यवाद, आप लोग जुड़ चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो,
0: हेलो जी, हेलो
3: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते कविता जी,
3: नमस्ते।
0: हेलो
3: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
3: सुनीता, प्रोविडेंस से।
0: सुनीता जी प्रोविडेंस से, कैसी हैं सुनीता जी? ठीक हैं?
3: ठीक है।
0: ओके, तो चलिए आप श्री अमिताभ बच्चन जी पर गाना गाइए कृपया।
3: तेरी जैसा यार कहाँ, कहाँ याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना।
0: बहुत सुंदर सा याराना वाला गाना आपने गाया, याराना तो आपने निभा लिया। सुनीता जी अब देखते हैं रेखा जी पर ये धुन, सुनिए।

0: बहुत सुंदर सा धुन है ये तो। अब बताइए हमें सुनीता जी, कौन सा गाना है ये? मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
1: सही जवाब दिया आपने।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुंदर सा जवाब दिया सुंदर गाने के लिए। सुनीता जी आप भी स्टार ऑफ द वीक बन गई, धन्यवाद आपको,
1: धन्यवाद,
0: बाय।
1: नमस्कार।
0: जिन लोगों का को जवाब पता चल गया है ना उषा जी, तो वो लोग खुश हो रहे
1: खुश
0: हैं।
1: हो रहे हैं। यहाँ कविता डुलिप है
0: हाँ क्या कह
1: और
0: रहे हैं ये वो?
1: वो उन्होंने सही जवाब दिया। हम
0: अरे
1: भूल
0: वाह।
1: गए रे हर बात, और हमारी प्यारी शोभा जी भी ने सही जवाब दिया है, और किसी ने बोला लुतुजुन।
0: लुतुजुन, इसका क्या मतलब? कभी कभार वो लोग फनी बन जाते
1: फनी
0: हैं।
1: बन जाते हैं जी। हाँ चलिए, यहाँ देखते हैं कौन है। हेलो
0: हेलो जी,
2: रोशन जी और उषा जी को और पूरा अंताक्षरी परिवार को आशा जानू की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या बात, क्या एंट्री मारा
0: नमस्कार।
1: आपने,
0: एंट्री जबरदस्त।
1: जबरदस्त वाला एंट्री।
0: ठीक है आशा जी,
1: कैसी हैं
0: ठीक।
1: आशा जी?
2: बस थोड़ी सी खांसी है, बाकी सब कुछ ठीक है।
0: बाकी सब फर्स्ट
2: फर्स्ट
0: क्लास।
2: क्लास। अब म्यूजिक हो तो और फर्स्ट क्लास हो जाती हूँ।
0: ओह वेरी गुड। तो चलिए अमिताभ जी पर एक गाना प्लीज हो जाए आपके ओर से।
2: तो मैं 2-in-1 कर सकती हूँ, रेखा अमिताभ जी पर
0: ये
2: डुलिप
0: तो
2: पर।
0: बहुत अच्छा रहेगा, करिए।
2: पहले पहले बार देखा ऐसा जलवा, तेरा देखा ऐसा

0: नहीं गाते हैं वैसे तो, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है।
0: ओके, लंबुआ कौन है वो लंबुआ? चलिए, अब ये हो गया आपकी ओर से, अब रेखा जी पर। ओके, आप
1: कोशिश करूंगी।
0: हालांकि आपने रेखा जो अमिताभ जी पर गाना गाया, फिर भी हम आपके लिए एक और धुन बजाते हैं जो रेखा पर आधारित है। बड़ा ही आसान है, 80s का गाना है।

आशा जी रहम जवानी पर खाऊं कैसे। क्या बात है, क्या गाना आपने गाया है, सचमुच ये गाना बहुत

0: चलिए पहचाना।
1: अपने अपने से लगे हमें, जब देखा पहली बार तुम्हें, दिल में ये समझा हम करते रहे हैं प्यार तुम्हें अपने अपने से।
0: क्या बात है आशा जी, 80s हो 90s हो 70s हो सब में आप माहिर हैं, आपने
2: इसीलिए
0: तो
2: कहते हैं ना जुड़ना चाहिए रेडियो के साथ हमेशा।
0: बिल्कुल, जैसे कि आशा जी करती हैं। तो आप लोग भी अगर ऐसे ही गाना चाहते हैं, झट से पकड़ लेना चाहते हैं, तो रेडियो सेट के करीब आ जाइए प्लीज। और
1: सुनते रहिए अंताक्षरी हर बुधवार को।
0: वेरी गुड, धन्यवाद आपको, बाय बाय आशा जी,
2: बाय बाय। और यहाँ पर क्या, हाय सुनीता, हाजन अनिता, ओके आप सबको हाय,
0: हाय और हेलो,
2: हाय और हेलो। चलिए यहाँ देखते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी।
3: नमस्ते रोशन जी, नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते हाईलैंड्स की देवी जी, कैसे हैं आप?
3: ठीक हूँ।
0: ठीक है ना?
3: हाँ।
0: ओके, तो अगर ठीक है तो अमिताभ जी पर गाइए।
3: हाँ
0: गाइए।
3: मैं

0: दो पल मेरी जवानी है। हो गया।
1: सचमुच ये गाना बहुत ही सुंदर सा गाना था देवी जी,
0: हाँ जी,
1: बहुत धन्यवाद इसके लिए।
0: ठीक
1: अब
0: है।
1: आपके लिए रेखा जी पर ये गाना हो जाए, धुन सुनिए आप।
0: ओके।

0: जी देवी जी।
1: हंसते हंसते कट जाए रसते, हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।
2: खुश मिले या गम बदलेंगे ना हम,
1: दुनिया चाहे बदलती रहे। थैंक यू इंडिया।
0: क्या बात है देवी जी, आप भी बनती हैं स्टॉप द वीक। बहुत धन्यवाद आपको, बाय। 5:45 और 10 मिनट है आपके पास। 4028085 पर फोन करें। और टिकटॉक पर किसने टॉक किया?
2: आयशा है। आयशा और आयशा हमें बोलती है चाइनीज डॉल।
0: मैं तो मैंने
2: और
0: सुना
2: आपको
0: था,
2: बोला है हैंडसम गाय।
0: ओ गाय, हाँ। लेकिन मैं तो सुना था जापानीज डॉल, लेकिन आप तो चाइनीज डॉल निकल गई।
2: हाँ, जापानी से चाइनीज कैसे बन गई मैं?
0: लेकिन मैं तो क्या करें, अब चाइनीज डॉल इतनी अच्छी गाती है हिंदी में।
2: और शोभा जी भी ने सही जवाब दिया है। और यहाँ देखते हैं कौन है
0: लाइन पर।
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो,
0: हेलो
3: हेलो हेलो, रोशन और उषा जी।
2: नमस्ते आपको, कैसी हैं?
0: ठीक
3: हाँ। प्यार भरा नमस्कार।
2: प्यार भरा नमस्कार हाँ। आपको
0: और हाँ। आपके लिए हंसी भरा नमस्कार। चलिए कविता जी गाइए प्लीज। हाँ। अमिताभ बच्चन जी को याद करके आप गाइए।
3: मुझे पता नहीं है किसी ने गा लिया या नहीं, पर मैं घर पर नहीं थी।
0: ओके

0: ठीक है ना?
1: जी हम ठीक नहीं कहेंगे, पहले ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया आपको। और ये गाना दोस्ताना फिल्म से लिया गया था ना? ओके
0: हाँ,
1: अब देखते हैं कि आप रेखा जी पर ये धुन पहचान पाएंगी या नहीं। ओके सुनिए, बहुत आसान सा है।

0: होते, अगर उषा और अफरंजी नहीं होते तो जीने की चाहत नहीं होती।
1: ओह सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट,
2: थैंक यू,
1: बहुत धन्यवाद कविता जी, आपने भी पहचाना।
0: धन्यवाद आपको, आप दोनों को
1: धन्यवाद, बन गए हैं आप स्टार ऑफ द वीक। सचमुच उषा जी, अगर ये अंताक्षरी प्रोग्राम न होता तो क्या होता?
2: यहाँ पर हमें बोल रही है, अच्छा आयशा ने कहा है नो चाइनीज इज यूनिक, और मामी ओपेरा कुकु,
1: मामी ओपेरा
2: सीसी मींस कुकु, ओके। और आकाश चेतन मनसो कब क्या बोल रहे हो, गौसों सा कौन, किसका बेटा है?
1: अंशु
2: पता नहीं कि वो किसके बारे में बोल रहे
1: अच्छा।
2: हैं। चलिए हम देखते हैं कौन है।
1: हेलो नमस्ते, हेलो हेलो जी,

0: चलिए एक श्रोता है यहाँ पर,
1: हाँ सुन लेते हैं उन्हें। हेलो
0: हेलो
1: हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी, उषा जी।
1: नमस्ते मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ।
1: ठीक तो होंगी आप, क्योंकि अंताक्षरी प्रोग्राम है।
2: हाँ आज तो अंताक्षरी है।
1: तो चलिए अंताक्षरी प्रोग्राम में मीनाक्षी जी क्या गाएंगे अमिताभ जी पर?
2: एक कुमार शानू का गाना।
1: अरे वाह, 90s, फिर भी 90s। चलिए
2: किसी ने नहीं गाना ना, इसीलिए।
0: हाँ जी
1: गाइए गाइए।
2: दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आही भरता है, कहने से क्यों डरता है।
1: जी हाँ, बहुत सुंदर सा सूर्यवंशम वाला गाना आपने गाया है।
2: जी हाँ,
1: हाँ जी, लेकिन आप डरती नहीं है गाने के लिए, हालांकि डर है इस गाने में। अब आपको डरा देंगे हम।
2: हाँ,
1: अब आपको डराएंगे
2: की तरह
1: नहीं जी, हमेशा की तरह क्यों। चलिए अगर आप ये गाना
2: मजाक
1: करें, अगर ये गाना आप पहचान नहीं पाएंगी तो उषा जी नाराज हो जाएंगी, क्योंकि इस गाने से उनको बेहद प्यार है। चलिए सुनिए सुनिए।
2: जी हाँ जी।

0: जी
1: एंड
0: याद आया,
1: 80s का गाना है ना।
0: 80s का गाना है बिल्कुल।
1: हाँ, आपकी आंखों में नहीं
0: आप कि नहीं जी, ये तो
1: नहीं
0: ये नहीं है,
1: ये
0: कोशिश करें। ओ
1: वो इन आंखों की मुझे
0: नहीं,
1: नहीं मालूम।
2: छोटी सी कहानी सी बारिशों की
0: ओके
2: पानी से
0: सारी
2: सारी
0: वादी
2: वादी
0: भर
2: भर
0: गई।
2: गई।
0: ला ला ला
1: कोई बात
0: ओ कोई बात नहीं, 90s से 80s तक आते हैं तो आप हिचकिचा जाती हैं ना। कोई बात
1: इतने
0: नहीं,
1: गाने उनके लिए बाप
2: इसीलिए हम
1: रे।
2: कहते हैं ना आपको सिर्फ 90s के गाने नहीं सुनना, पुराने
1: सुनती हूँ लेकिन बहुत गाना है ना यार।
0: बहुत गाना है बिल्कुल यार। ओके धन्यवाद आपको, बाय।
2: ओके बाबा।

0: चलिए इजाजत फिल्म का गाना है रेखा जी पर, और ये प्रोग्राम आज का बहुत ही मस्त जबरदस्त रहा रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी पर। और चलते चलते ये तो समाप्त हो गया और हम बढ़ेंगे उषा जी की ओर, क्योंकि हमेशा एक गाना गाती हैं और बहुत से मांग आई हैं कि मुकद्दर का सिकंदर वाला गाना उषा जी गाए आपके लिए। प्लैनेट फॉर्मा जो ट्रियोले में और पोर्ट्रिस में, उन लोगों के कर्मचारी द्वारा उन्होंने कहा कि प्लीज़ उषा जी ये गाना आप हमारे लिए गा लीजिए प्लीज़। तो चलिए एक थोड़ा सा हम तब्दीली लाते हैं इस गाने में, और उषा जी हम आपसे मांग करेंगे
1: तो आपसे शुरू हम करेंगे।
0: चलिए अगर आप कहें तो तो ये है

0: क्या बात है उषा जी, आपने तो तैयार नहीं किया।
1: तैयार मैं तो हैरान हूँ, आपने एकदम से बोला कि चलो ये गाना गाने के लिए, हमने गा लिया।
0: बिल्कुल, अच्छा। और बहुत ही सुंदर रहा, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें।
1: हाँ, और आयशा ने बोला कुबूल है।
0: तो चाइनीज डोल के लिए कुबूल है।
1: थैंक यू। और आकाश, थैंक्स टू यू। कविता दुलीप, नमस्ते। जीवंती जॉय, नमस्ते टू यू, और आप सभी को जिन्होंने साथ दिया इस प्रोग्राम में।
0: जी बिल्कुल, ऐसे ही हम ऐसे दिलचस्प कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और रेडियो मनोरंजन पर कल आप भोजपुरी तड़का आप प्रस्तुत कर रही हैं,
1: 9 से 11
0: तो जरूर आपका साथ होगा, और हम आपसे मिलेंगे कलाकार के बाद प्रोग्राम में रेडियो मनोरंजन पर शुक्रवार की शाम को।
1: बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। September 29 से कोविक ऐप पर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होने के बाद से अब तक 96,039 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन क्या चालक वास्तव में इसकी आदत डाल रहे हैं, इसका जवाब इस बुलेटिन में। विश्व बैंक ने बेन में सौंपी गई रिपोर्ट में 2050 तक 6.7% आर्थिक वृद्धि के लिए 3 स्तंभों के तहत 8 कदमों की सिफारिश की। इसमें सीबी और एमपीए जैसे सार्वजनिक संस्थानों की भूमिकाओं की समीक्षा और श्रमिकों की सुरक्षा व विवाद समाधान के लिए श्रम कानूनों के आधुनिकीकरण पर जोर। मॉरिशस में लॉन्च की गई पहली अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी महाद्वीप के देशों के वित्तीय खतरे का सटीक आकलन करेगी ताकि वे गलत धारणाओं के कारण अधिक इंटरेस्ट चुकाने से बच सके और उन्हें कम दरों पर कर्ज मिल सके। मॉरिशस में प्रजातियों के संरक्षण का रिकॉर्ड असाधारण रहा है। डरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पिछले 50 वर्षों में कई प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया, जिसकी स्वर्ण जयंती

0: मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर मनाई गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से मिले विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। इन अहम खबरों को अब देते हैं विस्तार। 29 सितंबर से कोविक ऐप पर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करा दिया गया है। इसकी शुरुआत के बाद से इस सेवा के लिए अब तक 96,839 पंजीकरण किए जा चुके हैं, लेकिन क्या गाड़ी चालकों ने वास्तव में इसकी आदत डालना शुरू कर दिया है? चले जानते हैं इस रिपोर्ट में। आद्रियन वालिया, याचना मिश्रा।
1: अभी के लिए लाइसेंस की कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पहली जनवरी 2027 से चालकों को या ओरिजिनल लाइसेंस या फिर कोहेक पर डिजिटल लाइसेंस पेश करना होगा। अभी तक 97,000 चालकों के पास डिजिटल लाइसेंस उपलब्ध है। ये बहुत अच्छी बात है। जिनके पास 2-3 गाड़ियां हैं, उनको ओरिजिनल लेके नहीं घूमना पड़ेगा, एक ही जगह पर सब उपलब्ध होगा। कई लोग इस प्रणाली को अपना चुके हैं, कुछ लोग आदत बना रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, लेकिन जिनके पास इंटरनेट नहीं, सुविधा नहीं, उन्हें ओरिजिनल का प्रयोग करना होगा। इस वैन चालक के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस हर जगह न रखने के लिए वे जनवरी से पहले ही फोन खरीदने का इरादा रखते हैं। मैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बहुत जल्द नया खरीदूंगा। ये महिला चालक इस सेवा से अपरिचित हैं, लेकिन ये उनके लिए ज्यादा आसान होगा। अच्छी पहल है, क्योंकि कई लोग दूसरों का लाइसेंस लेकर घूमते हैं जो गलत है। मैं खुद लाइसेंस घर पर भूल चुकी हूँ। डिजिटल लाइसेंस ये बहुत अच्छी बात है। इस ट्रांजिशन अवधि के दौरान पुलिस अपनी कंट्रोल कार्रवाइयों के दौरान जागरूकता बढ़ाने का काम भी कर रही है।
0: विश्व बैंक ने 2050 तक 6.8% की आर्थिक वृद्धि के लिए संस्थानों, बुनियादी ढांचे और प्रोत्साहन कदमों नामक 3 स्तंभों के माध्यम से 8 कदमों की सिफारिश की है। एबन में कार्यशाला के दौरान आज सुबह सरकार को कंट्री ग्रोथ एंड जॉब्स रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट सौंपी गई है। विश्व बैंक ने सार्वजनिक संस्थानों की भूमिकाओं पर फिर से गौर करने की सिफारिश की है, जिसमें सीबी और एमपीए शामिल है। श्रम कानूनों का आधुनिक करण भी सुझाया गया है, जो श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, साथ ही विवादों को कुशलतापूर्वक हल करते हैं और रेम्यूनरेशन ऑर्डर्स को सरल बनाते हैं। अफ्रीका के लिए एक नई संस्था और इसका मुख्यालय मॉरिशस में होगा। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अफ्क्रा की आज बालाक्लावा में आधिकारिक शुरुआत की जा रही है। ये संस्था अफ्रीकी देशों, कंपनियों और संस्थानों के आर्थिक और वित्तीय स्थिति का आकलन महाद्वीप की अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करेगी। उद्घाटन समारोह में अंतरिम राष्ट्रपति होबे हंगले, विदेश मंत्री धनंजय रामफल, अफ्रीकन पीयर रिव्यू में की प्रमुख मारी अंतोनेट रोज कात्र और अफ्रीकन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद हैं। अफ्रीकी देशों की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बालाक्लावा में लॉन्च किया गया है। तो मॉरिशस स्थित ये एजेंसी महाद्वीप की आर्थिक सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर देश के वित्तीय खतरे का आकलन करने वाली है। इसका मुख्य मकसद है खतरे का सही आकलन करके अफ्रीकी देशों को कम इंटरेस्ट दरों पर कर्ज मिलने में मदद करना, ताकि उन्हें गलत धारणाओं के कारण अधिक इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़े। यासीन दिन महमूद, करुणा लालू।
2: क्रेडिट रेटिंग किसी देश या कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज को चुका पाने की क्षमता का आकलन है। जितनी बेहतर रेटिंग, उतनी ही कम लागत पर कर्ज हासिल करने की संभावना।

0: यही मुद्दा क्रेडिट रेटिंग पर आयोजित कॉन्फ्रेंस के केंद्र में रहा जो बुधवार को समाप्त हुआ। कई अफ्रीकी देशों और वित्तीय संस्थानों के मुताबिक पारंपरिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां महाद्वीप के देशों की रेटिंग तय करते समय उनके पूरे आर्थिक और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में नहीं रखती। दाउदा सेम्बेने ने कहा, कई अफ्रीकी देशों को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है। कई कारणों से जोखिम बढ़ जाते हैं, मंडी को अच्छी तरह जानकारियां उपलब्ध नहीं होती जो काफ़ी स्पष्ट हो, खतरों के आकलन कभी व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है। इसी वजह से अफ्रीकी देशों को कर्ज लेते समय अफ्रीका प्रीमियम चुकाना पड़ता है, यानी अन्य देशों की तुलना में अधिक ब्याज दर। इसी को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि अफ्क्रा की स्थापना की गई। ये एजेंसी ऐसे समय सामने आ रही है जब अफ्रीकी महाद्वीप की वित्तीय ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जीता ने कहा, मूल ढांचे कायम करने हैं, रास्ते, बिजली, पानी, ऊर्जा संक्रमण आदि, इन सब के लिए फंड चाहिए। फंड इकट्ठा करने के लिए क्रेडिट रेटिंग कर्ज को प्रभावित करती है। वृद्धि दर के रूप में 22 देशों में 10 अफ्रीका से हैं जिसकी वृद्धि दर 6.5% रही है। मॉरिशस के लिए नई संस्था के मुख्यालय की मेजबानी करना अपनी स्थिति को मजबूत करने से जुड़ा है। मॉरिशस 3 देशों में शामिल हैं जिसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड प्राप्त है। बोत्सवाना और मोरक्को भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में मॉरिशस के पास फायदा एवं प्रतिष्ठा भी है। अफ्क्रा का उद्देश्य ऐसी क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध कराना है जो अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक परिस्थितियों को अधिक करीब से ध्यान में रखे। लेकिन दशकों से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दबदबे वाले इस क्षेत्र में नई संस्था के सामने एक अहम चुनौती होगी, बाजारों और निवेशकों का भरोसा हासिल करना।
1: आज टेट हाउस रेज्यूमे 2 उच्च स्तरीय बैठकें हुई। अंतरिम राष्ट्रपति जॉन इवान रोबे हंगली ने अफ्रीकी यूनियन आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव और अफ्रीका के लिए विशेष सलाहकार से भी भेंट की। संरक्षण के मामले में मॉरिशस का रिकॉर्ड असाधारण रहा है। किसी भी अन्य देश ने प्रजातियों के इतने विलुप्त होने से नहीं बचाया होगा। इस सफलता के पीछे 5 दशकों का काम है जो विशेष रूप से डरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट द्वारा मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और मॉरिशस के अधिकारियों के साथ मिलकर किया गया है। डरेल ने द्वीप पर अपनी उपस्थिति के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मंगलवार को ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आवास पर मनाया। मॉरिशस में बेघर होने का मतलब केवल छत का नहीं होना ही नहीं है, इसका मतलब असुरक्षा, हिंसा और अलगाव का शिकार होना भी है। ये एक ऐसी वास्तविकता है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। विश्व आवास दिवस और विश्व बेघर दिवस के अवसर पर पास्कल संगठन ने रहने के लिए उपयुक्त व्यवस्था और समाधान की मांग की है। अनाबेल वुल्बिया, याचना मिश्रा।
2: पुरुषों के लिए 3 रात्रि आश्रय केंद्र, लेकिन महिलाओं के लिए एक भी नहीं। एसोसिएशन पास्कल के अनुसार स्थिति के कारण दर्जनों महिलाओं के पास शरण के लिए कोई विकल्प नहीं। कुछ महिलाएं हिंसा से खुद को बचाने के लिए अस्पताल की बेंचों पर रात गुजारती हैं। कुछ अन्य समुद्र तट पर कभी कभी अपने बच्चों के साथ टेंट लगाकर सोती हैं। संगठन के अनुसार 38% बेघर महिलाओं की उम्र 25 से 35 साल के बीच है, जबकि 30% महिलाएं 18 से 25 साल की हैं। इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए आश्रय से निकलने के बाद सीधे बेघर ही हो जाती हैं। हम 3 साल से एक शेल्टर में हैं। अकेले बच्चे के साथ घर का इंतजाम करना इतना आसान नहीं होता। घरेलू हिंसा के बाद मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया और पास्कल के पास जा पहुंची। पास्कल महिलाओं के लिए एक आपातकालीन आश्रय केंद्र बनाए जाने की मांग कर रही हैं, जो दिन के समय भी उपलब्ध हो और जहां सामाजिक सहायता मिले। हमने मंत्री को औपचारिक पत्र दिया। हम मंत्रालय और पास्कल के बीच बातचीत की मांग कर रहे हैं और बेघर महिलाओं के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाए जाने के लिए सहायता मांग रहे हैं।

0: लेकिन आवास का मुद्दा केवल बेघर होने की समस्या तक सीमित नहीं। आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार इस समय 52,000 से 55,000 लोग आवास की प्रतीक्षा में हैं। इनमें एक प्रस्ताव यह भी है कि स्थायी आवास मिलने तक लोगों के लिए ट्रांजिशन हाउस यानी अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाए। मंत्री बताते हैं, आवास मंत्रालय और NHDC आदि के पास कुछ जमीन है जहां करीब 30 कंटेनर घर डाल सकते हैं। मेरी यही उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में ये साकार हो। मेरा मकसद है ट्रांजिशन होम कायम करना, जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रियाएं तेज करना और शेल्टर में रह रहे लोगों को गंभीर मामले के रूप में दर्शाना, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम कर रहे संगठनों के लिए आपात स्थिति केवल सर पर छत उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। जरूरी ये भी है कि सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों को एक सुरक्षित वातावरण मिले, उनकी गरिमा वापस मिले और धीरे धीरे वे समाज में फिर से अपनी जगह बना पाएं।
1: सेशल्स में आयोजित 15वें क्लाइमेट प्रेडिक्शन फोरम में ये जानकारी दी गई है कि ट्रॉपिकल में स्थित देश एलनीनो के परिणामों का सामना कर रहे हैं और दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र के लिए आने वाले महीनों में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि और चक्रवाती गतिविधियों में कमी देखने को मिल रही है।

0: संरक्षण के मामले में मॉरिशस का रिकॉर्ड असाधारण रहा है। किसी भी अन्य देश ने प्रजातियों के इतने विलुप्त होने से बचाव नहीं किया होगा। इस सफलता के पीछे 5 दशकों का काम है, जो विशेष रूप से द रॉयल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट द्वारा मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और मॉरिशस के अधिकारियों के साथ मिलकर किया गया है। द रॉयल ने द्वीप पर अपनी उपस्थिति के 50 वर्ष पूरे होने पर का समारोह ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आवास पर मनाया। सगा उनो करुणा लालू।
1: मॉरिशस को दुनिया के उन देशों में माना जाता है जिसने किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने में सफलता हासिल की। इस सफलता की प्रमुख हस्तियों में से एक है प्रोफेसर कार्ल जोन्स। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में उनके योगदान के लिए इस वर्ष उन्हें ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के सम्मान से नवाजा गया।
2: फॉर द नेक्स्ट 100 इयर्स इन मॉरिशस एंड वी'ड लाइक टू सी दैट expanded into regional capacity as well. And we also work in Madagascar and we've done some work in Comores. But Mauritius has been our greatest success story. There are lots of threats, of course, there always will be. But what we've done is to learn how to restore what's there, and provided we have protected areas, and of course we can save species on islands. But of course we've got to control, or we've got to direct development in a way that doesn't cause damage.
1: ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट की पहल से मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की स्थापना हुई। आज संस्था सरकार और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर मॉरिशस की प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए कार्य।
3: 1984 ड्यूरल et des autres, je dirais comme ça, qui bien forme une association mauricienne, une ONG mauricienne pour faire de la conservation, faire de du lever de fonds, faire training, et c'est là qu'est créée la Mauritian Wildlife Foundation, 42 ans de cela.
1: इन साझेदारियों को मजबूत बनाए रखना ड्यूरल के रणनीति का अहम हिस्सा है।
4: The work of conservationists is more important now than ever before, but you can't do it alone. It's all about collaboration, teamwork, real grit and determination, and of course the money to make it happen. So I would say everyone has a role to play in conservation and in the successes of conservation.
1: लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है।
5: Plantes, reptiles, bons oiseaux qui nous contentent, guides qui bien se lient, tout cela, les bien évidemment insectes plus graves si elles vivent. Donc vous pensez, the next step c'est get un coup de bien ben c'est qui niveau threatened été
1: Mauritius में ड्यूरल के संरक्षण अभियान की शुरुआत के 50 साल बाद भी लक्ष्य वही है, ये सुनिश्चित करना कि मॉरिशस की कोई और स्थानिक प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त न हो।
0: सरकार पर्यावरण अनुकूल परिवर्तन के अपने रूप मैप में तेजी लाना चाहती है। स्थानीय बायोमास उत्पादन की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी की

0: पहल पर इस सेक्टर के सभी प्रमुख साझेदार एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक साथ आए 2035 तक हमारे ऊर्जा मिश्रण में 60% अक्षत ऊर्जा हासिल करना है।
1: हमारे स्थानीय बायोमास के इस्तेमाल के लिए ठोस समाधान ढूंढना मॉरिशस की इंडस्ट्री अथॉरिटी MCIA की ओर से पहल की गई है और इसके लिए यही अहम मुद्दा। गन्ना प्राधिकरण की तरफ से ईख के एक गन्ने की एक नई किस्म प्रस्तावित की जा रही है ताकि देश के ऊर्जा ट्रांजिशन में ये सहायक सिद्ध हो। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुमन सिरतन ने कहा, बहुत से ईख के खेत त्याग दिए गए थे। 4 वर्षों की एक बड़ी परियोजना है जिसके तहत 1500 हेक्टेयर त्यागी हुई जमीन पर फिर से खेती की जाएगी। ऐसा करते हुए मौका से फायदा उठाते हुए क्लासिकल वैरायटी की तुलना में अधिक फाइबर वाले किस्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गन्ने के संबंध में गन्ने के पत्तों को भी जमा करने की बात शामिल है। कुल 500 गीगावाट से 2030 प्रति घंटे तक का लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन इस ट्रांजिशन में केवल गन्ना ही नहीं है, एक अन्य अहम मुद्दा भी है, वो है हमारे जंगल। कृषि उद्योग मंत्रालय के फॉरेस्ट कंजर्वेटर पूजन राज खरन ने कहा, उद्देश्य है अनुकूल पेड़ों के साथ फिर से जंगल को व्यवस्थित करना ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की योजना पूरा कर सके। प्रतिवर्ष 100 टन लकड़ी है अभी। इन दिनों सरकार ईख के पत्तों और बायोमास के लिए ₹3.50 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से पैसे चुका रही है। बिजली के स्वतंत्र उत्पादक इस टैरिफ के बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बिजली के इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के प्रवक्ता ग्रेगोरी बाथफील्ड ने कहा, इससे आयात की जाने वाली ऊर्जा पर कम निर्भर होंगे जो कि मुद्रा के हिसाब से ज्यादा महंगा है। अभी दाम पर गौर करने की दिशा में काम कर रही है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। स्थल की हकीकतों के चलते कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेट व्यावहारिक होना चाहते हैं। स्थानीय उत्पादन काफी नहीं होगा। 9 वर्षों में 60% मिक्सर एनर्जी तक पहुंच पाने के वास्ते बायोमास आयात से नहीं बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा,
2: बागास इन एन रोल बियन अपोर्टर अवेक लेज बायोमास।
1: अन्य बायोमास की तरह बागास की एक अहम भूमिका है। MCIA का एक शेड है जिसे परिवर्तित किया जाएगा। सख्त सैनिटरी नियम है, एक तरफ ईख के गन्ने होंगे तो दूसरी तरफ बायोमास, और कोई विकल्प नहीं। धीरे धीरे बायोमास बढ़ाएंगे तो आयात कम करेंगे। इस ट्रांजिशन से स्पष्ट संकेत, रेजवी में बायोमास के लिए समर्पित एक प्रयोगशाला का उद्घाटन जहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण किया जाएगा। जहाँ तक वार्ता की बात है तो बहुत जल्द सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि स्थानीय शाखा की आर्थिक एवं लॉजिस्टिक आर्बिट्रेशन निर्धारित हो, जो कि मॉरिशस के लिए ऊर्जा संबंधी रोडमैप के लिए अहम है।
0: विदेश स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सन 2001 अक्टूबर 7 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले श्री मोदी ने बुधवार को सरकार प्रमुख के रूप में अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसके दौरान श्री मोदी ने अपनी राजनीतिक यात्रा में जनता से प्राप्त विश्वास को सबसे बड़ी ताकत बताया है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
3: पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहेगा। कल सुबह भी पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, जबकि दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों, दक्षिण पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरा सकते हैं। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पूर्व में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19, अधिकतम 30 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 5:45 बजे,

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे लुजोविक, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।

Çok zaman çarşuni. Quand Bulbaru de chemin grenier, Satatara Salki, 77 years old, Shimati Baswanti Sarcharan, Shimati Baswanti Sarcharan, Kimritu Hokai, Pedaish Nam Jagu, Logunhe Basanti Kinamse, Adhik Jantiti Unkirti, Aj Dinked High Baje, Balki Kala, Guruvarko, Dinked High Baje, Unkipati Rishi Sarcharan Kimakan, Shemagonese, Uthakaran Tim Sanskar Kili, Kongupal Shamuni, Kishum Shandhumi, Jaigi Cremation tomorrow at 2:30 PM. Sanatan Road, Mayburg, Me, Sanatan Road, Mayburg, Me, Sar Satar Salki, 67 years old, Ki, Vasanti Ramphal, बसंती रामफल की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें सरदा के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थे कल गुरुवार को सुबह के 10 बजे उनकी बेटी बालगोबीन राम के मकान सनातन रोड मीबक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तुम्ब मीबक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. महात्मा गांधी रोड लोशे तेरूश में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की जसोदा रंगलोल की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें बसंती के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज दिन के कल गुरुवार 8 अक्टूबर को दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे रंजीत रंगलोल के मकान लोशे त्यागोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशा त्यागोश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM. रॉयल रोड बुले रूज सेंट दे फ्लैक में 57 साल की बल्कि 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड के श्री रामाराजन कुलन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें विलासन के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले पुलिस सर्जन थे. उनकी अर्थी आज दिन के कल गुरुवार 8 अक्टूबर को दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान सौंदर्यफ्लक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

0: से भी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। गुरुवार 8 अक्टूबर सुबह के 10 बजे से लेकर दिन के 4:30 बजे तक सैंखवा में और आसपास के इलाकों में रुतबा सैं नंबर 1, नंबर 2 और लेकोनू में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और गुरुवार 8 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 3:30 बजे तक मौसम अनाफी कॉन्फ्लक में और आसपास के इलाकों में एवेन्यू मुलें कासे, एवेन्यू दे ट्विट, एवेन्यू दे मार्लिन, एवेन्यू दे मेरू और एम्पास बेकुन में। और गुरुवार 8 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:00 बजे तक लावांचे और आसपास के इलाकों में विलेज हॉल लेन, शिवाला लेन और रूट रॉयल लावांचे में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना लिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: 正在收听的你，大家好，很高兴又能见面了。今天是由我张大卫继续陪伴大家听歌。今天的音乐时光，希望可以陪伴你度过温暖的时刻。

如果您刚刚才打开收音机，欢迎您，我们正在播放今天的歌曲节目。

see it. Go see it.

节目仍在进行中，让我们继续享受这些音乐。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। तो चलिए रात्रि के हम सफर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में हमेशा की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत हम कर

तो चलिए आज हम अपने मन में एक संकल्प लेते हैं, निष्ठा से कर्म करेंगे, श्रद्धा से प्रभु को याद करेंगे और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं ज्ञान के बारे में। किताबें हमें जानकारी देती है, लेकिन जीवन हमें अनुभव का ज्ञान देता है। दोनों मिलकर इंसान की सोच को समृद्ध

लगती है और कहते हैं कि ज्ञान आँखों को नहीं दृष्टि को खोलता है, यह हमें वही दुनिया एक नई समझ के साथ देखने की क्षमता देता है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। तो आइए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का जो है समापन हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि। श्रोताओं, भजे प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे श्रोताओं, ज्ञान हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाता बल्कि समझना और सही निर्णय लेना भी सिखाता है। तो आइए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का जो है समापन हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

श्रोताओं, भजते प्रभु का नाम। हम बात कर रहे हैं ज्ञान के बारे में। ज्ञान वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार से सही राह दिखाता है। जिस मन में ज्ञान का दीप जलता है, वह ब्रह्म की जगह विवेक जमने लेता है। तो आइए, ये अगला भक्ति गान इसे आप जरूर गाए, गुनगुनाए हमारे साथ।

श्रोताओं, भजरे प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे श्रोताओं, ज्ञान हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाता बल्कि समझना और सही निर्णय लेना भी सिखाता है। तो आइए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का जो है समापन हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

0: بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़रत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं।
1: बलगल उला बे कमाल ही, कशफा दुजा बे जमाल ही, हसुनत जमीयो खिसाल ही, सल्लू अलैहि वालिहि। मौजिज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शहरत याफ्ता नातख़्वां अलहाज खुर्शीद अहमद शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मुख्तलिफ शोरा का कलाम पेश करते हैं और इनके हमनवाओं में जनाब मोहम्मद मोइन खान कादरी, जनाब ग़ुलाम यासीन कादरी, जनाब शफीक अहमद वारसी, जनाब अब्दुल नईम खान सहर, जनाब शफीक अहमद, जनाब रशीद अहमद कादरी और जनाब सलामत अली शामिल हैं। इस कैसेट को पेश करने की सआदत हासिल की है ईगल कैसेट कंपनी ने।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस मुख्तसर बज़्म में हम्द व नात का आगाज़ कुरान की तिलावत से करने जा रहे हैं। ये वो अजीम किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है।

0: घड़ी मिला ये वक्त मॉरिशस में रात के ठीक 9:10 हुआ था। तू सुन तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: On the hour, every hour, Radio Marches.
5: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमर, धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
6: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
0: रेडियो के सुनेला सब संग चालो के आज प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह MBC रेडियो मॉरिशस और MBC रेडियो मनोरंजन चैनल सबको स्वागत कर रहे थे जब भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आज बुधवार की रात, बुधवार 7 अक्टूबर 2024। अभी से लेके रात के 11 बजे तो रमन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वन दबैया का जगोदेव विद जगोविद सैंक या फिर हमने के टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज और हमने के देखिया और अपन SMS विदा करिया। और अभिषेक बुधवार की रात, गमट की रात, चलो के संगे संगे पहल का गाना हंगामा, गीता गजाधर की गावल गीत और गीतों हमने चलावा थी। सर ये सब श्रोतालों के नाम आप हवन विक, तेज सनातन, विशाल, तनुजा, जैन, माफ करिए, विमला, लक्ष्मण,

फिर जया निज़ाम बहादुर, देवीन अंजुलि सिनोरिटा, विमला लक्ष्मण, सिमला मनुदा, ऑलराइट, जाम रानी अनिता प्रताप, सुमन जलसा ग्रुप, पदम अधिकारी सत्यवंत सिंह, विष्णु एंजल, निशा समीमा, कात्सरंभा बानी, फिदू मिन्यांदी, रिसोल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, रजनी शिवदन, शोभा और राजन, रायान, मिसेस श्रीनाज, अलगू रवीन, उमा यादव, शशि तुलसी, करुणा बुधन, पूजा धनी राव, प्रिया अक्षय, सुमन राय, शिवमा महरली, अगला गीत तोहर खातिर, श्यामा महरली, सोनम रामचरण, मिदुन नमस्ते जी, और सोनम रामचरण खातिर भी जो बहुत प्यार से ही सब श्रोता लोग हमने की सुनता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज हमने की दिखाता हूँ सर, तो जितना कोई रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन सुनता है गीत तो लोग के नाम गीता गजाधर की जुबानी हंगामा है गीत, चली सोनम रामचरण खातिर और जियाद मंगरू के नाम, चले एक साथ सुने है गीत तो

हंगामा ही हंगामा, धूम मचल बस, सब कोई नाचा था गावा था उनके संगे संगे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। ये प्रोग्राम से रोज रात के लेंदी से लेकर दिमाग से रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन एमबीसी की दोनों रेडियो चैनल पर। अब संगे चलो आज के दिन कैसे रहल। आज के दिन तो एकदम बढ़िया रहल, मौसम तो बड़ा प्यारा रहल, ठंडा ठंडा कल ही रहल पर मौसम एकदम चकाचक। और जब दिन अच्छी तरह से बीते तो रात भी अच्छी तरह से बीती हमने के संगे संगे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। अगला गीत दिन तनाना दिन ता राजीव राजीव मंगर गीत आ गए ले वन। और एक गीत हम चलावती इस श्रोतालु के नाम ये संग चालु हमने के संगे जुड़ल होवन जा ए आप होवन जा ओके विक्रम नायक मधु विकास टीना मुरुगसन गीतोर नाम यूसुफ गिनु प्रियंका राय विक नकुल पैथ्रिक लिजेट वरुषा जग्गू विज कुनाय और सरोज निमोहर साहिल फी फिर है गीत चली विमला क्वेज दुमा अनुक्सा सियू हाँ श्रद्धानंद लक्ष्मण दनाबाई माला देवानंद शंकर बीना सिंह हेशा टोनी वेलु देवीना सिशंकर कृष्ण विसन साहब बिस्वानी झमू सैरा दाहू है गीत अब्दुल और सैरा बानु खतीर नीता हंसराज भी उनके साथ जुड़ल बा। तो चला है अगला गीत सुनब जाए एकदम चकाचक गाना दिन ता ना ना ना दिन ता।

0: और चुन चुन के पीवा तू भी मजबा रूप बनैया, मजबा ऊ पीमा बे या पीमा गूज, हरा पीमा या लाल पीमा के मजबा रूप जोरी से बना दिया और बड़ा मजेला केला खाई के। और जब खान पान की बात करती सर, तो आजकल पूजा पाठ चलता हर घर में, मंदिर में गोविंदन पूजा, वेंकटेश्वर पूजा की तैयारी और नवमी की तैयारी भी हुआ था। और आज रात के खाना खजाना सेक्शन में कौन व्यंजन दियन, आशा जी चलो कर से मिला जाओ और वो बताइए कि अभी कायम के लिए बात कौन चीज हमने के प्रस्तुत करियन जा। हेलो
1: हेलो, नमस्ते प्रताप जी।
0: जय माता दी।
1: कैसे बा समाचार?
0: जय माता दी, हम ठीक हैं, तू कैसे हुआ?
1: हम ठीक हैं प्रताप जी, और सभी श्रोतालुगन के आशादानी की ओर से सादर नमस्ते, बड़े जन के सादर प्रणाम, और आए होला नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को के बोला जय माता दी।
0: जय माता दी। और आज कौन का सद देवता हुआ?
1: हाँ, जैसे कि 11 तारीख से नवरात्रि शुरू हुआ जाते है, तो ऐसे तो देवी मैया के हर दिन अनेकों प्रकार के भोग चढ़ेला, खास तौर पर जब हमें खीर पूरी पकाए ला जा, तो विशेष रूप से हमें रोट लड्डू डाली ला जा। तो आज हम आप सबके बतावब कि रोट कैसे तैयार करके।
0: रोटो जिनकुल

0: The fifth thing, Aragoban. The quinoa del ba, the quinoa ki pisi yo.
1: Quinoa ki yo mixa me pisi ki.
0: Mixi me teni.
1: Tau disa fani de hela cha aro ki pisi ki.
0: The aza ka hai tasun pisi ba, da me jab rotwa ki kei ba, da o chini chini me teni hai chini ane lehi. Khub oka sange, o toa me.
1: Samajai.
0: Samajai. Da jab pisi ba, da oka swa dusse hui da. Da quinoa ki aap pisi diya cha. Tab koko rakpe wo dal diya cha. Tab sab suk ar jab hai sab milai ba, da ghiw dal ba, da ghiwa ke tigra ke dal diya cha.
1: निमन से टिगरा दे के चाहे तब घीवा डाले के कौन घी डाले के जन भारत से बा कि मॉरिशस में कोनो भी घी सबसे डाले
0: कोनो घी जैसे आप के जी क्लास ऑफ घी बा विटा घी बा वनस्पति बा कोनो
1: चाहे तब घीवा डाले के कौन घी डाले के जन भारत से बा कि मॉरिशस में कोनो भी घी सबसे डाले नाम नहीं बोला अभी रिक्लाम हो लगी देखकर अपन अपन पसंद के जी के स्वाद को से अब है ना सुना अब हमारे घर में लेकिन गरीबा घर के बगल में या हमारे आंगन में लेकिन गरीबा गाय बात हम सका टटका घी बना के रोटवा तैयार करें
0: जैसे तार इच्छा अनुसार जैसे तारा अच्छा भुजाए दाल चल समो तनी सुन तेजा के दब ता उ औसा संगे जब सन बना एगो खुशबू वाली खुशबू दी
1: गम गम
0: संगे सुखा सन या आगे ओके खूब सब जितना तारा बोलनी है सब संगे मिलेगा औसा में जमे दूध ओकर इलायची बादाम कुकुरा पे घी तब निमन से सुखरे हाथ से चला चला के निमन से मिला दिया तब साने बेटे गरम पानी में रे से दूध डाल के मिला तब दूध पनिया से तब सनिया सादा पानी से नहीं सनिया जा सनबा जाता दूध पानी से सनबा जा ऐसे रोता उन नरम रहना भीतर फोड़ नहीं हो जाना जब सदा पानी से नहीं सनिया जा गर्म पानी में दूध डाल के जब दूध पनिया से सनबा जा तब भीतर फोड़ हो गया तब जल्दी से सान दे बज खूब लिमन से अच्छे तरह से लिमन से के सान दे बज तब औंता तब में लिमन से समा जाए खूब जैसे रोटी के एक जो बना दे वेला जब नरम हाथ से लिमन से कुछ लिमन से ऐसी करके मिलों से करके तब लिमन से ओके एक दो लियन तैयार कर लिया जब तैयार कर ले पर तो ओके आधा घंटा चली छोड़ दिया जब पोसे हो दिया जब तुरंत ही ओके गोल गोल नहीं बनेगा जब ओके
1: ओके चला सुन ठंडा हो जाएगी
0: हाँ तनी सुन ठंडा हो जाए बजा और तनी सुन जितना तनी पोसे रहेला ना उतना अच्छा रहेला तुरंत ही ओके गोल गोल नहीं बनेगा तो आधा आधा घंटा बीत जाए तब ओके पिटी पिटी तोड़ के एगो गोल गोल बना दिया जा जब सब बना दे बजा गोल गोल तब कढ़ाई में घी चढ़ा दिया जा काहे के देवी माँ के भोग लगेला तो घी में तरल जला
1: हाँ इतना बात है
0: हाँ घी में तरल जला तो घी वातनी ढेर ओके गरम नहीं हो दिया जा तनी देख बा धीमा आग में तनी तनी गरम होकर तो थोड़ा थोड़ा करके अपन जन बनाए ले हवा गोल गोल रोल ओके धीमी आंच में चलाया तरिया तारे
1: तारे की चला धीमा आग में तारे के ढेर बड़ा जोर आग में नहीं इतना जल जाए ओके बीते चाहे निमन से पके देगी ना बीते निमन से पके देगी चाहे ना
0: तो जितना धीमा आंच में पके बा तो उतना भीतर सीधी इसे कंचा नहीं लगी सीधी तब क्षमा करिए तब एक वो ब्राउन जल्दी ब्राउन कलर हो जाए तो अपन रोट के निकाल दिया
1: ये गोल्डन ब्राउन हो लगी तो निकाल के जनबा तरागल तो हर रोट
0: तरागल जनबा तरागल एक वो जल्दी गोल्डन ब्राउन कलर में ओके निकाल दे बस तत्तर आ जाए तत्तर हर रोज तैयार हो जाए
1: और ता एक सिरो में नहीं डाले के है नहीं
0: नहीं नहीं नहीं है सिरो में नहीं डाले के है सुखल जब तार दे
1: बस सिरो में डाले तो रसगुल्ला हो जाए
0: तब तो रसगुल्ला हो जाए ओके ऐसे सुखल छोड़ दे बस तब जब खीर पूरी में लड्डू

0: चढ़ेला ताहे रोटवा जो ना फ्रिजर में रख मतलब कितना दिन तक बरके
1: फ्रिजर में से तो उस जाने लाना प्रताप जी फ्रिजर में नहीं वो दलबा ऐसे नहीं तक बरके
0: एक बड़ी से राजा ना एक बड़ी से राजा
1: नहीं एक बड़ी से नहीं एक दूसरे में देख रहा है बस कहे कि वो मैं घी डाला बना

0: तो ई खीर पूरी आर प्रसाद जी साथ में जब अब पान के पत्ता में जाए रहे नव दुर्गा के नव रूप के माँ के चढ़ाए रहे न तो आशा जी अगर चंदीरामनी के व्यंजन खाना खजाना सेक्शन में बहुत बहुत धन्यवाद अभी श्रोता लोग जो कोशिश नहीं कर ले पहली बार बने सर तो लोग जनियन सर रोट कैसे बनाएंगे जय माता हाँ दी
1: जय माता दी और आप सब के बोलते हैं जय माता दी अम्बे माता की कृपा आप सब के परिवार में ऐसे ही बने रहे
0: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी रलन के व्यंजन दिलन की रोट कैसे बनेला रात की 9:40 हुआ था अगला गीत जल सब एल्बम से नहीं सर गीत शीर्षक है होशियार बा और एक गीत चली सिंह के नाम पामा मनी नवीन शाह रघुनंदन सुजन माला गोपाल भायाबू कल्याणी रामनाथ इंदिरा शिवचंद नानी विजय फिर सुमिला पीरू इमरान इंदिरा राजेश शुगर जी के नाम भी मिसेस बटरफ्लाई नाजदास लेडी जागो शिवचंद नंदिनी गणेश वरुण जॉन पास्कल तेज सिमसिमी सपना धनु अंजल साही शर्मिला गंगा प्रसादो किम सुनिचरा देव मी जयवंती बिपत इंदिरा राम सोहक रघुनंदन प्रेमचंद जुमू नरगिस नौबत शिवचनान इंशिका केशर भात्रीस पा कासम तम लवना फिर आशना नारायण मुक्ति उम्मे सलमा सिंथिया बोजराज प्रीति राधिका पूनम अनत शालिनी विद्यानंद गोपा लवना लवना के ओसों का प्यार विकास और सब बिगू परिवार विकास बिगू बिगू परिवार और फोन जिसाक यूदी बेबीलोन जो डाल्टन धर्म शिवा पूनम प्रियंका राय राजेश जूतन सिउच नंदिनी उमा मैं आध्या गोकुल मनीता रवीश लतीसिया सरस्वती सिरा परगा शारदा दिलीप मंदा इंद्रानी दामरी संता कैटरीना माधवी नाश इस्माइल आशा अनिल कुमार शबना हुसैन नजीब और वर्षा के नाम तो चलो एक साथ सुने है गीतवा होशियार बा कविता की आवाज़ में

औलाद खातिर इंसान कुछ नहीं करेला, मस्जिद मंदिर कोविल जाला सगरो माथा टिकेला ताकि औलाद हो, और जब औलाद नहीं रहेला तो इंसान दुखी हो जा रहा कह के दिखेला सब कोई की औलाद बकर औलाद नहीं बा। तो संतान खातिर पूजा पाठ होला, बड़ा बड़ा डॉक्टर लगे लोगन जाला, और औलाद के सुख जुन है जिन सुख है तो जकर औलाद बा वही जानेला। अब जोन कपल बा शादीशुदा कपल अगर लड़का नहीं होता, डॉक्टर बोल दिले है कि कोनो समस्या बा या तो पति या पत्नी या दोनों में कि लड़का नहीं सकी हो, तो एक ही मतलब नहीं बा कि दुनिया के अंत हो गल। थे कोई अडोप्शन की ओर भी जाला, फिर कोई जाला अडोप्टी करे चिबाबा के, या फिर कोई दूसरा देश जाला वहाँ से चिबाबा देश फिर कोई जाला भारत वहाँ से लड़का आने लन सा और लड़का के आन के पोसे लन सा। तो लड़का के अनब अडोप्टी करबा तो लड़का तो हर मानिया में आए हों कि नहीं। तो जोन कपल लड़का नहीं सकता करे निराश नहीं हो कि चेहरा ढेर मना ऐसा सीध में इंटरनेट में जहाँ पर सकबर तो लॉग इन करे और अडोप्टे करे। मॉरिशस में भी लड़का अडोप्टे होला तो थोड़ा कपल में जो है थोड़ा सा खुशी चलाए को लेकर चलाए तो घर में तो नन्हा मुन्ना लेकर धोगा था दादा दादी अगर कोई बन गए तो एगो बहुत कैसे बोला एगो बहुत दादा दादी बने के एगो नसीब की का नसीब है। अगर खुश नसीब हुआ तो दादा दादी बन जा लन जा, पर अगर नसीब में नहीं बा तो फिक्र नहीं करे कि आजकल अडोप्शन की ओर भी देर को जाता और सकबा माँ बाप बने अडोप्शन के जरिए, ठीक बा। और अगला गीत दामाद बाबू प्रकाश गैलेवन गीत है, गीत हम चलाओ थे इसे सब संगतियाल के नाम हुसैन नजीब वर्षा मोलिन मैय शिमला लक्ष्मण नीरा उमा शर्वया लीला प्रिसिला देवीना बिलक आशी देवरन रंगलाल मनीषा आलिया कमल ज्योति लक्ष्मी रायन दाविद डैनियल जगमोहन गैब्रियल लामा हमनी नूश हैगी चली रुशिका राजा कदीर कश्मीरी अविसन और रहीम नक्शेदी तीता कैद फिदू अब्दुल संदीरन लक्ष्मिनी लक्ष्मी माफ करिए दानी तुलसी स्प्रेनकुन जुमाला फिफी बाबूलाल अवनीश बिंदु अक्लू कैतु संजय शर्वया कैतु संजय पॉम्पलमुस्से हेलो युक्ति अनंती फिर सुग्रा शिमला अनुचंदानी काल भैरव के बी दामिचा रामेश सुबोमी मेघा नीश मंजुला शिमला रुपेश सिबा मादनाज गुलाम का अनलीज गाजा अवनीश शेख रोज तहर खोदा शिवांश गौतम निर्वाणा छबिलाल अक्षय संगीता अनु सुबिता खटका सुविदेन कानिया दिनेशन सुबिया और है गीत चली रिहाना हसनैन की ओर से रीता और अमृता के नाम। तो चल एक साथ

दामाद बाबू कल ससुर लगे विस्की मिनरल तो बोलता हूँ रही तो होने वाले ससुर सासू मारो दिखा दामाद है तो ढेर विस्की नहीं दिया वरना विस्की का जाग देवता छोकरा बोली मो पोगस लामे मस्त है घर घर दामाद ना अब सुनब जा एगो कहानी लक्ष्मी माँ और गरीब किसान की कहानी तो बहुत पुराना बात है। एगो गांव रहल सोन बरसा। गांव चारों ओर से हरियल खेत रहल आम के बगीचा आ पोखरा से घिरल रहल। गांव के लोग मेहनती रहलन जा बकिर ओ साल बरखा ना पड़ल ना पड़ला से पूरा इलाका सुखाड़ के चपेट में आ गल। वही गांव में एगो गरीब किसान रहता है जेकर नाम रहल रामदीन। ओकर परिवार में मेहारू सीता एगो छोटा बेटा गोपाल और बूढ़ा माय रहता है और बूढ़ी माय रहता है। रामदीन के लगे बसु 2 बीघा जमीन रहल। ओही जमीन पर

खेती करके अपन परिवार के पेट पालत हल। पिछला 2 साल से सफल ठीक ना भल, कर्जा बढ़ गल, घर के छप्पर टूट गल और अनाज के कोठी लगभग खाली हो गल। एक दिन सीता दुखी होके बोलन, हे राम दीन, घर में सब बस अब बस 2 दिन के अनाज बा खाली। गोपालो कई दिन से दूध खातिर रोवत बा, अब का होई। रामदीन चुपचाप जमीन की ओर ताकत बा, ओकर आंख से आंसू बहे लगल। धीरे से बोललक, सीता भगवान पर भरोसा रख, मेहनत हम कबू ना छोड़ब। अगला दिन भोर में रामदीन अपन हल बैल लेके खेत में गल। सूरज निकले से पहले उ खेत जोते लगल, माटी सूख के पत्थर जैसन हो रहल। बाकी रामदीन हार ना मनलक। दोपहर बाद में ओकर पड़ोसी धनराज खेत के किनारे आके बोललक, रामदीन तू इतना मेहनत काहे करत हुआ हो, बरखा के नाम नहीं खे, ये जमीन अब कुछ ना दे, चल शहर चले जा, मजदूरी करब त रोज के पैसा मिली। रामदीन मुस्कुरा के बोललक, धनराज भाई, शहर जाके मजदूरी करे से पेट त भर सकेला, बाकी अपन माटी छोड़ देब त मन खाली हो जाए। जब ले हाथ पांव चलता तब ले अपन खेत में मेहनत करब जा। धनराज हंसत हंसत चल गल और उही रात रामदीन के परिवार भूखर पेट सो गल। आधी रात में रामदीन की नींद खुलल, बाहर निकल के देखा था आकाश में चांद चमकत रहल। रामदीन हाथ जोड़ के बोललक, हे भगवान, हम गरीब बानी, बाकी मेहनत करे से कबू पीछे न हटिला, बस हमर परिवार पर दया कर। इतना कहके वो घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गल। तभी अचानक ओकरा सामने एगो बूढ़ी औरत दिखाई देलक। वो साधारण कपड़ा पहनरे रहल और हाथ में एगो छोटा सन पोटी रहल। बूढ़ी माँ को से बोलक, बेटा, रात बहल बहुत हो गल बा, का तू हमरा थोड़ा पानी या कुछ खाई के सकब दे। रामदीन घर में गल, घर के खुदे खाई खातिर कुछ खास ना रहल, बाकी वो बिना सोचले अपन घर में बचल कुचल रोटी बूढ़ी माँ के दिलक खाई कर दिलक पानी पिए के। बूढ़ी माँ रोटी खैलक पानी पीलक और मुस्कुरा के बोललक, बेटा, तोहर घर में तो खुदे अनाज नहीं बा, फिर भी तू हमरा अपन खातिर अपन भाग के रोटी दिला और पानी दिला पिए के। रामदीन विनम्रता से बोललक, माई अतिथि भगवान के रूप रहेला और रोटी आधा हम खाए आधा रउआ खात, बाकी रउआ भूखल रह जाते हमार मन न मानत। बूढ़ी औरत के चेहरा अचानक चमके लगल, ओकर साधारण रूप बदल गल। उ सोना जैसन उज्जर और चमकदार वस्त्र पहनले रहल देवी के रूप में दिखाई दे लगल। रामदीन डर के मारे जमीन पर माथा टेक दिलक, माई रउआ के। देवी मुस्कुरा के बोललक, हम लक्ष्मी माई है। रामदीन हाथ जोड़ के बोललक, माई, हमरा से कोनो गलती हो गल तो माफ़ कर दिया। लक्ष्मी माँ के बोललक, ना बेटा, आज हम तुहरा परीक्षा लेवे आ रही, तोहरा घर में गरीबी देख ली, बाकी तोहर दिल बहुत अमीर बा, तू अपना छोटा रोटी के भाग हमके दे दिला खाई के, हम तोहरा आशीर्वाद देवत। ऐसन मन के इंसान भगवान कबो अकेला ना छोड़ेला। लक्ष्मी माँ रामदीन के 3 मुट्ठी बीज दिलक। ये बीज अपन खेत के 3 अलग अलग कोना में बोइया। बाकी एगो बात याद रखिया, मेहनत ईमानदारी और दया के कबो नहीं छोड़िया। रामदीन बीज माथा से लगा के रख दिलन। अगला भोर वो खेत में गल और लक्ष्मी माँ के बतावल तरीका से 3 जगह में बीज बोलक। पहला जगह गेहूं के बीज रहल। कुछ दिन बाद वही जा हरियर पौधा निकलल। दूसर जगह धान के बीज दिलक। सूखल जमीन में भी अचानक से गल धान के पौधा लगल। तीसरा कोना में अनजान बीज रहल। कुछ दिन बाद वही जा एगो अद्भुत पौधा उगल। पौधा पर सुनहर रंग के दाना लागल रहल। रामदीन जब ओकरा देखलक तो चकित रह गल। बाकी उ लालच न करलक। उ गांव के मुखिया के बोलक पूरा बात। मुखिया कह

0: लक राम दिन ये भगवान के देर वरदान है। बाकी ये वरदान के इस्तेमाल अपन खातिर ही मत करिया, गांव के लोग भूखल बा ओकरो मदद करिया। रामदीन ने कहलक, मुखिया जी हमरा मन में भी यही इच्छा बा। उस साल रामदीन के खेत में खूब फसल होल, वो अनाज से बेच के अपन पूरा कर्जा चुका दिलक, घर के छप्पर ठीक करवा दिलक और गोपाल खातिर कपड़ा और किताब खरीदलक। बाकी ओकर धन बढ़ ले गल और घमंड कबो के नहीं होल। गांव में एगो अनाज के भंडार बनवे लग, जहां गरीब लोग ज़रूरत के समय बिना ब्याज के अनाज ले सकतलन। गांव के विधवा बूढ़ा या अनाज बच्चा लोग खातिर वो हर महीना भोजन के इंतजाम करत हल। धनराज जे पहले ओकरा पर हंसत हल, एक दिन ओकरा लगे आके बोलक, रामदीन भाई हमर से गलती भइल, हम तोरा कमज़ोर समझली, असल में ताकत तोहरा मेहनत कर दिल में रहल। रामदीन ओकरा गले से लगा लेलक, धनराज भाई गलती सबसे होला, अब हमनी मिल के गाँव के सुधारब जा। लक्ष्मी माँ की दूसर दर्शन। कुछ महीना बाद दीपावली के रात पूरा गांव दिया से जगमगात है। रामदीन अपन घर के बाहर एगो छोटा दिया जला के बोलक, माय लक्ष्मी हमरा घर में धन रहे चाहे ना रहे, बस इतना कृपा कर माई, असली धन त दर्शन के काम आवेला दीद है। लक्ष्मी माँ मुस्कुरा के बोलक, बेटा जे धन के बाँटिला ओकर धन घटेला नहीं बल्कि बढ़ेला। जे मनुष्य मेहनत करेला, ईमानदारी से जिएला और ज़रूरतमंद लोग की मदद करेला, तो ओकर घर में सुख शांति रहेला। इतना कह के लक्ष्मी माँ अंतर्धान हो गल। तो संगतिया लोग, कहानी के सीख कौन सी है? ये कहानी के सीख है कि गरीबी आदमी के छोटा ना बनावेला, ओकर सोच ओकरा छोटा या बड़ा बनावेला। रामदीन गरीब रहल बकी ओकर दिल बहुत अमीर रहल। उ आखिरी रोटी के ज़रूरतमंद लोग के देवत हल। ओकर मेहनत ईमानदारी और दया देख के लक्ष्मी माँ ओकर सोच ओकरा छोटा या बड़ा बनावेला। रामदीन गरीब रहल बकी ओकर दिल बहुत अमीर रहल। उ आखिरी रोटी के ज़रूरतमंद लोग के देवत हल। ओकर मेहनत ईमानदारी और दया देख के लक्ष्मी माँ ओकर पर मेहरबान होकर। ये कहानी के तीन गो मुख्य सीख मिलेला। एगो मेहनत कबू बेकार न जाला। दूसरा मुश्किल समय में भी ईमानदारी और दया नहीं छोड़े के। असली धन उ है जे दूसर के काम आवेला और धन के घर भर सकेला, बाकी बकीर दया या प्रेम से जीवन भर सकेला। तो कहानी बहुत सुंदर रहल। आशा करते ये कहानी के सीख तो लोग भी अपन जिंदगी में उतर बजा। और ऐसे में सुनब अगला गीत अजय पांडे गैली हवन, साथ में आवाज़ बा सुभाष नगर के कॉलेज के पीछे। और गीत वा जुन है हमने चलावती से ही सब संगतियालों के नाम जुन हमने के साथ जुड़ल बा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। आप हवन देवी अनवर, मीरा रामा, मानती अंचराज, शमीमा, अदिति, हेम पोखेल, ऐश्वर्या उस्मान, कविकेश रामचंद, वीना योवानी, उदीश प्रकाश, अजद भोगालू, कीनू महजम, मनुदय चौली, नाज तेज पोपिया, रेदेम विजू, विमलादीप, मानती गोकुल, लक्ष्मी नारायण, प्रिंसेस दर्शिनी जगेश, रोही शोभाबुसाय, रामदिया सीमा, राम खिलावन, रामचंद देव दास, जगु स्टेडियो, पगजी बॉय संग, रगिनी विरापेन, आरती ओवेन, गौरंगा गौरंगा, राधे राधे, हरे कृष्णा, अजीज अश्विन, लकी समीना, केशव संग, भुइनो हाशु, केशव संभर, विशाल नव, अनीता केशव, अभी खुशीमा, अबेल पाल पालिकन, प्री ममता, लुसी धीरज, कुंजन माया, राव जी, केविन अविनाश, बिगना सवदीन, प्रणेश सिद्ध, अंजेल पूजा, कविता प्रयाग और ताला कायचू खाती। चलो एक साथ सुने है प्यारा सन गाना कॉलेज के पीछे।
1: एगो लफुआ लड़का भैया एगो लड़की के देख के आ कह के ढेर तू साधु बनेलू ना।

महाला में सब तुहरा के साधु जानेला, लेकिन कुल तुहार खेला कुल तुहार महाभारत हम जाना तनी बाई डाटा हमारा भी बा। तू का करेलू उड़ल चिड़ई के हम पहचानी ना। देखी लड़की बा का कहता लड़किया से।

0: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।
2: वेलकम इन द सेकंड आवर। रात की 10:10 हुआ था प्रताप सिंह सीतालू के साथ। आज प्रताप सिंह सीतालू के साथ रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉशस पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रात के 11 बजे ले। और बेशक अब हो जाए कुछ बॉलीवुड न्यूज़, गर्मा गर्म बॉलीवुड न्यूज़। 7 अक्टूबर 2026 की ताज़ा बॉलीवुड रिलीज हुआ था। जी हाँ, सकबजा फिल्म दृश्यम 3 ने देखे और बहुत ही सुंदर फिल्म है दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त पकड़ बने लेबा। द कंक्लूजन यानी कि दृश्यम 3 में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और बाकी कलाकार नजर आलहवंजा। और फिल्म 2 से 7 अक्टूबर ले रिलीज हो जाए। और यानी कि रिलीज, हाँ 7-8 दिन से था ना। हाँ, तो फिल्म रिलीज़ होकर गए दृश्यम 3। रिलीज़ के बाद फिल्म में कमाई तेज रहल। 7 अक्टूबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिल्म करीब 230 करोड़ नेट के आंकड़ा पार कर दी लगभग, जबकि वर्ल्ड वाइड कमाई 300 करोड़ से ऊपर बा। तो फिल्म काफ़ी पैसा कमाई लगभग। दृश्यम 3 जगह में नजर अलबा अजय देवगन। ये फिल्म की खासियत ये बा कि कहानी में विजय सामगांवकर के आकर ओकर परिवार के पुराना रात के अंतिम अध्याय देखे के मिल रहल। दृश्यम 3 के एडवांस बुकिंग भी जोरदार रहल। रिलीज से पहले ही दृश्यम 3 के एडवांस बुकिंग से करीब 28 करोड़ रुपए की कमाई रिपोर्ट हो रहल। मतलब बाकी है फिल्म खूब पैसा कमा हुआ था। दूसरा का न्यूज़, शाहरुख खान अभी भारत के सबसे अमीर अभिनेता में से माना जा। जी हाँ, रिचेस्ट मैन इन बॉलीवुड इज़ शाहरुख खान। शाहरुख खान के लेके भी अक्टूबर में बड़ा खबर आलबा। हरुण इंडिया रिच लिस्ट 2026 के हिसाब के शाहरुख खान के अनुमानित संपत्ति करीब 10,000 करोड़ बतावल गल बा। बाप रे बाप, इतना धनी बा शाहरुख खान। संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले रिवॉर्ट बतावल गल। बाकी ऊ अभी भी भारत के सबसे अमीर अभिनेता मानल जा रहा। रिचेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड इज द वन एंड ओनली शाहरुख। ओकर बाद बा अमिताभ बच्चन और सलमान खान। ये लोगों भारत के जिन है रईस एक्टर में से हवन सा। और सलमान खान की संपत्ति की चर्चा भी करल गल। सलमान खान के बारे में नया रिपोर्ट में बतावल गल बा कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के अनुसार ओकर अनुमानित संपत्ति करीब 3,000 करोड़ रुपया बा। और खबर में मिलल बा कि सलमान के शुरुआती संघर्ष में भी चर्चा रहल। रिपोर्ट के मुताबिक उनका फिल्म कैरियर के शुरुआत में कमाई आज की तुलना बहुत कम रहल। बाद में मेहनत करके सलमान खान आसमान की बुलंदी के छूलक। और बेशक जैसे बोली कि बॉलीवुड के जो सबसे धनी एक्टर हवन जा शाहरुख खान, फिर अमिताभ बच्चन और सलमान खान। बॉलीवुड की ओर से खबर से भी पता चला था कि रणबीर कपूर के रामायण सेट पर आग। रणबीर कपूर आसाई पल्लवी स्टार रामायण के मुंबई स्थित सेट पर 5 अक्टूबर की आग लगी की खबर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक

घटना में कोनो घायल ना भल। ये फिल्म पहले से ही बॉलीवुड के सबसे चर्चित आगामी प्रोजेक्शन में बा और एजन फिल्म है रामायण कर में रणबीर कपूर राम की नज़र में आए सनी देओल आए हनुमान के रोल में और कियारा सिद्धार्थ के जुड़ल खुशखबरी कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लेके 7 अक्टूबर की खबर सामने आलवा कि दोनों दूसरा संतान के उम्मीद करत हवन जा। और बॉलीवुड न्यूज़ में ये भी बा कि अमिताभ बच्चन के पूरा संघर्ष जी हाँ अमिताभ बच्चन के पुराना संघर्ष के किस्सा अमिताभ बच्चन हाल के बातचीत में अपना शुरुआती करियर के एगो पुराना अनुभव याद कर लत। रिपोर्ट के मुताबिक करियर के शुरुआत दौर में ओकर लगे उतना पैसा ना रहल पर धीरे धीरे ओकर लगे पैसा आल मेहनत और लगन से। और बेशक ये रहल कुछ बॉलीवुड न्यूज़। अब सुनब जा अगला गाना किसी के बुरा ना बोलिया एगी गैलेवंश सुखदेव राम खिलावन एगी चली आशा जानू खती मामा कुमारी फिर नेफ्यू शुभम दीदी आरती जीजाजी चीजाफों और सब जानू परिवार के नाम। और है गीत चली अनीता लाल जी हवन फ्रीकॉम फ्लाग से अनीता फ्रीकॉम फ्लाग से अनीता लाल जी हवन मौदल बे सब इटू परिवार के नाम सब लाल जी परिवार के नाम ज्ञान और चित्रा विश्राम मौदल बे से है गीत और खतीर और थोड़ा सब परिवार के नाम। और है गीत चली शोभा के नाम जोन रहेलन पोंपली मूस चले एक साथ सुनब जा किसी के बुरा में बुरा ना बोलिया।

ऐसे ही नचते गाते रहिए, कमरवा डोलाते रहिए, और उनके साथ दिया रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर पहुंच हुई तरह का प्रोग्राम गीत मांगे के मन करता तक विद्यांग पर टेलीफोनिक करिए सास मोरे धर्मवती मंगल गीत गए लगभग और गीत के मांग करते वन संजय हरिचंद पिताओं से कर पत्नी हुविष्का और कर पत्नी और बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम। फिर ये गीत चली पूर्णिमा फोकीराज के नाम और कुणाल हीराल और सब परिवार खातिर। है गीत चलाते इस हमने जितना कोई बीमार बा अस्पताल में बा क्लिनिक में बा तो बस गीत तो के नाम प्रार्थना कर जैसे तो जल्दी ठीक हो जाए बजा। जितना कोई कॉल सेंटर में काम करता तो फिर लोग अभी कोर्स करता हूँ उनसा और देर कोई काम में से वापस घर लौटा था देर कोई अभी का घर में से ले जाता हूँ उनसा काम जितना कोई काम करता सब कोई बोलो सब बकवास। अगला गीत तो नाम सास मोरे

छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा आजकल। निमन छोकरा या निमन छोकरी मिले के शादी करे खातिर बहुत कम बा, हाँ कि नहीं। रात के 10:40 रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस पर चलता प्रोग्राम भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे रे। अब जरा को दराहुत के बारे में बात करब सर। जब एगो ड्राइवर के लाइसेंस मिली रहा तो के चरक को दराहुत निमन से जाने के कहाँ पर डालिन ब्लॉ बा, कहाँ पर ही दुबले करे के, कहाँ पर ही नहीं दुबले करे के, और कितना बीते से गाड़ी जहाँ चढ़ाए के, जहाँ 700 किलोमीटर पर या बताओ 700 किलोमीटर 100 किलोमीटर का तो बाएँ तो चाहे देखिए निमन से। अब बीतेश के ओवर स्पीड नहीं करिए वरना लामान पर जाए पे ही करे के, और लुटो बनावल बा उड़े करे के नहीं कि उड़े के, ठीक बाकी नहीं। और तोहर सुरक्षा और सब कुछ की सुरक्षा चेहरा दिखे के जब गाड़ी चलावत हो, खासकर जब पानी बरसेला, जब भूजा रहेला तो सावधानी से चाहे गाड़ी चलाए के, देर प्रेसर की नहीं चेहरा। अगर तू दूर जाते हो तो घर से थोड़ा सुन समय आगे निकल जाइए, जमी समय पर अपन मंजिल में जाए बजा। जैसे कि हम बोली कि एगो सोफिया चुनाव के चरण को दिलागोत निमन से जाने के, अगर को दिलागोत निमन से नहीं जाना तो जब तक पुस्तक बेचाला को दिलागोत के कर्म सकब देखे, कर्म सब रोज

साइन बा कि कहाँ पर ही नो एंट्री है, कहाँ पर ही हेले के, कहाँ पर आगे तो के, कहाँ पर ही पॉकिंग नहीं करे के, जहाँ लाल इंजोन सब रहे ला तो इस सब कुछ सोफे के जहाँ जाने के और कुछ सोफे हो जा के कोई बोले ला मकुंटू नहीं झूठ है सोफे तो चाहे 20 बरिस 50 बरिस सोफे कर रहे पर रोज के अपनी कोनो नया नया चीज सीखी ला सर। जब ड्राइविंग करे तो वह गाड़ी कोनो भी वाहन चलाओ तो रोज की सीखी ला सर है ऐ सीखल जो है फिनी नहीं होला ऐ जैसे को दराकूद बोलते हैं आजकल देखा जैसे ढेर मना दुर्घटना होता है ढेर कोई गाड़ी ढेर तेज चलावेला

वह स्पीच करेला और जाके धक्का का मार देवे नंसर तो ये सब नहीं चेहरा निमन से ड्राइव करत हुआ तो निमन से ड्राइव करिए जा कहे कि तो हमेशा याद रखे कि तू गाड़ी लेके निकलत हुआ और तुहर परिवार तुहर घर पे तुहर इंतजार करे था ठीक बा। तो ऐसा में सुनब जा कैसे जब हम कमला गणेश की आवाज़ में गीत गीत चली तीना दिना खातिर हेलन सुयाक केट खातिर भी एक गीत चली फिर विरापेन पाया रोसा रुसाल खातिर भी एक गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ राम राम राखा राखा मिसेज राखा एक गीत और खातिर बहुत प्यार के साथ मिस्टर लक्ष्मण जी हमजा उनकी संगतिया फिर प्रतिमा फिर बानु रोशनी और अंसुया मंगरा वो भी उनके साथ देवत हवन बहुत बहुत प्यार के साथ फिर हरी गीत चरावती से सब श्रोतालों के नाम जिनके नींद नहीं लगता और जो फैमिली के सब सदस्यों के नाम और ये गीत चली स्वीटी और स्वीनी खातिर बहुत प्यार के साथ और हे गीत चरावती से अपनी सब दुखन परिवार के नाम और सब उजाइबो परिवार के नाम।

मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान, बुरा बुरा मत करो, बुरा है शैतान। लाल की कावल गीत के संगे भोजपुरी तर का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से वीरियम के साथ दिला जा हमने के देख रहा हमने रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। चलो कैसे मैं सर फोन कॉल खातिर शुक्रिया। रात के 11 बजे सुन बजा निर्मनी के साथ अगला प्रोग्राम सुनहरे पर, और रात के 12 बजे से कल फजीर के 5 बजे लिए सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तरह। हमने के दोनों की मुलाकात हुई शाम के फजीर के 6 बजे से 9 बजे लिए MBC रेडियो मॉरिशस पर। तब तक हमने के इजाजत दे और जय प्रताप सिंह से तालुक की ओर से सबको प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनहरे पल। बुधवार की रात है, हफ्ता भी खत्म।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कभी कभी किसी पुरानी याद को याद करने के लिए किसी तस्वीर की जरूरत नहीं होती है, एक गाना काफी होता है। पहले ही धुन बजती है और दिल खुद बता देता है कि ये गाना किस दौर का है। तो ऐसे ही ये नेक्स्ट गाना वो फिर से रिवाइव कराएगा उन खूबसूरत पलों को, खूबसूरत यादों को।

मोहब्बत के गीतों की भी अपनी एक दुनिया होती है ना, ना बहुत शोर ना बहुत अल्फाज, बस एक खूबसूरत धुन और दिल की बात वाह ऐसे ही सामने आ जाए। आज रात उसी एहसास के नाम करते हैं।

शायद अभी आप अपने कमरे में आराम से लेटे हुए हैं, ये गीत सुन रहे हैं, शायद चाय की आखिरी चुस्की बाकी है या शायद नींद आने का इंतजार। जो भी पल है इसे थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं इस नेक्स्ट गाने के साथ।

या तन्हाई, हर एहसास बिल्कुल अपना सा लगता है। और ऐसा ही एक गीत करते हैं आपके नाम, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है सुनहरे पल में।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जमाना बदल गया, कैसेट से सीडी और सीडी से स्ट्रीमिंग तक का सफर आ गया है, लेकिन कुछ गाने अभी वही है, वही अल्फाज, वही धुन, वही एहसास। शायद इसी को कहते हैं।

जिंदगी में कुछ पल रोक नहीं सकते, वक्त आगे बढ़ता रहता है, लेकिन खूबसूरत बात ये है कि कुछ पल यादों में हमेशा वही के वही रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है मेरे जाने का, एंड आशा करते हैं कि आपने गानों के कुछ अच्छे पल बताए, कुछ अच्छी मेमोरीज भी बनाई। फिलहाल बस आंखें बंद कीजिए और इस धुन को अपने साथ चले दीजिए। शुभ रात्रि।

0: This is Radio Marches.
1: 您好。
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shrotalandariki Hrudayapurvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: ये हवा चलती है तो बहुत सर्दी लगती है।
9: मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ।
8: लकड़ियाँ गीली हैं।
9: आज तो मैं पानी में भी आग लगा सकता हूँ।
8: मुझे बाहों में ले लो, खुद ब खुद आग लग जाएगी।
9: नहीं,
8: देखो मुझे तड़पाओगे ना तो मैं तुम्हें
9: क्या
8: मैं तुम्हें दांतों से काट खाऊंगी और तुम्हारा दिल

0: उसने कसाया, पढ़ने न पाए उसने कसाया, देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द,
0: थैंक यू।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: NBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गरिया।